بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है, और वो जबरदस्त और हकीम है। ऐ अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ऐ करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। सदक अल्लाहुल अज़ीम।

101 FM。आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
5: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: 101 FM。
1: हाँ,
2: मंद हुए यार, बस आधा घंटा दे।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: सजा होती है।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

रेडियो पाकिस्तान का फेवरेट चैनल FM 101 101

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाक बहरिया का दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 1965 के जंग के जांबाजों को खिराज अकीदत पेश करना है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत में भर्तियों के तरीक़ाकार में इस्लाहात से शफाफ और काबिलियत पर मबनी निज़ाम कायम करने में मदद मिलेगी। बरतानवी हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों में तैयार की जाने वाली अशिया की खरीदारी पर नई पाबंदियों का ऐलान आज करेगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट कल से बर्मिंघम में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत बातों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, ज़िंदगी के रंगों को खूब इंजॉय किया जा रहा होगा और वहाँ उस इंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपके अपने आरजे ज़ुबैर शफीक, आपके अपने प्रोग्राम लेडीज़ लाउंज में। और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ कहता है हर मंगल की सुबह 11 से 1 और करते हैं हम इस साथ में बहुत सारी बातचीत और मौज मस्ती प्लस हल्ला गुल्ला। इस यकीन के साथ अगर तो आप हमारा वेट कर रहे हैं फिर तो आप सुनेंगे ही, लेकिन अगर आप इधर उधर चलते फिरते आते जाते, कहीं शहर में आते हुए कहीं शहर से जाते हुए बाय मिस्टेक आपका हाथ इस नंबर पे रुक गया और फिर आपने मेरी आवाज़ सुन ली, तो फिर आपका ये सुनना कहीं पे रायगा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आप। जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया उनको बताते चले कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, उस पर कॉमेंट करके लाइक करके शेयर करके हमारे साथ शामिल हो जाएं। और इसके साथ साथ मैसेज कर सकते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है फेसबुक की, तो वो क्या करेंगे, 4471 के जरिए शामिल हो जाएंगे। जाइएगा मोबाइल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस नाम पैगाम सेंड कर दीजिएगा 4471 पे। और तीसरा तरीका कार क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज जब मैं बताती हूँ ना आप फौरन से पहले दो तरीकों को छोड़ के तीसरे तरीके पे डायरेक्ट आ जाते हैं। आप कहते हैं कि बस हमने नहीं मैसेज करना, हमने नहीं कमेंट करना, हमने ये जो थर्ड टाइम चीज़ बताई है ना इसको ही हमने इस पे ही इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए अभी मैं वो नहीं बताऊंगी। देखा मैंने कहा था ना वही कुछ हुआ ना, बाद में सुनते सुनते आप है कोई नहीं है फिर कहते हैं बाजी मैं टॉपिक तो नहीं सी सुने मैं तो तुमसे कॉल ही मिला रहा हूं। वायरल म्यूजिक 786। तो जना प्रोग्राम को कितने बाकायदा आगाज, माय फेवरेट नंबर एंजॉय कीजिएगा दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से क्या करें हैप्पी हैप्पी फेस के साथ, क्योंकि जब आप हंसते हुए उठते हैं ना कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली वो काम भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप मुंह बना के मुंह फुला के किसी से बात भी करेंगे यार अभी सो के उठा था दिल नहीं कर रहा बात करने को, दिल नहीं कर रहा काम पे जाने को, काम तो फिर भी करना है ना, किस जोश होता है वो खोता है।

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ अब से लेकर, यानी कि अब से कुछ टाइम पहले से लेकर 11 से 1 हुआ करता है हर मंगल की सुबह। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा बदलते हुए मौसम के हवाले से। सितंबर आ चुका, और सितंबर का जब जिक्र होता है तब तब्दीली का जिक्र भी होता है। ठंडी ठंडी रातें आने वाली हैं, ठंडे ठंडे दिन भी आने वाले हैं, एसी का सीजन थोड़ा ऑफ होने वाला है। और आज आप मुझे देख भी सकते हैं, मैं अपनी फेसबुक पे भी है ना थोड़ा सा लाइव आने की कोशिश की है मैंने। देखो ये कोशिश कब तक चलती है। रुबिया शफीक के नाम से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एफपी पर और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ से आप मुझे एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करेंगे, और कॉमेंट करके हमारे से शामिल हो जाएंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फरहाद मेमन, थैंक यू सो मच। कमल नाज, कैसी हो लड़की? मैं ठीक हूँ। अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बदलते मौसम की मैं बात कर रही थी, एसी का सीजन थोड़ा सा ऑफ होने वाला है। और आपको पता है ये जो मौसम है ना, इस मौसम में आप बीमार होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट डेज जो है ना, वो डायरिया के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। और ये जो बदलता मौसम है, आहो फरहाद मेमन, यस, जो ये बदलता मौसम है इसमें क्या होता है कि जब बरसात का सीज़न आता है तो ऑब्वियसली डायरिया के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें पेट के बहुत सारे मसाइल होते हैं। बिकॉज़ पानी पीने से बरसात में जो है वो मक्खियाँ मच्छर, इस तरह के मुख्तलिफ जो हशरात होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और वो इन्फेक्ट भी करते हैं, इन्फेक्शन कर जाते हैं। और ये बात तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि बरसात के सीज़न में, जो नमी वाला सीज़न होता है ना, इसमें जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं वो इस वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं कि अफजाइश नस्ल जो है ना, वो इनकी नमू जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो रहे होते हैं। और जब मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो रहे होते हैं तो तब क्या होता है, तब मामला थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अच्छा, क्या कहती हैं कमलनाज, पोस्ट नजर नहीं आ रही, क्यों, ऐसा क्यों, मैंने तो पोस्ट लगाई थी यार, नजर तो आनी चाहिए। पता नहीं फिर ये क्या हुआ, मैं इसको दोबारा से लगाती हूँ। एनीवेज जी, आज हमने बात किस टॉपिक पे करनी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक अदद सॉन्ग चलाऊंगी। अच्छा जी, थैंक यू फरहाद। नहीं, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा साथ में ना, अब लाइव कभी कभी लाइव भी आया करूं। तो बात मैं क्या कर रही थी, मैं बात ये कर रही थी कि बदलते मौसम में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तब्दीलियां आती हैं, और ये वो सीज़न होता है जिसमें आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है चेंज करने के लिए, चेंजेस आने के लिए प्रिपेयर करना है। आपको रूम कूलर से जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की हवा की तरफ आना है। आपको जो एसी है उसको 16 से, हमारा एसी तो बंद है आज, बंद किया हुआ है खुद, उसको 16 से जो है वो 21, 22, 25 तक लेकर जाना है। मतलब आपको इतना ज़्यादा ठंडा ठंडी ठंडी जगह पे नहीं रहना ज़्यादा, बिकॉज़ फ्लू होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। नमी वाली जो हवा होती है वो आपके जोड़ों में दर्द कर सकती है, आपकी बॉडी में पेन होती है। कमल, मैं पोस्ट दोबारा अपडेट करती हूँ, ज़रा ये एक सॉन्ग लगा के ना फिर मैं पोस्ट की तरफ ही जाती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पोस्ट अपलोड की थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों अपलोड नहीं हुई, तो मसला हो गया उसके साथ। बाकी आज का टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ बैठते हैं एक अदद सॉन्ग की तरफ, और फिर हम वापस आते हैं, और वापस आकर करते हैं आपसे मज़ीद बातचीत। सो स्टिक अराउंड।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 हॉल लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। आपका अपना प्रोग्राम जो लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में हम बात क्या करते हैं अक्सर खवातीन के हवाले से। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके और मैट्रिक का रिजल्ट भी आ गया, नाइन्थ का आई थिंक रिजल्ट भी आ गया, और उसके बाद अब बच्चों ने नेक्स्ट प्लान भी कर लिया कि क्या करना है। मेरे ख्याल से पार्ट टू का रिजल्ट अभी आना है, पार्ट वन का आ चुका, पार्ट टू का रिजल्ट अभी आएगा, और उसके बाद जो है वो बच्चे अपनी फील्ड चूज करेंगे। वैसे फील्ड तो वो पहले ही चूज कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या ज्वाइन करना है, किस साइड पे जाना है, लेकिन फिर भी मार्क्स से जो है वो नंबर से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्लियरेंस हो जाती है, पता चल जाता है कि आप उतने पानी में है भी कि नहीं, कि आपने जो अगर मेडिकल फील्ड चूज़ करनी है, अगर आपने आईटी चूज़ करनी है, या आपने आप नंबर से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लियरेंस हो जाती है, पता चल जाता है कि आप उतने पानी में है भी कि नहीं, कि आपने जो अगर

होती है लाइक हर प्रोफेशन. इवन दो मैं कुछ दिन पहले एक दीवार देख रही थी, बना रहे थे कुछ मिस्त्री हजरात जो हैं दीवार बना रहे थे, वो इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने उस दीवार को बनाया और उसमें कुछ डिजाइनिंग वो कर रहे थे. वो परफेक्शन जो थी ना वो उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, डेफिनेटली उनके अलावा कोई नहीं कर सकता. आ जाए कोई भी इंजीनियर, आ जाए कोई डॉक्टर, आ जाए कोई वकील, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता. बिकॉज वो उस इंसान की स्पेशलिटी है जो वो काम कर रहा है, और इतना खूबसूरती के साथ आप जो क्रेशिया कर रहे होते हैं, अम्मियाँ अक्सर दादियाँ क्रेशिया करती हैं, आपने देखा है कि मतलब एक एक पॉइंट को कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो मैनेज करती हैं और उसके साथ वो उसको उस डिज़ाइन को बनाती हैं, उसको प्रिंट को बनाती हैं. मुझे आज तक ना मेरी अम्मा ने बहुत कोशिश की, यकीन जाने जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए थे और उसके बाद 3 महीने की छुट्टियाँ आती थी ना, उन 3 महीने की छुट्टियों में मेरी अम्मा ने सबसे पहले मुझे क्या कहा था कि सिलाई सीख लो बेटा. 2 सिलाई स्कूल्स में मैंने फीस भी पे की, और मैं जिस दिन फीस पे करती थी अगले दिन नहीं जाया करती थी, मतलब मैं ना कर पाई, मुझसे ना हो पाया, इतना मुझे ट्रिकी काम लगता है ये. और मुझे आज भी लगता है, आज की डेट तक भी मुझे लगता है कि जितना ट्रिकी काम जो है वो स्टिचिंग करना है उतना कोई नहीं है. और लेजेंड होते हैं वो लोग जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ स्टिचिंग करते हैं. तो बात ये हो रही है कि आप हर प्रोफेशन को जो है ना उसमें मौजूद लोग, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी वर्थ होती है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, और उस उन एक्सपर्टीज के साथ वो लेकर चल रहे होते हैं. मोहम्मद हुसैन मिराज मुराज, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम. आप ही डॉक्टर को भी सर में दर्द होती है, भाई डॉक्टर भी इंसान होते हैं ना, उनको भी सर में दर्द हो सकती है. मैं कभी, मुझे फ्लू हो, मुझे कभी बुखार हो, या मुझे सर में दर्द हो रहा, कहते हैं ये डॉक्टर को भी होता है, भाई इंसान है ना, डेफिनेटली हो सकती है. तो बात मैं क्या कह रही हूँ, बात ये कह रही हूँ कि हर प्रोफेशन की, हर फील्ड के अपने कुछ चार्म होते हैं, और उन चार्म के साथ रहना चाहिए. आज मैंने आपसे सवाल क्या करना है, सवाल ये करना है, सिंपल सा सवाल, छोटा सा सवाल है. जो मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि आप FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, वहाँ मैं पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, पोस्ट पे जाके भी कमेंट करेंगे. और इसके साथ साथ अगर आप मुझे लाइव देखना भी चाह रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं, तो आप मेरे पेज पे जाएंगे, ज़ुबिया शफीक के नाम से है, ZUBIA SHFIQ, सर्च करें ना, वहां पे मैं लाइव आई हूँ आज. मैं क्या, चलो कोई गल नहीं, ये जो कहते हैं ना फिल्टर लगाया है, फिल्टर नहीं लगाया. लाइव आ ही जाओ आज. यहाँ पे एक अदर गाना लगाने लगी हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, और आपके बहुत सारे पैगामात. लड़के तुम आ गए, सज्जाद अली लाडला हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनके पैगामात मैं थोड़ी देर बाद शामिल करती हूँ. यहाँ पे एक अदर सॉन्ग की तरफ मैं बढ़ रही हूँ. ये सॉन्ग मैं सोच रही थी कि मैंने इस सॉन्ग को लगाना है, अदनान ढोल की आवाज में है और बहुत खूबसूरत सा ट्रैक है, आई लव इट.

टॉपिक आज का क्या है बताती चलती हूँ। आपने मुझे बताना है कि जो आप अभी हैं, अगर आप वो ना होते तो फिर आप क्या होते। समझ आया? आया कि अगला भी गया? मतलब आपको अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज करने का मौका मिलता तो फिर आप क्या चूज करते। सपोज अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप इंजीनियर ना होते तो आप क्या होते। अगर आप वकील हैं और आप अगर खुद से कुछ बनना चाहते या आपको खुद मौका मिलता उस टाइम पे जाके दोबारा रिवर्स करने का, तो फिर आप क्या बनते। ये मुझे बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहम्मद हुसैन विराज, आप इतने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? वजह, अदनान ढोल को शामिल कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। जो एंजॉय करेंगे मुझे जरूर बताइएगा। लाची दी खुशबू, चल चली ये चीज।

0: ते हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सुनिएगा ये खूबसूरत सा ट्रैक, एंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आप गाड़ी में सुन रहे हैं थोड़ा सा स्पीकर ऊंचा कर लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर आपने हैंड फ्री लगाई है ना, हाय बेस के साथ सुने, जरा ऐसे आंखें बंद एंजॉय करें।
1: तू जीते हो,
0: वन ऑफ माय फेवरेट।

मोहसिन अली हमारे बहुत अच्छे आरजी शाम का प्रोग्राम करती हैं हर थर्सडे को होते हैं आरजी डॉक्स के साथ मैसेज कर

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक। आपका अपना प्रोग्राम जो लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ अब से ठीक एक बजे तक, यानी कि 11:30 हो चुके और आप और मैं एक साथ रहेंगे एक बजे तक, करेंगे साथ में बहुत सारी बातचीत, मौज मस्ती प्लस हला गुला। आप मुझे लाइव पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज़ुबैर शफीक के पेज पे लाइव है और वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे हम जाते हैं और वहाँ जिनके मैसेजेस हैं उनको साथ में शामिल करते हैं और सोच देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज कि आप जो आज हैं, अगर आपको खुद से मौका मिलता कुछ बनने का तो आप क्या बनना पसंद करते, ये आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया,

अच्छा जी, सबसे पहले हमें अमरजा चौधरी साहब का मैसेज आया है, थैंक यू सो मच, कहते हैं वेलकम सुपर डुपर शो, बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला साहब आ गए हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू द शो, सब बिस्मिल्लाह जी आया हूं, सलाम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया लड़के। और मोहम्मद रजा चौधरी साहब ने बहुत सारे स्टिकर्स भेजे जिनमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा शो, बहुत आला शो माशाल्लाह। कमलनाज हमें मैसेज कर रही हैं, कहती हैं अभी तो चंद लफ्जों से समेटा है तुझे मैंने, अभी मेरी किताबों में तेरी तफसीर बाकी है। ओए होए होए होए, कमाल कमाल, आला यार, जौक कितना अच्छा है आपका। एक कमलनाज की पोइट्री बहुत अच्छी होती है, लेवल होता है, बहुत खूबसूरत। अक्सर कभी मैं रात के प्रोग्राम सुन रही होती हूँ तो उसमें भी आपकी पोइट्री का जो इंतखाब होता है ना, जो शायरी का इंतखाब होता है, बहुत अच्छा होता है। और एक सज्जाद अली लाडला बहुत अच्छी शायरी सेंड करते हैं, और कभी कभी जो सेंड करते हैं ना रजा चौधरी साहब, वो भी बड़ा अच्छा इंतखाब सेंड करते हैं। कहते हैं डूबने वाला था दिन, शाम थी होने वाली, यूँ लगा मेरी कोई चीज़ थी खोने वाली। ना कर यार, खोने वाला मामला नहीं होना चाहिए, ये खोने वाला मामला बहुत गलत है, बड़ा दुखी दुखी सीन हो जाता है खोने का। अब तो कुछ भी ना खोए, मुझे तो बड़ा डर लगता है बाज़ दफ़ा, आप ना आपको फोबिया हो जाता है, आपको डर लगने लग जाता है किसी चीज़ के खोने से, किसी चीज़ के दूर जाने से। तो मुझे ना इस तरह की बड़ी चीज़ें, कभी कभी मैं अकेली बैठी हूँ, वो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है ना, उस थॉट में मुझे बाज़ दफ़ा यार मतलब कोई चीज़ खो जाए, कोई बहुत अपनी चीज़, कोई बहुत क्लोज चीज़, तो क्या होगा, ज़िंदगी कैसे होगी, बड़ी मुश्किल होगी ना फिर ज़िंदगी। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी किसी अपने को तकलीफ आपके सामने नहीं होनी चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, सज्जाद अली कहती हैं सबसे मिलते वक्त पुरतपाक रवैया है उसका, अच्छा पर किसी का ही खैर ख्वाह है वो मेरे सिवा, हर किसी का ही खैर ख्वाह है वो मेरे सिवा। हाय लड़के, तुम्हारे छोटे छोटे दुख गिले मकतबे इश्क का दस्तूर निराला, देखा उसकी छुट्टी, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ, इसलिए तो मैं सबक याद नहीं करती थी। अच्छा क्या होता था सर, ऐसा होता था ना अपने स्कूल के कॉलेज के दौर में, हम कोई टेस्ट कोई जानबूझ के तैयार नहीं करते थे, होता है कभी ना कि हम जानबूझ के कोई चीज़ तैयार नहीं करते, हम कहते यार रहन दो अगर तैयार कर लिया अगला मिल जाएगा, इसलिए चलने दो, यही बाज़ दफ़ा जानबूझ के कोई होमवर्क नहीं करते, अगर कर लिया तो नेक्स्ट मिल जाएगा, और टीचर भी कभी कभी इतने तेज होते हैं नेक्स्ट भी दे देते हैं और वो भी रहने देते हैं। वाओ नाइस टॉपिक जी, और वो भी आज बहुत आसान है, सोचना भी नहीं पड़ेगा बात करते हुए, है ना, इतने लंबे लंबे उर्दू अंग्रेजी और पंजाबी के मिक्स मैसेजेस भी नहीं करने पड़ेंगे। अमरजा चौधरी साहब स्पेशल सलाम करते हैं जी, आपका सलाम पहुंच गया जी, हाँ बिल्कुल मैं आ गया माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब आप लड़का बोलती हैं सलामत क्यों अंकल अंकल, बाकी सब अंकल अंकल बोलते हैं और मैं लड़का कह देती हूँ अच्छा जी, आप मुझे लाइव पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा पेज है, उसमें मैंने लाइव पे हूँ और वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ट्रैक में लगाने लगी हूँ, उस ट्रैक को एंजॉय करें ना ज़रा, और फिर हम वापस आते हैं। 04221100101 हमारा डायलिंग नंबर है, लेकिन कुछ टाइम बाद अभी मैं उस पर आऊँगी, अभी कॉल नहीं सुनूंगी। यार ये मैंने अपनी तरफ से फास्ट बीट पे सॉन्ग लगाया, पता नहीं क्या हो गया, नहीं नहीं सही है सही है, ये जो लाइव वाले हैं ना इनके भी मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ जरा। माशाल्लाह नाइस लुकिंग एंड नाइस वॉइस एंड ग्रेट गुफ्तगू, सज्जाद अली लाडला कहते हैं। कमलनाज कहती हैं आ गई ते छा गई, बहुत शुक्रिया। नजीर खोजू है, बहुत शुक्रिया जी, कैसी हो लड़की? मैं ठीक हूँ जी, नजीर खोजू थैंक यू जी। जाहिद खान थैंक यू, मोहम्मद नईम टेलर बहुत शुक्रिया, मलिक मोहम्मद आदिल शुक्रिया जी, एस साजदा जहूर हमारे साथ बहुत शुक्रिया।

0: G, welcome back. Oh, welcome back. After थोड़ी सी break,
1: हम आ गए वापस.
0: आज हम बात कर रहे हैं कि आपने मुझे बताना है कि आप अभी जो हैं, यानी कि आप जिस प्रोफेशन में मौजूद हैं या आप जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपको अपनी मर्जी से मौका मिलता, आपको मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज करने का मौका मिलता, मुंतखब करने का मौका मिलता, तो फिर आप क्या बनते, आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते, ये आपने मुझे बताना है. बताने का तरीका बहुत ही आसान है. FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा. कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा. ये लाइफ की सेटलमेंट नहीं हो रही मेरे साथ. अच्छा जी, वहां भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. इसके अलावा मौसम की तब्दीली के हवाले से भी बात कर सकती हैं. आपके इलाके में, आपके शहर में मौसम कैसा है? वैसे ये लास्ट जो है वो 2-3 दिन से बारिशें हुई हैं और उन बारिशों ने बहुत अच्छा सा मौसम कर दिया है. इम्पैक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. शाम रात का जो एक टाइम है ना, वो अच्छा हो गया है. यानी कि आपको जो पंखे की हवा है वो ठंडी लगना शुरू हो गई है. आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं. ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा पेज है, वहां से मैंने लाइव थोड़ा सा जाने की कोशिश की है. आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं. आपके कुछ पैगाम मेरे पास मौजूद हैं, उनको भी मैं शामिल करती हूँ. अच्छा जी, शाहिदुल इस्लाम हमारे साथ हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. आई एम आल्सो फाइन, यू आर इनवाइटेड टू बांग्लादेश. अच्छा जी, नहीं बांग्लादेश आ जाऊंगी तो बांग्लादेश वाले कौन जाए. मैं बांग्लादेश आ जाऊंगी तो बांग्लादेश वाले कहाँ जाएंगे फिर. ये बताएं जरा मुझे. मैं जो अभी हूँ, अगर सिंगर होता तो ये नहीं, अगर अभी हूँ अगर सिंगर होता तो ये ना होता. बट उम्मीद पे दुनिया कायम है. मुझे उम्मीद है मैं बनूंगा एक दिन सिंगर. अच्छा, मैं तो समझी कि आपको शायर बनने का शौक होगा. जितनी आप शायरी करते हैं तो आपको शायर बनने का शौक होगा, लेकिन आपको सिंगर बनने का शौक है. सजाद अली लाडला. कमल कहती है चाय पिला दूं आपको नेकी और पूछ पूछ. चाय का कोई कहे तो मैं इनकार नहीं करती. नेवर. चाय एक ऐसी चीज है जिसको इनकार नहीं होता, लेकिन अच्छी चाय, अच्छी पकी हुई चाय. तो मैवे वाली चाय नहीं, वो चाय जिससे खुशबू आ रही होती है, पकने की खुशबू आ रही होती है. कच्ची वाली चाय नहीं पसंद मुझे. अच्छा पहले ना वो जो चाय वो वाली मुझे पसंद थी, वो जो दूध पत्ती टाइप बनती है वो चाय. लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों कहवे वाली चाय पसंद है, वो जिसमें कहवा बनाया जाता है, जिसमें आप सौंफ, इलायची और अदरक थोड़ा सा पीस, उसका दालचीनी भी थोड़ी सी डाल देते हो, पूरे मतलब मसाले पका के फिर आप चाय बनाते हो ना, वो चाय मुझे अच्छी लगती है. और इसके साथ साथ जो है वो मैं बात कर रही थी कि हर प्रोफेशन की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं. उन एक्सपर्टीज़ को जो है ना वो उनको मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए. किसी भी प्रोफेशन को हकीर नहीं जाना चाहिए. अच्छा जी, कमल दास कहती हैं कि ज़ुबिया मैं अभी एक टीचर का सबक याद नहीं करती थी. मैं भी एक टीचर का सबक याद नहीं करती थी. अच्छा, मैं मैथ में बहुत वीक थी. मैं मैथ में बहुत वीक थी. कभी कोई मैथ का टेस्ट मुझे तैयार हो जाता था ना, फिर मैं कहती थी जल्दी से ये हो जाए. वो एक पांचवां चैप्टर हुआ करता था शायद, वो कालिब का था, 6th चैप्टर था. बस मुझे पूरे मैथ में वही याद हुआ था, क्योंकि उसमें भी डेफिनेशंस थी, मुझे याद करनी पड़ती थी. तो इसलिए ऐसे मामलात अक्सर आपके साथ जो है ना वो हो जाते हैं. अच्छा जी, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे कुछ पैगामात हैं, उनको मैं साथ में शामिल करती हूँ और फिर हम एक सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे. और सॉन्ग से वापस जब आएंगे ना, फिर मैं आपके साथ मज़ीद बात करूंगी. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जो अभी हैं, आप अगर वो ना होते तो फिर आप क्या होते, ये मुझे बताना है. रुमान अरशद हमारे साथ काफी टाइम बाद आए. आप कहते हैं लुकिंग सो स्टनिंग टूडे माशाल्लाह ज़ुबिया शफीक. बहुत शुक्रिया जी. उस्मान चिश्ती हमारे साथ हैं. अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है. मैं वकील या क्या होता, सहाफी होता. कहते हैं कि मैं वकील होता या फिर सहाफी होता, ये अच्छा है. अच्छा اچھا جی, اس کے ساتھ عرفان افتخار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سسٹر, ہاؤ آر یو؟ یور پروگرام از ویری گڈ, یو ہیو اے ویری گڈ اسٹائل, یو ہیو اے بیوٹیفل وائس, مے اللہ آلویز گیو یو ایوری ہیپینس ایوری سکسیز. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. رومان ارشد چائے بھیج رہے ہیں, ساتھ میں بہت سارا میوزک بھیج رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. کہتی ہیں بیوٹیفل شو ہمیشہ کی طرح, کیپ اٹ اپ ڈیئر, لسننگ یور شو فرام شادرا. اچھا شادرا سے سن رہے ہیں, پلے لسٹ کمال, موسم اوسم ہے. اچھا موسم اوسم ہے, ابھی جب میں آئی ہوں تب تو دھوپ تھی, لیکن ابھی کا مجھے موسم نہیں پتا کہ ابھی کا موسم کیسا ہے. اچھا جی, ایک عدد سانگ کی طرف میں بڑھ رہی ہوں اور سانگ کے بعد میں واپس آؤں گی. اور آ کے یہاں پہ کیا لگائیں, آئٹم نمبر لگائیں, ہاں یہ آئٹم نمبر لگاتے ہیں. ٹیفائن ٹربل کو شامل کر رہی ہوں, سنیں ذرا اسے. بتائیں مجھے آپ جو آج ہیں, اگر آپ وہ نہ بنتے تو آپ کیا بنتے؟ محمد اویس ہمارے ساتھ ہیں جی, بہت شکریہ. حمداللہ ملا خیل ہیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد حفیظ الرحمان, بہت شکریہ. Stick it out.

वेलकम बैक जी, दिस इज एफएम 101.5 स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में, अच्छा मैं कह रही हूँ, हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारी ये तार हिल गई है और इसकी वजह से ये लाइट बंद हो गई है। कह रही थी कुछ चेंजेस हैं, कुछ बदलाव है, कुछ तब्दीली है, वो तब्दीली ये है कि ये लाइट हिल गई। लगाती हूँ ना अभी। अच्छा जी, मैं आपको पूछ रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि आप अभी जो हैं, अगर आप वो ना होती तो आप क्या होती, ये मैं आज अपने सुनने वालों से पूछ रही हूँ। गवैया होती हैं आप, वाह, वो क्या हारमोनियम होता है, हारमोनियम लिख, सिंगर होती, वो जो पीछे कहते हैं आहो नहीं आहो, वाह वाह वाह वाला सिंगर। वो वाला सिंगर होती है। नहीं यार, वो भी तो सिंगर होते हैं ना यार, देखो ना कितनी ला मिला के आवाजें निकालते हैं वो। अगर वो ना होते तो फिर हा हा हा हा हा, हा कौन करता। बताएं सर, होता है कोई गाना पॉसिबल होता, वो हा हा हा हा हा कहना। अच्छा जी, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे, जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। 11:57 हो चुके हैं और आपके पैगामात मेरे सामने मौजूद हैं, इनको भी साथ में मैं शामिल करूंगी। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन, उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन। सजाद अली लाडला साहब कहते हैं, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। और फिर वो कहता है, याद के दश्त में फिरता हूं मैं नंगे पाऊं, गर्मी नहीं है यार, पैर जलते नहीं है, हैं सजाद, पैर जलते नहीं है, देख तो आके कभी पाओ के छाले मोहसिन, मैंने तो पहले कहा पैर जल जाएंगे, समझते नहीं हो लड़के। वो जो एक शख्स मताए दिलो जा था ना रहा, वो जो एक शख्स मताए दिलो जा था ना रहा, अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन, इतने दर्द पालते क्यों हो लड़के। बताओ जरा यार, ये भी एक ना टेक्निकल चीज है, इसकी लाइट ऑन करना और ऑफ करना और ये सारी चीजें, मेरे ख्याल से ये ना बड़ा टेक्निकलिटी वाले मामलात हैं। हाँ, ये चीज, ये वाला सही है या ये वाला सही है, हाँ मुझे ये बताओ, ये वाला सही है, मुझे तो ये वाला थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन बहरहाल। एनीवेज जी, आप मुझे ये बताएंगे, यहाँ पे हमने जाना है न्यूज ब्रेक की तरफ और फिर हम वापस आएंगे, आके करेंगे मजीद बातचीत। स्टिक अराउंड

0: वेलकम बैक टू दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबैर शफीक। 12:02 हो चुके और आज हम बात कर रहे हैं कि जो आज आप हैं, आज आपका जो प्रोफेशन है वो आपका प्रोफेशन ना होता, या आप जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिंदगी आप ना गुजारना चाहते, आप कुछ और चाहते अपनी जिंदगी में, तो वो क्या होता वो आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका बहुत ही आसान है, जाना अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस, नाम पैगाम सेंड कर देना उसको 4471 पे, और इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज आप कमेंट कर सकते हैं। एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके हमारे से शामिल हो जाएंगे। सामने अच्छा ठीक है ओके, मिसेज आरिफ हमें सुन रही हैं। मिसेज आरिफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सुनती हैं, पसंद करती हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल हैं लाइव पे हमारे साथ। अच्छा जी, आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफएम जुबिया शफीक के नाम से मेरा पेज है, उस पर मैं ऑन हूँ, उसमें मैं लाइव हूँ। हाँ, वहाँ पे आके मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात जो कभी कभी जो होता है ना आपके अपनों का, मुझे लगता है बस दफ़ा बहुत कोई खुशी आपको आई हो ना, तो होते हैं आपके आपकी ज़िंदगी में किसी कोई खुशी वाला लम्हा है और आपको डर लग रहा होता है कभी ऐसा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ किसी बात पे, तो मुझे ना पता नहीं क्यों उस खुशी के छिन जाने का एक एहसास सा रहता है, पता नहीं क्यों होता है, वल्ला आलम इसके बिहाइंड पे। हालांकि मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, मैं वज़ाइफ करती हूँ, अल्लाह ताला नज़रे बद से, और नज़र तो होती है ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि बुरी नज़र ही लगे, बाज़ दफ़ा बहुत प्यार की नज़र भी लग जाती है, बाज़ दफ़ा बहुत कोई अपनायत से देखा हुआ जो कोई आपको देखता है, देखी हुई जो नज़र होती है वो भी लग जाती है, और जब वो लग जाती है ना फिर आपको समझ नहीं आती, आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही होती कि किस साइड पे किस रुख पे चीज़ें जा रही हैं ना। 04221111 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: वाबदा कॉलोनी गुडू जिला कश्मोर से मोहम्मद हनीफ शाह।
0: हनीफ शाह साहब क्या कहिएगा,
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये कि मैं अभी सिंगर हूँ,
0: ठीक है
1: और अगर सिंगर ना होता तो पता नहीं क्या होता,
0: ठीक है,
1: ये पता नहीं है,
0: ठीक है, ओके हो गया
1: जी।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया नीप साहब, थैंक यू जी। कहते हैं जी मैं अभी एक सिंगर हूँ, अगर सिंगर ना होता तो मुझे नहीं पता क्या होता। मासूम लोग, आप सिंगर ना होते तो आप क्या होते। नबील शेख हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका शो और वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया जी, इसका मतलब आप लाइव पे ही तो इस हैं, तो इसलिए खुशी से डर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सजाद कहता है हाँ, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं लाइव आकर, हाँ ना। शर्मा रही हूँ। कहते हैं बहुत ही ग्रेट वाली आरजे एंड कमाल का अंदाज है आपकी वॉइस, आपका नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया जी। क्या कुछ लिख के क्या क्या मिटाना पड़ता है, क्या कुछ लिख के क्या क्या मिटाना पड़ता है, दर्द छुपाने के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है, वो जिन हाथों को पकड़ के चलना सीखा था उन्हें भी अपने हाथों ही दफनाना पड़ता है। यस, दिस इज रियलिटी। उस्मान चिश्ती कहते हैं ये शायर कितने गरीब हैं, नंगे पांव फिरते हैं, आप इसको जूते ले दो। देखिए ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो ना कहें लड़के को। शफकत अली खान है हमारे साथ में हैं, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, ओके बहुत शुक्रिया जी। तो मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जो हैं वो ना होते तो आप क्या होते। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मैं फरीश बुजी लाहौर से बात कर रही हूँ
0: जी। फरीश साहिबा,
2: जो कुछ भी अपने माँ बाप की वजह से हो, मैंने टीचिंग की है शारजा में, बच्चों को बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, कुरान पाक भी पढ़ाया है बच्चों को, तो वो सब बच्चे मुझे लाइक करते हैं, उनकी बेस बनाई है 5-6 तक, तो अभी वो बच्चे प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को आगे, तो हम सबको चाहिए कि जो कुछ आता है ना अपने आने वाले बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि उनमें ये शोर पैदा हो कि पढ़ाई में कितनी बरकत है, तो ये इनकम के टाइम भी काम आती है, आमदनी का जरिया भी बन जाती है। मैंने फ्री सब कोर्स सिखाए हुए, सिलाई का भी सिखाया है, कुकिंग का भी, पढ़ाने का भी, सब फ्री सिखाती
0: हूँ। फरी जी, आपको सिलाई आती है?
2: मुझे बड़ी अच्छी सिलाई आती है, मैं खुद अपने कपड़े सीती हूँ, अपनी बेटी को भी सिलाई सिखा दी है, अभी वो है प्रोफेसर भी है, लेक्चरार भी है, मैंने सिलाई सिखाई, इसीलिए कि जितने का कपड़ा आता है ना उससे डबल कीमत सिलाई की देनी पड़ती है, तो अपनी मर्जी से फिटिंग कर लेती है, अपनी मर्जी के कपड़े सी लेते हैं हम लोग। हाँ जी, किसी के नहीं सीते, बस अपने माँ बाप के सीती थी, अपनी सास से और अपने।
0: जबरदस्त।
2: तो आगे डॉग के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए, पूरी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, सब लिस्टनर कॉलर के लिए दुआएं हैं, सजाद अली लाडया के लिए स्पेशल सलाम है, तो शमसी ग्रुप वालों के लिए अल्लाह हाफिज, ईमान अल्लाह, पीछे बड़ी लाइन लगी हुई है, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी। हाँ, कमलनाज, सजाद अली लाडला।
3: तेरे बाजू चन्ना दिन लंग दे आजाब दे
0: आसानो कर जनाब दे।

0: असर नो कर जनाब दे और जी एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है. आप सुन रहे हैं जी आपका अपना प्रोग्राम लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में मुझे कहते हैं जुबिया शफीक, और मेरे साथ आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1. और हम बात कर रहे हैं एक बड़ा ही जबरदस्त ड्रामा जो कि आजकल आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, इज्जत आपकी. यार कमाल, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया उस ड्रामे ने. जितनी ख्वातीन है ना, मुझे लगता है कि वो जो लाखों ख्वातीन की आवाज उस ड्रामे में छुपी हुई थी, शादीशुदा ख्वातीन की आवाज उस ड्रामे में छुपी हुई थी ना, आपने रिप्रेजेंट कर दिया, एक अलहदा ही मुआशरा तश्कील दे दिया. भाई हक तलफी तो ना करो ना. एक्चुअली पॉइंट ये है कि हम ज्यादती करते हैं और फिर हम उसको कहते हैं, हम उस पर डट जाते हैं. डटो तो नहीं ना, तकलीफ तो तकलीफ है, वो औरत है या मर्द है, तकलीफ तो है ना. मतलब ये क्या कि आप हक समझ के चीजें कर रहे हो. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: रुबिया आपकी पहचानी, मैं कौन बात कर रही हूँ?
0: रिमशा बात कर रही हो?
1: माशाल्लाह,
0: इतने टाइम बाद कहाँ से आई हो लड़की. सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको शादी की.
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक. आप भी कर देखो, आपने तो शो की तब्दीली कर ली. मैं कल आपको सुन रही थी, मैंने कहा आपकी कहाँ चली गई रुबिया, आपकी किधर चली गई है?
0: गुम गई, नाराज हो गई मैं
1: तो. मैंने आज अभी वीडियो
0: बताया नहीं ना, मुझे बुलाया नहीं ना, मुझे शादी पे नहीं ना बुलाया, मिठाई भी नहीं भेजी, नाराज हो गई मैं.
1: सारे मुझे खिला करे, सबको खिला दूंगी.
0: कब खिलाओगी?
1: अभी मेरी खुद की मसरूफियात, खुद की कुछ टेंशन है अभी, वो तो हल हो
0: जाएंगे इंशाल्लाह. रिमशा मुझे ये बताओ कि बाकी सब अच्छा?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है.
0: चलिए वेरी गुड. अच्छा निमशा मुझे ये बताओ कि आप जो अभी हो वो ना होती जी, तो क्या होती?
1: अगर वो ना होती तो फिर मैं या तो आलमा फाजम होती या जादूगरनी होती.
0: जादूगरनी होती. किस पे जादू करना था? किस पे जादू करना था?
1: बंदे पे करना था
0: यार. वो बंदा तो ऑलरेडी आपका, मतलब क्या जादू करना था उस बेचारे को, क्या कहना था?
1: क्या कहना था? ओ ये कि जब मेरी मैसेज को बहुत लेट अप्लाई देते हैं, तो सीएम को जरा थोड़ा सा सीधा करना था.
0: तो वो तो ऐसे ही कर लो.
1: वैसे नहीं, अब भी सीधा कर लेती हूँ.
0: हाँ तो बस ठीक है, फिर जादूगर बनने की क्या जरूरत थी?
1: वो जादूगर बनने से ये होता है कि इंसान अपने मन को
0: ऐसे ही बंदा गायब हो कुछ पेड़ छपेड़ मार लेता है ना.
1: आज पेड़ छपेड़ मार लेता है.
0: ये अच्छा है, ये अच्छा है. चलो रिमशा बहुत अच्छा लगा, बहुत देर बाद. हाँ
1: कहने के जादू करने का भी बड़ा फायदा होता है, अपनी मन पसंदा चीजें भी बंदा गाइड कर सकता है और छुपा भी सकता है.
0: हाँ, बिल्कुल ऐसे.
1: और अभी आप खुशी की बात कर रही थी.
0: हाँ.
1: अभी मेरी खुशी थी मेरे हस्बैंड और, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में कोई चीज या कोई शख्स होता है ना, उसे खोने का हमेशा डर रहता है. और हमेशा जो दुनिया वाले होते हैं ना, नजर जरूर लगाते हैं, नजर जरूर लगती है इंसान को. मतलब जो जेलस होते हैं देख के एक दूसरे को कि हाय इसकी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं, वो जेलसी फील कर रहे होते हैं. उस तरह होता है. जैसे आपने भी खुशी की बात की ना, मुझे भी बहुत डर लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड को खोने से बहुत डर लगता है कि मैं उनको कहती हूँ मुझसे कभी दूर ना आना.
0: अल्लाह पाक आपका साथ, उनके साथ हमेशा सलामत रहे.
1: क्योंकि मैंने अपने बाबा की जुदाई देखी है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है. इसलिए अपनी मन पसंदा चीजों को जिससे मोहब्बत होती है ना, उन्हीं को खोने से डर लगता है सबसे ज्यादा.
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया. चलो रिमशा,
1: जाते जाते मैं सलाम दे सकती हूँ?
0: हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ.
1: रजा भाई भी मुझे कहते हैं मिठाई नहीं खिलाई, मैं खिला दूंगी सबको. रजा भाई का सलाम, शहजाद अंकल, बफी अंकल, मारिया आपी, अनिल आपी, शारदा, जुलेखा, सभी सुनने वालों को मेरा सलाम. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतने दिनों के बाद मुझे पहचान भी लिया, बहुत खुशी हुई मुझे.
0: थैंक यू जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. रिमशा थी हमारे साथ, हमारी बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी कॉलर. आपकी जो ड्रामा जबरदस्त है वाकई, रोमान कहते हैं है ना. सजाद क्यों हंस रहे हो इतना? इसका मतलब ये है कि ड्रामा देखना पड़ेगा. हाँ आपकी जो ड्रामा देखो, बड़ा अच्छा ड्रामा है यार. ये दो ड्रामाज अभी की, अब मैं बात करूँ ना, तो दो ड्रामाज बड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिनकी स्टोरी मुझे थोड़ी फील कर रही है. एक आपकी इज्जत तो डेफिनेटली अभी ये कुछ दिन पहले, उससे पहले तो मैं कह रही थी ये ड्रामे का क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं. लेकिन वो एकदम से उठाया मेरे अहमद ने. ऑब्वियसली अगर लिखा है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा और कुछ धमाकेदार ही लिखा होगा. इसके अलावा एक जंजीरे ड्रामा, वो लड़की की भी एक्टिंग, उसकी एक्टिंग की तो मैं वैसे ही फैन हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है सजल अली. तो जंजीरे भी बहुत अच्छा ड्रामा है. मतलब पाकिस्तानी ड्रामास के तो वैसे ही अलग से कुछ चाम है ना, मतलब एक्टिंग जो है वो पीक पे होती है. तो मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप अभी जो हैं, आप वो ना होते तो आप क्या होते, ये मुझे बताने. कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. जी जी अस्सलाम वालेकुम.
2: खान बाबा बोल रहा हूँ.
0: खान बाबा कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का फर्ज करा, मैं नाउ एट दैट टाइम.
0: आपकी आवाज कट रही है.
2: अभी ठीक है?
0: खान बाबा इंतहाई माजरत के साथ, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मुझे आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट करनी पड़ी है. कमल नाज कहती हैं इज्जत आपकी बहुत अच्छा ड्रामा है ना, बहुत अच्छा ड्रामा है, मेरी रिकमेंडेशन पे उसको लाजमी तौर पे एक दफ़ा देखें. खवातीन तो लाजमी तौर पर देखें और अपने बंदों को भेजें, क्लिप काट काट कर मैं कहती हूँ भेजें, सहम जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम जी.
3: अब्दुल हमीद टुकाबाद से बर्फियाला. माशाल्लाह बहुत सारी दुआवां, माशाल्लाह कॉल मिल गई.
0: क्या कहिएगा? जी जी सुन रही
3: हूं. सब तो पहले मैं कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र, सानू अल्लाह पाक ने इंसान बनाया ते मुसलमान बनाया, ये ठीक है. ते उंज मेरा दिल सखी आ, ते जे कदे अल्लाह पाक कोई चार आने दे ना ते मैं माड़े लोग.
0: क्या कहिएगा? जी जी सुन रही
3: हूं. सब तो पहले मैं कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र, सानू अल्लाह पाक ने इंसान बनाया ते मुसलमान बनाया, ये ठीक है. ते उंज मेरा

लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा

ताकि यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: हाय हाय, तेरे इश्क ने की थे तूने थे तावीज जानिया। सलाम अलैकुम जी।
1: वालेकुम सलाम आपको और तमाम सुनने वालों को। सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: जी मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, लाहौर से।
0: क्या कहिएगा?
1: बस वो ये इन सब से मशवरा किया है तो वो मैंने कहा जुबिया जो है बेटी को पूछ रही है कि आप जो ये काम कर गया आपने, ये ना होते तो क्या बनते
0: हैं?
1: तो ये कह रही है कि आप फलीका मंद खतून होती, फलीका मंद खतून, कितनी हम तंग आए हुए हैं, ये आप तो फिर ये फलीका मंद खतून है, ये मुझे घर में यही कहते हैं सारे।
0: जबरदस्त
1: फलीका मंद खतून है।
0: अच्छा।
1: ये तंग है मेरी इस वजह से कि ये चीज इधर रखो, ये इधर रखो। तो बात ये है कि मैं शायद अब रिटायर हूँ ना, इसलिए मुझे ये ऐसे कहती है।
0: आप फौजी रिटायर तो नहीं है?
1: नहीं नहीं, मैं जो भी मेरा एक
0: ठीक है
1: काम करता रहा हूं।
0: ओके। तो वो क्योंकि ये फौज के साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं ना, वो बड़े सलीका मंद होते हैं, उनको नफासत के साथ हर चीज को रखने की आदत होती है।
1: ये मुझे सबसे बुरी बात यही लगती है, किसी चीज को यहाँ से उठाना और उसे फिर कहीं और रख देना, ये नहीं अच्छा लगता। बाकी आपका प्रोग्राम सुनते हैं, मैंने पहले भी फोन किए हुए हैं आपको।
0: अच्छा जी।
1: हाँ तो अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। तो आपका आज ही टॉपिक है कि आपने जो सारी जिंदगी काम किए ये ना होते तो
0: क्या होते?
1: तो फिर मैं फलीका मंद खतून ही होता था, यही बात है।
0: ओके हो गया, डन है।
1: ठीक है जी, अस्सलामुअलैकुम। बाकी तमाम सुनने वालों को और आपको ढेरों ढेरों सलाम,
0: अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छी बात की, कहते हैं मैं ये जो हूँ वो ना होता तो मैं सलीका मंद खातून होता। सलीका मंद खातून यार नफासत होती है ना। अच्छा, कभी गांव के किसी घर में आप जाओ, आपको वहाँ नफासत नज़र आती है हर एक चीज़ में। वो जो दीवारों पे वो जो बनी होती हैं, खिड़कियाँ बनी होती हैं, उसमें बर्तन रखे होते हैं, जो कढ़ाई की हुई चादरें होती हैं, तकिए होते हैं, पेटियों के जो कवर होते हैं, इवन दो जो मशीन के कवर होते हैं, हर कवर जो है उसमें नफासत झलक रही होती है ना, खूबसूरती। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? दसो जरा, तुसी दसो सज्जाद अली लाडला साहब। किसी की तलाश पे हमें किसी के असर में है, किसी की तलाश है हमें किसी के असर में है, जब से चले हैं घर से मुसलसल सफर में है। ओ ओ। अच्छा जी, मैं आज बात कर रही हूँ कि आप जो हैं वो ना होते तो आप क्या होते, ये मुझे बताना है आपने। बाज़ दफ़ा दिल करता है ना, अच्छा बाज़ दफ़ा आपका दिल कर रहा होता है कि आप अभी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इससे हट के। एक मूवी मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले, वो एक करेक्टर पे होती है, वो करेक्टर जो होता है वो किसी पिकनिक पे जाता है, यानी कि वो किसी टूर पे जाता है और वहाँ वो जो होता है वो वैसा नहीं, वो जैसा बनना चाहता है वो वैसे रहता है। और जब वो वैसे रहता है, वहाँ एक खातून को उससे मोहब्बत हो जाती है, लाइक वो जो उस टाइम पे उसका जो एक एरा होता है वो उसको देख के उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर वो टूर का जो एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद वो वापस आ जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में चलना शुरू कर देते हैं, काम शाम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो खातून जो होती है, वो लड़की जो होती है, वो उसे ढूंढते हुए वापस आती है और जहाँ वो जॉब कर रहा होता है वहाँ पे आके फिर वो उसे ढूंढती है और उसे बताती है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और फिर वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी ये है, मतलब मेरी ज़िंदगी इस सर्कल में गुजर रही है। तो वहाँ जब वो उसे देखती है तो वो कहती है ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी ना, जिससे मैंने प्यार किया था, ये वो इंसान नहीं है। और वो उसे कहती भी है, वो कहता है वो एक करेक्टर था, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, वो चीज़ थी जो मैं बनना चाहता था, नहीं बन पाया। तो बाज़ दफ़ा आप में कोई बच्चा छुपा होता है जिसको ज़िंदगी की तलखियाँ जो है ना वो कहीं ना कहीं घुमा देती हैं। मोहम्मद हुसैन मुराज हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया।

0: बहुत काल मिला रहा हूँ बट लग नहीं रही सजाद, किस्मत है ना आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: मोहम्मद हनीफ शाह, आपदा कॉलोनी गुड्डू, जिला कश्मोर।
0: क्या कहिएगा,
1: माजरत के साथ मुझे दूसरी मरतबा कॉल करनी पड़ी।
0: यहाँ लोगों की एक दफा नहीं मिल रही, आपकी दूसरी दफा कैसे मिल गई?
1: जी
0: मैंने कहा यहाँ लोगों की एक दफा नहीं मिल रही, आपकी दूसरी दफा कैसे मिल रही है?
1: बच्चे हैं पर क्या करें,
0: माशाल्लाह। क्या कहिएगा,
1: मैंने कहा शामिल नहीं किया आपने, तो मैंने आपको टॉपिक का जवाब तो दे दिया था मैंने आपको कि मैं सिंगर हूँ, अगर सिंगर ना होता तो पता नहीं क्या होता, आप नसीब की बात है।
0: तो फिर आपने नसीब के साथ दोबारा कॉल क्यों की है अगर आपने जवाब दे दिया था तो?
1: इसलिए जो पैगाम मैंने इस्लामाबाद का नंबर कहा था
0: वो मैं आपको बता दूंगी जी, मैं आपको बता दूंगी। बहुत शुक्रिया नवीद शाह, नसीम शाह आपका। ना क्या करें ऐसे। 051 आपने डायल करना है और आगे नंबर वही है जी।

0: ढोला तेरी अखियां दी सो है। और आज हम बात कर रहे हैं जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि अभी जो आप हैं, अगर आप वो ना होते तो फिर आप क्या होते। 04221100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: बिल आखिर मिल गई तुम्हारी कॉल।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: जोड़ता रहता हूँ टूटी हुई आवाजों को। जोड़ता रहता हूँ टूटी हुई आवाजों को, शोर इतना है सुनाई नहीं देता साईं। बाहर एक दश्त बताता है कि आजाद हूँ मैं, अरे कोई अंदर से रहाई नहीं देता साईं।
0: वाह,
1: मैं किसी, बहुत शुक्रिया से मैं किसी फूल पे रख देता हूँ आंखें अपनी, मुझे कुछ और सच्चाई नहीं देता साईं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सतवीं सुंदर जी आई एम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। उम्मीद करदा तुसी ठीक ठाक हो।
0: ऐ तुसी पंजाबी प्रोग्राम च कॉल नहीं कीती?
1: लगी समझ, सॉरी मिस्टेक हो।
0: हां जी ओके। क्या कहेंगे सजाद?
1: माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा शो, और आप सबके दिलों में घर करते हैं, और आपके लिए बहुत सी दुआएं, और आप हमेशा हमारी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह पाक आपकी नसीब अच्छे करे, आपको से दे, और कोई दुख कोई परेशानी ना आए आपके पास, और इसी तरह ही हंसकर मुस्कुराते रखे।
0: अच्छा,
1: जो टॉपिक है उस पर मैं फिर थोड़ा सा गुनगुनाना भी चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली
0: जी।
1: साजन

देखता मत जा, बसो हमारी नगरी में। ओ मोहे सुंदर मुख दिखिला छा, ओ कदिया मिले सा।

0: थैंक यू सो मच, टाइम के मुनासिब से इतना ही काफी है।
1: बहुत शुक्रिया सजाद।
0: आंटी सरी ने मुझे सलाम दिया, उनको वालेकुम सलाम, और अरशद रहमान भाई ने और रजा भाई ने, और जिन्होंने कहा कि तमाम सुनती सुनाता तो उनके लिए अच्छा वालेकुम सलाम और
1: सजाद अली लाडला साहब हमारे साथ थे, हमें लाइव पे ज्वाइन किया है जी आरजे कुमार शर्मा ने। हेलो आरजे दीदी, हाउ आर यू, वी आर वाचिंग यू फ्रॉम करनाल हरियाणा इंडिया। अरे वाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसा मौसम है वहां का ये तो बताएं जरा। गुल यासीन नास कहते हैं जी आर लुकिंग ग्रेट, थैंक यू। वैसे मेरी आंखें स्वेल नहीं नजर आ रही, आंखें स्वेल नजर आ रही, सर में दर्द हो रहा है बहुत शदीद वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी खान बाबा।
2: हाँ ग्वार से बोल रहा हूँ, क्या हाल है? इधर तो ट्रांसमिशन आती नहीं है, टॉपिक क्या है?
1: क्या नहीं है यहाँ पे?
2: यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं आ रही है कोहाट में।
1: अच्छा ट्रांसमिशन नहीं आ रही, आप जो हैं आप वो ना होते तो आप क्या होते?
2: हाँ आप ना होते तो आप क्या होते?
1: जो अभी हैं वो ना होते तो क्या होते?
2: मैं आलम-ए-दीन होता।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच, बहुत शुक्रिया जी।
2: ओके
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कहते हैं जी जो मैं ना होता तो मैं आलम-ए-दीन होता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। देखिए आपकी सोच है ना, कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं ना वो अच्छा लिख दिया जाता है, जब आप कुछ बुरा सोचते हैं ना जब तक आप करते नहीं हैं लिखा नहीं जाता। कितना प्यार करते हैं ना अल्लाह ताला हमसे। सजाद अली लाडला ये गाना था ना, कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे भी। राजकुमार कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, दिल का और सिटी में मौसम अच्छा है, जा दिल का भी अच्छा है। वाह, दिल का तो मैंने पूछा ही नहीं था। कदी आमिल सावल यार भी बस हमारी नगरी। 04221100101

0: 0421100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी?
0: मैं ठीक हूँ। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: जी लाहौर से इरम बात कर
0: रही हूँ। इरम क्या कहिएगा?
1: काश हम आरजे होते,
0: काश आप आरजे होते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर हम कहाँ जाते? चले।
1: और वैसे
0: आपने इरम, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है।
1: शायरी करने का
0: शौक है। ओके हो गया, ओके हो गया, बहुत शुक्रिया जी।

0: वेलकम बैक जी, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जो हैं वो ना होते तो आप क्या होते, आपने मुझे ये बताना है जी। अभी हम जो कॉलर लेंगे ना, आप कोशिश कीजिएगा कि बस वन लाइनर में आंसर कीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू का टाइम नहीं हमारे पास होगा क्योंकि 12:47 हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारे साथ, कहाँ से? शहजाद साहब हैं हमारे साथ, सॉरी।
1: हाँ जी जी हम जी, क्या बात है जी। अच्छा, बहुत अच्छा शो माशाल्लाह, अच्छी बात, प्यारी आवाज माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे जी। देखे जी, इंसान से बड़ा तो कोई नहीं है जी दुनिया में, लेकिन फिर भी जी हम होते तो फिर सुल्तान रही होते जी। मौला जट होते आपके प्रोग्राम में आते ना मौला जट। तो माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपका शो जी।
0: बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि मैं ना हम ना होते ही जो हैं तो सुल्तान राही होते, ठीक है। अच्छा जी, अब उस्मान चिश्ती कहते हैं AI के पास किराया नहीं है इसलिए वो मिलने नहीं। ये किसे कह रहे हैं सुल्तान आप? रियाज भट्टी हैं, बहुत शुक्रिया जी। 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट है, उस पे पैगामात उस्मान चिश्ती नहीं, अभी फिलहाल वो नहीं कर रही। यार ये जब मैं आपका कॉल अटेंड करती हूँ तो फिर आप कॉल कट क्यों करते हैं, क्या मसला है आपके साथ? ना अटेंड करूं फिर मैं आपकी कॉल, बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जी अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से? उस्मान साहब क्या कहिएगा
2: जी, अगर मैं जो अभी हूँ मल्टी टास्क है मेरा, अगर मैं ये 2-3-4-5 काम ना करता फिर मैं होता डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला। जो ये जो लोग कहते हैं ना कि हम अंदर से भी वो ही अपाहिज, जब उनका ऑपरेशन होता ना फिर पता चलता वो अंदर से क्या अपाहिज से क्या।
0: ठीक हो गया,
2: ओके,
0: अल्लाह हाफिज। सही है ये भी, अच्छा तरीका निकाला आपने, 3-4-5-6 जो काम अभी कर रहा हूँ वो ना करता तो फिर ये करता। अच्छा यार, जिंदगी में ना, जिंदगी आपको हर इंसान को एक मौका जरूर देती है, आपको पहचान करनी है उस मौके की, वो आपको मौका कब मिलता है, और जब वो मौका मिले ना फिर उसे जाने नहीं देना, फिर आपको उस पर मेहनत। मैं पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, वो कहते हैं कि जब काम आपको मिलता है ना तो तब गिले ना किया करें, मेरे पास इतना काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। गिला तब बनता है जब काम नहीं मिलता, और जब काम नहीं मिलता ना, जब काम नहीं होता, जब आप मसरूफ़ नहीं होते तब बड़ा मसला होता है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं खासकर, वो इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि जब आपको काम नहीं मिलता ना, जब आपके पास काम नहीं होता, जब आपके पास क्लाइंट नहीं होता, तो फिर कितना बुरा लगता है, कितना अजीब सा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। लड़की हमारी कॉल भी उठा लिया, बोलो। कवरनाथ बोल रही थी।
0: उठा ली कॉल उठा ली, फोन रखती ना फिर मैंने उठा लेना था, कॉल मैं थोड़ी मुश्किल से उठाती
3: हूं, तो इसीलिए तो मैंने नाम भी ना लिया, मुझे पता था ज़ुबिया ने उठा लेना है इसलिए तो बात आना नहीं।
0: फोन रखती तो मैंने उठा लेना था।
3: हां तो फिर रोज रोज थोड़ी लिए जाते हैं ना, इतने महंगे आते हैं।
0: क्या कहिएगा,
3: मैंने बता दिया था मैंने जो बनना है, लेकिन इसके अलावा ना मुझे 007 बनने का बहुत शौक था, मुझे एंग्जायटी होती है कुछ चीज जानने की, तो मैं कहती हूँ कि कोई चीज हो मैं उसको जानूँ, तो ये मैं कहती हूँ कि बस जासूसी टाइप नहीं किस तरह बंदा होता वो। और इसके अलावा
0: जासूसी नावल की हीरोइन।
3: इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान ना कुछ भी बन जाए, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए, अगर उसके अंदर किसी को देने के लिए इज्जत और सबसे बड़ी बात उसके दिल में एहसास नहीं है ना, तो उसका सब कुछ को जो भी ओहदा है वो किसी भी ओहदे पे फर्ज सब बेकार है।
0: अच्छी बात है।
3: वो किसी इंसान को इज्जत दे बगैर किसी फर्क के, बगैर किसी उसका मियार देखे, उसकी जात पात उसकी उचनी देखे, इस तरह का खूबसूरत दिल होना चाहिए हर इंसान के अंदर।
0: अच्छी बात,
3: तो वो मुकम्मल इंसान बनता है।
0: अच्छी बात।
3: और एक मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगी। हमने कब चाहा वो हमारा हो जाए, इतना देखा जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए।
0: देखे ना फिर
3: डूब गया, हम जिसे पास बिठाए वो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाए।
0: वल्लाह ऐसा नहीं होता,
3: मेरी तरफ से
0: ऐसा नहीं होता।
3: अच्छा चलो आइंदा हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को, कितने भी सो रहे हैं, सबको जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सलाम अच्छी से तंदुरुस्ती की दुआ। और मेरे शब्दी गुरु वालों को भी, सबको मेरी तरफ से सलूट।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कंवर, आपका बहुत शुक्रिया। और जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: साजना हमारे साथ, क्या कहिएगा?
4: हाँ जी, मैं कपड़े के बारे में कहना चाहूंगी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं आरजे बनूंगी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है।
0: डन हो गया।
4: हाँ जी, और जबरदस्त शो, शुक्र कॉल मिल गई लेकिन एंड में।
0: चलिए मिल तो गई, बहुत शुक्रिया साजना, थैंक यू सो मच। साजदा थी हमारे साथ और मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप आज जो ना होते तो आप क्या होते। बैकग्राउंड पे एक सॉन्ग रखते हैं, बैक टू बैक दो तीन कॉल्स लूंगी, वन लाइनर आंसर देना है आप लोगों ने।

0: रमजान गुजर कहते हैं कि 20 साल हो गए एफएम सुनते हुए, आज पता चला कि ऑन एयर कॉल ऐसे होती है। कैसे होती है रमजान गुजर? अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम
0: अस्सलाम। एम रजा चौधरी साहब
1: जी, मैंने
0: मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही वैसे जो आप बोल रहे हैं।
1: अच्छा वहाँ आई नहीं है, आप आ रही? हेलो
0: जी जी।
1: हाँ जी मैं मोलू में ये कहता हूँ, अगर मैं कुछ बनता या मैंने सोचा था, मैंने दो खाए थे, उनासी के एक आदमी ज्वाइन करता है, आदमी करता तो या क्रिकेटर बनता, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, लेकिन ये दोनों ख्वाब अधूरे रह गए। इसमें ये था ना बैंगलोर में जो ना वार्ता हुई मेरे किसान से, तो काफी सारे खसारा आ गया, तो खसारे से ये मतलब बंदे को जो अपनी जो चीजें थी ना वो जारी रखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हूँ बड़ा अच्छा जिंदगी गुजर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आरजी बनू, फिर मैं आरजी बना, मैं लिस्टनर सही है, नाम भी बनाना है ना, तो वो लिस्टनर बन के बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इतनी देती है 1-1 की वजह से पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मैं मैसेज करता हूँ दूसरे मुल्कों में, तो ये 1-1 को करा जाता है।
0: ओके हो गया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का।
1: ओके जी।

0: मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है,
1: मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है।

0: उसका एक शेर मुझे बड़ा पसंद था, मैंने उस शेर के लिए इसको पढ़ा था, लेकिन मुझे वो शेर मिला नहीं है. किसी के पास ये पूरी पोइट्री है ना, वो मुझे जरा शेयर कर दिएगा. हाय, वो क्या कहते हैं कि मैं तुझे जाके बताता. नहीं, वो तो कुछ और है, वो तो कुछ और है. नहीं नहीं, वो कुछ और है. मैं दो पोइट्रीज को मिक्स कर गई हूँ, है ना, मेरे ख्याल से. एनीवेज जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जो होते, आप अगर आप जो हैं, आप वो ना होते तो आप क्या होते, तो ये मुझे बताना है आपने. वालेकुम अस्सलाम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या? जी जी, क्या कह रहे हैं
1: आप? ना मैं अच्छा बाप बन सकूं, ना मैं चोर बन सकूं. अच्छा, मैं बकर गुजार रहा हूँ बस. मेरी जान काटी हुई है, 6 महीने हो गए शुगर के साथ.
0: अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे जी.
1: दुआ करे मैं ठीक हो जाऊं. मैं ना अच्छा चोर बन सकूं, ना बाप बन सकूं बच्चों का.
0: अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे.
1: कहाँ पे कहाँ पे पीछे भागता भागता रहूं. आप समझ आइए, जब चार बजे पर आप समझ आइए.
0: अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे जी. अल्लाह ताला जो करते हैं वो मसलहतन उसमें कुछ छुपा होता है. बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया आपके लिए. ढेर सारी दुआएं. अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां करे. आप जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपके हक में उसको बेहतर करे, आपके जायज मुरादे पूरी करे. आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइव पे ज्वाइन किया, जिन्होंने FM 101 के ऑफिशियल पेज पे ज्वाइन किया. आप जो होते वो ना होते तो आप क्या होते? आप जो भी होते, आप जो भी हैं उससे राजी रहना सीखें. आप यकीन जाने आप जो हैं आप उससे राजी हो जाएंगे ना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी. आप अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पे भी हैं, बस उससे राजी हो जाएं, मुतमईन हो जाएं. जब आप मुतमईन होना सीख जाएंगे ना, तो आप जिंदगी में किसी भी काम में मायूस नहीं होंगे. हर इंसान की अपनी स्पेशलिटीज होती हैं. वो चाहे डॉक्टर है, वो चाहे इंजीनियर है, या वो चाहे टेलर है, वो चाहे मजदूर मिस्त्री है, उसकी रिस्पेक्ट करें, उस रिस्पेक्ट को कंटिन्यू रखें. अपने काम की, अपने प्रोफेशन की इज्जत करें. आप जो कर रहे हैं उसको इज्जत दें, यकीनन सब कुछ बेहतर हो जाएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तक के लिए अमान अल्लाह.
2: Coming up next, 101 News Headlines.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी, कोई शक है क्या?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी, कोई शक है क्या?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

जान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: This is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासिये आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
2: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा, सूरह बकरा है, आयत मुबारका है 159 और 160। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यनाति वलहुदा मिन बादे मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहु वबय्यनू फअूलाइका तूबु अलैहिम वअना अत्तवाबुर रहीम। सदाकल्लाहुल्अज़ीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं, मा अनज़लना जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यनाते खुली निशानियों के साथ, वलहुदा और हदायत, मिन बाद इसके बाद के जो, मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब इसके लोगों के लिए किताब में वादा फरमा चुके, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइनून और यही वो लोग हैं जिनको लानत करता है उन पर अल्लाह और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। अब ये कौन है लानत करने वाले? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि हज़रत माज़ बिन जबल, हज़रत साद बिन माज़ और हज़रत ख़ारजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने उलमाए यहूद से पूछा कि तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने उनसे छुपाया और उनको बताने से इनकार कर दिया। इस मौके पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई। हालांकि हर चंद के इस आयत का निशान और यही सारा खास, लेकिन इसका हुक्म आम है और जो शख्स भी अल्लाह के दीन में से किसी चीज़ के इलम को छुपाए वो इस आयत की वईद में दाखिल है और लानत करने वालों की लानत का मजदाक है। यानी जो सहाबा कराम, जो भी कुछ इसके हकदार हैं जिन्हें बताया जाना था, उनकी भी लानत अल्लाह की तरफ से, क्योंकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने इस आयत से अमूम ही समझा था। इमाम इब्न जरैर रवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अगर किताब इस किताब अल्लाह में यह आयत ना होती तो मैं तुमको यह हदीस बयान ना करता। फिर उन्होंने ये आयत तलावत की जिसका तर्जमा है, जिसने इस शख्स पर लानत की जो लानत का मुस्तहिक नहीं है तो लानत लानत करने वाले पर लौटेगी। तो मा अनज़लना मिनल बय्यनाति वलहुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, तो ये है इसका, इल्लल्लज़ीना ताबू मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वह असलहु और अपनी इसलाह कर ली और संवर गए, वह बय्यनू और वादा किया, उलाइका अतूबु अलैहिम बस उनकी तौबा कबूल फरमाऊँगा मैं और मैं ही, वाना तवाब रहीम और मैं ही तौबा कबूल करने वालों में से हूँ। ये अल्लाह ताला का ऐलान है कि मैं ही तौबा और मेरे अलावा और कौन है जो तौबा कबूल करे। और यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइनून, लानत करता है उन पर अल्लाह और उन पर लानत करने वाले, ये वही जिनमें फरिश्ते भी आते हैं, लोग भी इसमें आते हैं। तो फरमाया कि इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग जो ताबू और जिन्होंने तौबा की, वह असलहु और फिर संवर गए, यानी फिर आइंदा नहीं ऐसी कोई बात छुपाई, वह बय्यनू और वाजा किया, यानी जाहिर करें जो कुछ भी है, छुपाएं ना अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के अहकामात को, फाउलाइका अतूबु अलैहिम बस यही वो लोग हैं जिन्हें मैं माफ़ करता हूँ, जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ, अलैहिम वाना तवाबुर रहीम और मैं ही तौबा कबूल करने वालों में से हूँ और कौन है जो मेरे अलावा तौबा कबूल कर लेगा। ये अल्लाह ताला का ऐलान, यह हर उस पर नाफज होता है, अगर कोई उलमाए दीन भी छुपाएं बात को, हक बात को, तो उन पर भी ये मसदाक है, उन पर भी ये आती है ये बात, उसकी वईद में दाखिल है। वाखर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबी।
3: और मुसलमानों, नमाज सही वक़्त पर अदा करो, इसमें अल्लाह ताला ने रूहानी और जिस्मानी शफा रखी है, और देखो आपस में फिरके ना बना लेना जैसे दूसरी कौमों ने बनाए और वो तबाह हो गई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम कुरान मजीद में मुसलमान रखा है।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरकान हमीद से। آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
4: This is FM 101.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: Panagayama!
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। यौमे पाक बहरिया आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 1965 की जंग के उन हीरोज को खिराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वजीर आजम ने कहा है कि शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत से मुतालबा किया है कि वो अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में समाजी और सियासी तंजीमों पर आयद पाबंदियां खत्म करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट कल से बर्मिंघम में शुरू होगा।
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
3: बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
6: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
7: This is
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

Assalamualaikum FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से जनाब मुझे कहते हैं आपकी आरजे आपकी होस्ट आपकी तो शीबा मलिक आपके साथ और लाहौर ऑन है। I just hope and believe आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है, मजे में हैं और आपकी जिंदगानी जो है बड़ी ही अच्छी गुजर रही है मौसम के संग और हवा के दोष पे। I just believe so. I hope that everything is really getting fine around you, कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा अच्छा चल रहा है और अगर नहीं भी चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब अच्छा ही हो इसकी तो कोई शर्त नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ने हमें पैदा किया ऐसे ही पैदा किया है कि हाँ बस ठीक है ओके गुजारो जाओ धक्के खाओ। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा धक्के पड़ जाएंगे परेशान नहीं होना, मैं हूँ। एनीवेज आज है 9 सितंबर 2026 और दिन है टी यूज़डे का, 5:10 हो चुके हैं और 7 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है, लाहौर ऑन है। शो में आप शामिल होंगे 4471 पे मैसेज करेंगे, साथ ही साथ जो है हमारा आप दुनिया के किसी भी और कोने से शामिल हो सकते हैं www.radio.gov.pk/livestreaming के थ्रू, आप कहीं से भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और प्रोग्राम में आइए मज़े करिए, क्योंकि ये 2 घंटे की जर्नी जो है ना ये मुझे भी नहीं पता होता कैसे हो जाती है। Alright, जी लाइफ स्टाइल देखेंगे, फैक्ट चेक देखेंगे और इंटरटेनमेंट टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें क्या चल रही हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कह रही है, इंटरनेशनल डेज कौन से हैं, वर्ल्ड डेज कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इस 2 घंटे में जो है बताती हूँ और 2 घंटे में डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लाइव कॉल भी ले लेते हैं। ओ माई गॉड इतना बोझ बेचारा आरजे की करे। ये सब कुछ होने वाला है आज के शो में, सो मेरा ख्याल है कि शुरू करें। हाँ गुड थिंग इज कॉक स्टूडियो सीजन 17 आपने सुना वो गाना, आप ही गया 3 दिन पहले रिलीज हुआ 4 सितंबर को दिल, तो अभी मैं वहाँ से शुरू नहीं करने वाली, ठीक है अभी मैंने बता दिया है बस। तो कोक स्टूडियो जो है सीजन ऑन हो चुका है, सो टाइम टू टाइम वी आर गोइंग टू लाइक अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं और डेफिनेटली हमारे कोक स्टूडियो की तो क्या ही बात है, दुनिया फ़ैन है। अभी तो हम वो पीछे वाला जो पहले वाला कोक स्टूडियो 2 साल पहले आया, अभी तो हम उस खुमार से नहीं निकले, उनका 2 AM और उनका ब्लॉकबस्टर, फिर उसके बाद पिया कॉलिंग, आई मीन नंबर ऑफ लाइक हिट्स। लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा मलिक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर और शो को शुरू करते हैं, हैवी गोना स्टार्ट द शो, सो आ जाओ दोस्तों मजे करते हैं शो में।

राइट, इंसान ने जब भी मात खाई है, इंसान ने जब भी जो है ना अपने आप को कोसा है, वो दिल के मामले की वजह से ही कोसा है, वरना दिमाग तो खुदा ने इसलिए बनाया था कि इंसान अपने आप को अच्छा ही फील करे और यही सोचे कि हाय क्या ही खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला ने हमें जो है नवाज दिया है। तो दिमाग का ये काम था, फिर दिल ने दिमाग का भी सत्यानाश कर दिया और दिल ने कहा नहीं तू ये कर तू वो कर, फिर हम इंसान मजबूर हो गए ये कहने के लिए हाय मेरा दिल ये कह रहा है और मेरा दिमाग ये कह रहा है। तो फिर दिल और दिमाग ने हमारी दुर्गत बना के रख दी है। एनीवेज, आज शिवा मलिक और FM1 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, सो आप लोग साथ हैं हमारे। ओके, ऑलराइट।

जी 447 उन पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो शो में शामिल करेंगे बिकॉज टाइम इज रनिंग. 5:18 ऑलरेडी हो चुके हैं और 5:25 पे की मर्शल भी है और उसके बाद 6:25 पे है. ऑलराइट, कमर्शियल भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ब्रेक भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कभी कभी ये ब्रेक जो होते हैं ना हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कभी कभी ये ब्रेक जो है अननेसेसरी अगर आ जाएँ किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ में जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती और ये ब्रेक जो है हमें शेक करके रख देते हैं, फिर बंदा ये सोचता है कि यार ये वाली ब्रेक मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी. एनीवेज, आज इंटरनेशनल डेज कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं. 8 सितंबर 2026 को क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आज, पढ़ाई लिखाई वाला दिन है, और इसके साथ साथ एक्टर्स डे है. ओके ने ना पंजाबी तो बहुत बड़ा एक्टर है वो नहीं, एक्चुअली जड़े एक्टर ने उन्होंने दिन है आज. तो देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कहाँ को जा रहा है, क्या हो रहा है, एंड कंपैरेटिवली वेयर वी आर स्टैंडिंग एक्चुअली. तो ये सारी चीज़ें आज के शो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा देयर इज़ नथिंग सो फार, आज बस यही दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा. यस, या सो फार नथिंग. ओके, अच्छा कुछ नेशनल डेज हैं कहीं पे, अच्छे अच्छे नेशनल डेज हैं, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग अबाउट दैट. मुझे रिसेंटली कुछ लोगों ने कहा जी शिबा आप बड़ा बोल्ड शो करती. मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से ऑन एयर करती हूँ जो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है. आई वाज लाइक अच्छा FM 101 पे मैं ऐसा शो करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी कोई चीज़ कभी ऑन एयर नहीं गई है 25 ईयर्स में जो कि नहीं जानी चाहिए. एंड आई एम थिंकिंग कि व्हाट इज़ बोल्ड अबाउट इट, यानी कुछ भी. अच्छा जी, तो देख लेते हैं कि 447 ऑन पे कौन कौन हमारे साथ हैं. बतूल ने मैसेज किया है. बतूल कह रही है अस्सलाम वालेकुम, आ गई आपको याद. हाँ जी बिल्कुल आ गई मुझे याद, तुम्हें याद आ गई. वो पिछले हफ्ते मैंने शो नहीं किया था, तुमने याद किया मुझे, नहीं किया होगा. समरीन ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दुलारी शिबा कैसी हो, ये जो इतना मक्खन तुम्हारे मुँह से टपक रहा है कोई ख़ास बात है. आई एम ऑल गुड और सब ठीक ठाक है, सब ओके दी आवाज़ है. उसके साथ एहतशाम है, फिर उसके बाद हमारे साथ दर्शन भी हैं, ज़रियून भी है. वालेकुम अस्सलाम एंड यस आई एम गुड. लास्ट वीक शो करने के लिए क्यों नहीं थी आई, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सो मैं इसलिए नहीं आई थी, वरना यू नो छुट्टी करने के लिए तो बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है. हफ्ते में एक शो होता है सो आई डोंट वांट टू मिस रियली. फेसबुक वाले थोड़ा सा सब्र करें, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं. रानिया ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, आप छुट्टियां बहुत करने लग गई हैं, किसकी सोबत का असर है. लगता है दुश्मनों की बदुआएं जो है ना वो लग गई हैं. पहले ये था कि मेरा रिकॉर्ड था कि मैं छुट्टी नहीं करती हूँ, अब लगता है कि दुश्मनों की बदुआएं लग गई हैं, सेहत की खराबी की वजह से जो है ना मैं शो नहीं कर पाती हूँ. ऑब्वियसली जब आवाज़ ही नहीं निकलनी है तो मैं क्या करूँगी. कभी कभी मैं ब्लैंक होती हूँ, मेरी मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या करने जाना है, लेकिन अगर गला मेरा ठीक है तो फिर मुझे नहीं कोई होता. तबीयत कुछ भी ख़राब हो तो मैं कहती नहीं जाके करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे आके मूड ज़रा और अच्छा हो जाता है.

ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਦੈਟ ਸੌਂਗ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ? अच्छा ओके, 10 महीने पहले गाना है, सराइकी गाना है। और खबर तुमने इस गाने का के बारे में बताया क्यों नहीं? तुम लेट हो गए, किसी और ने बता दिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो रेगुलर सुन रहे हैं उन्होंने नहीं बताया। अच्छा जी, कौन है? इरफान खान है, सराइकी सॉन्ग है। सो हैव वी गोना गो विद दिस ट्रैक, सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग। बट इस गाने से पहले 25 पे जो है वो कमर्शियल है, सो आई प्रेफर कि हम इस गाने को वन गो में चलाएंगे। आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो देख लेते हैं फेसबुक पे। ऑल ऑफ़ यू थैंक्स अ लॉट जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पे। ज़रियोन ने मैसेज किया है, जी जी शिबा जी, हम पे इल्ज़ाम लगा दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शायरी की वजह से आप छुट्टियाँ ज़्यादा करनी शुरू कर दी हैं आपने? हाय, ये खुशफहमियाँ, कोई कैसे ना मर जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायरी का जब मूड होता है तो डेफिनेटली कर देती हूँ, लेकिन जब बार बार कोई कह रहा होता है ये करो ये करो ये करो, तो फिर हम नहीं करते, फिर नहीं मैं करती। फिर जितनी भी अच्छी पोइट्री क्यों ना हो, मैं कहती नहीं हूँ नहीं। और हर वीक पोइट्री मज़े की भी नहीं लगती। कभी कभी ऐसा कोई मूड हो, ऐसा कोई मिजाज हो, और मौसम के नज़ाकत हो, तो फिर डेफिनेटली हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज, मज़ा नहीं आता। ड्राइव टाइम शो है तो फिर उस हिसाब से ये पोइट्री और सैडनेस ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, यू नो। नसीर है हमारे साथ बलूचिस्तान से, वल जी बली करी आया, थैंक यू सो वेरी मच, आप शो में शामिल हैं। हामिदुल्ला मलखेल मेरे भाई, ऑल गुड। अच्छा जी, मोहब्बत से कभी नफ़रत नहीं होती, हर मोहब्बत करने वाले के रवैये से नफ़रत ज़रूर हो जाती है। एग्जैक्टली, मोहब्बत इट्सेल्फ एक जज्बा ऐसा है ना, वो ऐसा है, वो गुलाब के फूलों में जो जितने भी फूल हैं, गुलाब का फूल एक्चुअली प्रायोरिटी इसीलिए रखता है बिकॉज उसमें अट्रैक्शन बहुत होती है, वो सबको अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जितने भी जज्बे हैं, गुस्से का जज्बा है, एहसास का कुछ भी है, वो सारे जज्बों में जो मोहब्बत का जज्बा है ना, सबसे अव्वल इसीलिए है क्योंकि वो बदलता नहीं है इट्सेल्फ। इंसान का जो अपनी नेचर होती है, अपना बिहेवियर होता है, वो उससे ज़रूर इरिटेट करा देता है। बट अगर ये हो कि हमें मोहब्बत से नफ़रत हो जाए, तो फिर हम पूरी ज़िंदगी मोहब्बत का नाम भी ना सुने। पर इंसान जो है वो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, एक दफ़ा फिर सही, मरने के लिए हम तैयार हैं, फिरोज आलम जान, वालेकुम अस्सलाम, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, ऑल द वे, शो इज़ गोइंग गुड एंड ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच, एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, सलामत रहे आप, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। ओके, हमेशा की तरह खूबसूरत एंट्री, वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच। और नंबर वन आर जे रेडियो स्टेशन FM 101, थैंक यू सो वेरी मच। तारिक ऑल द वे फ्रॉम कुवैत, वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी खुश आमदी, तमाम समातों को अस्सलाम वालेकुम। तारिक ऑल द वे, सूरत एंट्री, वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच। और नंबर वन आरजे रेडियो स्टेशन FM 101, थैंक यू सो वेरी मच। तारिक ऑल द वे फ्रॉम कुवैत, वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी

0: छुट्टी करें तो वो महीनों में बात चली जाती है, यहाँ पे रेगुलर लिसनर जो है वो शो में ना शामिल हों तो हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर सही आरजे का बड़ा हिसाब रखा जाता है। अच्छा जी, सो कमर्शियल है, स्टिक अराउंड एंड कीप लिसनिंग, कमर्शियल के बाद गाने हैं, सो आई विल कैच यू आफ्टर।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

सो वेलकम बैक ओके जी. सो इट इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आज, और पाकिस्तान का जो यू नो ओवरऑल नेशनल लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सीमेटली वो 63% है ओनली, और विच इज़ वेरी वेरी वेरी लो. पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो एक सर्वे है अकॉर्डिंग टू दैट अगर देखा जाए तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 63% है. ठीक है, अब उसमें जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, फीमेल का ये है और मेल का जो है वो ये है. फिर उसके बाद सूबों के हिसाब से देखा जाए तो वो अलग अलग है. मेल का जो स्टैंडर्ड है वो 73% आ जाता है. फिर उसके बाद बाकी का जो बचा कुचा है वो ख़वातीन के हिस्से में आ जाता है, फीमेल के हिस्से में आ जाता है. सो वी आर यू नो लैकिंग इन दैट. फिर हमारे जो यू नो अर्बन रूलर्स एरिया हैं वो 74% है वहाँ पे कंपैरेटिवली जो है. फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ देखें पंजाब के हिसाब से देखें, यू नो प्रोविंशियल रेट अगर देखें तो पंजाब का जो है 68% है, सिंध का जो है वो 58% है, बलूचिस्तान 49% है अनफॉर्चुनेटली. तो ये है हमारा ये लिटरेसी रेट और यहाँ पर हम स्टैंड करते हैं. ओवरऑल जो है 63% है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट, और दैट्स हाउ इट गोइंग व्हाट वी कैन से. और मैं जो हूँ द गुड थिंग आई डोंट वांट टू फील अबाउट पाकिस्तान के जी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बड़ा कम है, तो मैं कंपेयर ही नहीं करती किसी और के साथ. हाँ, हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ऑलवेज प्रेफर ऑन फोकसिंग के जी हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या चल रहा है, रादर के पॉइंट करना किसी और पे. पर्सनली भी आई डोंट बिलीव इन पॉइंटिंग इन अदर्स के क्या करना है. तो हमारा कंट्री कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है. तो ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली बहुत कम मौका मिलता है अभी भी. तो देखें ना 73% तो मेल ही हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है जी वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं. तो ख़वातीन इस मामले में अभी भी बेचारी थोड़ी ना पीछे ही हैं, पीछे ही चल रही हैं. खैर, रियाज भट्टी हैं हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम शाहदरा, थैंक यू सो वेरी मच जी शो में आने के लिए. मलिक रजा हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम जी. खुर्शीद शहजाद हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. मज़र अली मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मज़र तुम कैसे हो? ठीक हो. लिसनिंग फ्रॉम होम टाउन खानेवाल, फरहान कह रहे हैं वेलकम टू द शो. यू आर ऑल्सो वेलकम मैम. आपने वो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं सुनी जिसमें 4471 के मैसेजेस शो में शामिल करने से रोका गया है? नहीं, वो गवर्नमेंट की नहीं थी, वो पर्सनल थी. ठीक है. खुर्शीद शहजाद थैंक यू सो वेरी मच बीइंग इन शो. मैम एक नादर नाम का लड़का भी तो होता था शो में, नज़र नहीं आ रहा. मैं भी परेशान हो रही हूँ कि ये चक्कर क्या है. नादर तुम उस लिस्ट में शामिल मत हो जो कि रेगुलर लिस्टर है, गायब हो रहे हैं. जब वो आए तो मैं उनको बहुत फेंटी लगाऊँ, तो तुम इस लिस्ट में मत जाओ. ठीक है, बचो. अच्छा जी, सब लिस्टनर्स एक दूसरे को ढूंढने गए हैं, शायद इधर कोई नहीं है. मैं भी यही सोच रही हूँ. ताशा कह रही है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ताशा आप बताइए आप कैसी हैं? ऑल ओके एंड फर्स्ट टाइम आई एम, और नाम भी बड़ा मज़े का है. सो वेलकम इन माय शो. जब मूड होता है तब आप इंग्लिश ट्रैक पर भी शायरी शुरू कर देती हैं. वो कॉम्बिनेशन था, हमने कॉम्बिनेशन बनाया था पोइट्री का और उसका. ठीक है, मूड मेरा नहीं था, वो मैंने कॉम्बिनेशन बना दी थी. इंग्लिश गाना चला था तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऊपर से जरियोन की फरमाइशें आ रही थी कि जी पोइट्री पोइट्री, मैंने कहा लो. तुमने बड़ा जेलस फील किया. मज़र कह रहा है कि मैम मेरा मैसेज ब्रेक में पढ़ के आंसर कर दें. मेरी लाइफ में मेरा एक खास के नाम नहीं ले सकता, उसका उसके ही कुछ रिश्तेदारों ने उस पर कुछ बातें की हैं जिसका असर वो अपने दिमाग में ले गया और ख़ुद को तरह तरह के नुकसान पहुंचा रही है. गोलियां खा लेना, नब्ज़ काटने की कोशिश की है. तो आपसे गुजारिश है कि कुछ अल्फाज जो उसकी लाइफ में कुछ बेहतरी ला सकते हैं बताऊं. आपको पूछने भी जाते हैं जिन बातों से आप पूछने भी जाते हैं. सो इन शॉर्ट तुम्हारे मैसेज का ये है कि जिसको भी ये हो रहा है कि वो अल्लाह की इस नेमत को जो ज़िंदगी मिली है अपनी जो है ना वो लाइफ को ख़त्म करने के लिए, सिर्फ इसलिए. ऑब्वियसली प्यार एक ऐसी चीज़ है, किसी को हासिल करने की एक चाह जो है वो इंसान को जब वो नहीं ना पूरी होती तो सबसे ज़्यादा इंसान को ये चीज़ ना बर्बाद कर देती है. उसको लगता है कि अब जो है मेरी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में किसी की. जिनको हम चाहते हैं या जिनकी चाहत हम रखते हैं, जब ये पता चलता है ना वही हमें नहीं चाहते हैं या वो उनकी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं है,
तो वो एहसास जो होता है इंसान को इतना वनरेबल फील करा रहा होता है, मिजरेबल फील करा रहा होता है, लग रहा होता है बस यार खत्म. मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप बहन भाइयों के अलावा जो हैं ये सबसे करीबी रिश्ते हैं. आप ज़िंदगी में कुछ भी करें हमेशा वो आपके साथ ही खड़े रहते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपको प्यार करते हैं. इस दुनिया में गिने चुने ऐसे रिश्ते होंगे जिनको आपसे कोई मुफाद नहीं है और वो आपके साथ खड़े हों. फिंगर टिप पे भी मैं गिनने में आऊँ तो लगता है कि नहीं, 100 में से शायद 0.0% ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी ज़िंदगी से आपसे कोई मुफाद नहीं है और वो आपके साथ खड़े हैं. तो जिस भी चक्कर में आप ये करने की कोशिश कर रही हैं, इफ़ यू आर लिसनिंग, जिस भी चक्कर में आप ये करने की कोशिश कर रही हैं ना, लानत डालो, मट्टी डालो उस बंदे पे जिसको इस चीज़ की कदर नहीं हुई तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे जज्बात की. तुम्हारा कोई भी रिश्ता उसके साथ रहा हो, अगर उसको ये कदर नहीं है, पता नहीं तुम्हारा उसके साथ कैसा रिश्ता है, कैसा नहीं था रिश्ता. ट्राई टू इमेजिन कि अगर ज़िंदगी के कुछ और साल उसके साथ गुजारती तो अभी तो सिर्फ कोशिश कर रही हो, क्या पता वही अपने हाथों से तुम्हें मार देता तो क्या करती. इतनी बेकदरी मत करो, ठीक है? अल्लाह बार बार मौके देता है खुद को संभालने के, समझने के, तो इतनी बेकदरी ना करो इस ज़िंदगी की. समहाउ समवेयर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, सब लोग छोड़ जाएंगे, एक तुम्हारी अपनी ज़ात, रब की ज़ात जो है ना वो तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा. और जब रब की ज़ात साथ रहती है, उसका करम रहता है ना, तो फिर इंसान टूटता नहीं है, फिर इंसान नए सिरे से बनता है. टूट टूट के जो सारे अपने जो किर्चियाँ होती हैं उनको समेटते हैं, हम अपने आप को जोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. सो जो भी हो, मज़े नाम बताना, डिटेल बताना, ठीक है? और उसको कहना कि डायरेक्ट मुझसे बात करें तो समझा लेते हैं. ऐसी कोई बात यहाँ पे है नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल नहीं है, और ऐसी कोई आजमाइश नहीं है जिससे अल्लाह हमें निकालता नहीं है. सो ये तो बहुत छोटी सी बात है. मैं सिर्फ इतना कहूँगी, खुद से प्यार करना. तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो कि किसी और के लिए जान देने की कोशिश कर रही हो. प्यार तो वो है, साथ तो वो है, कोई तुम्हारे लिए जान देने की कोशिश करता तुम्हारे प्यार में. सो प्लीज़ मट्टी डालो यार. शीबा सॉन्ग प्ले कर देना मेहरबान. कल्लात बस चल रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हो. अच्छा मेहरबान, किसी मेहरबान है मेरी ज़िंदगी आगे सजा दी. तारे कौन सा गाना कह रहे हो ज़रा क्लियरली बताना. मुबशर तुम्हारा गाना प्ले हो गया, हाउ वाज दैट? मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये गाना बाय द वे. ताशा खैरी शाम बखैर वल जी आपको भी. अच्छा जी शफकत अली हैं हमारे साथ, मैं हूँ शफकत. ओके जी, प्रोग्राम FM 101 की प्यारी टीम को सलाम, आपको भी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए. इजाज़ हैं, सलाम अलैकुम शिबा जी, कैसे हैं आप सब दोस्त, कैसे हैं? और सॉरी शिबा लेट आने के लिए, फ़ोन ही ऑफ था लाइट की वजह से. सेम सेम मौला ही. ओके फरहान कहाँ है, तारिक कैसे हैं, खावर किधर है, नादर किधर है, इजाज़ इन सबको मैं भी ढूंढ रही हूँ, ठीक है? बस इनके आने पे याद करवा देना मुझे कि इनका हमने बड़ा बुरा हाल करना है, ठीक है? बस ये याद करा देना. ताशा कह रही है आपने मुझे खुशामदीद कहना है या मुझ पर ये जिम्मेदारी आयत होती है. मैंने कह दिया है खुशामदीद, अब बाकी अपने हिस्से का तुम भी कर लो. मेरे हिस्से का हो गया है, बाकी अपने हिस्से का करो प्लीज़ ताशा, प्लीज़ जल्दी करो. मोहसिन रजा है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो वेरी मच जी, ऑल द वे फ्रॉम दुबई हमारे साथ होने के लिए. दुबई के हालात कैसे हैं ये भी ज़रा अपडेट कर देना. राना मुबशर हमेशा की तरह सुपर शो, नंबर 1 RJ, नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 101, थैंक यू सो वेरी मच.

की चाय भी आ गई है, गाने की ब्रेक भी है, सो आई वांट टू प्ले दैट सॉन्ग. अच्छा जी, मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ है. प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है. आपको भी खुश आमदीद, ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो वेरी मच गाइज जो शो में शामिल हैं अब तक. ओके, नाउ हियर वी गो विद दिस सॉन्ग. हियर वी गो. ओके, ये मेरा फेवरेट है.

मिसेस, वेलकम बैक. सो आई वाज जस्ट, मैं चाय जो है वो पी रही थी. मैं नोट कर रही हूँ कि आजकल मैं मीठी चाय पीना शुरू हो गई हूँ. आई मीन दिन में अगर दो चाय तो एक तो मीठी हो जाती है, और चीनी छोड़े हुए तो आप लोगों को पता है लॉन्ग टाइम. तो जिस दिन मैं चाय पी लेती हूँ ना मीठी दो दफ़ा, सो आई फील इट कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है. मुझे ये नहीं करना था. तो मुझे समझ नहीं आती कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ वियर्ड चीज़ होती है, कुछ अजीब सी चीज़ होती है, तो हमें रियलाइज़ कैसे नहीं होता है, कैसे हमें नहीं पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ वियर्ड हो रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है. उन सारे लोगों के ऊपर मुझे इतनी तप चढ़ती है जब बड़ी मासूमियत से लोग कह देते हैं यार ये हुआ है, मुझे पता नहीं चला. आई मीन क्या मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं चला? अगर आप रोज़ पानी पी रहे हैं तो पानी की बजाय लस्सी पीना शुरू कर देंगे ना जिस दिन, तो आप कहेंगे ओहो ये तो मैं पानी नहीं लस्सी पी रहा हूँ. तो आप जब आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आता है, आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में चेंज आता है, फिर आपके पुअर बिहेवियर की वजह से किसी दूसरे बंदे की लाइफ मिजरेबल होना शुरू हो जाती है, तो आपको ये चेंज कैसे नज़र नहीं आता? ऐसे दिल करता है बंदा ऐसे लोगों को चपेड़े कराए गुस्से में. मतलब हाउ यू आर जस्ट सेइंग इट. ये ऐसे लोगों की ना ये जो छोटी उंगली है ना दरवाजे में बंदा सही तरह दबाए अच्छी तरह, पाँव की भी और हाथ की भी, तो बंदा भज जाए उतो. अच्छा जी, मेहरी ने मैसेज किया है कि मैं भी सुन रही हूँ और मैं आपसे अनकंडीशनल लव करती हूँ. आई नो मेहरी, ये तो मुझे पता है. गिने चुने कुछ लोग हैं जो मुझे पता है कि मैं उनकी दुआओं में हूँ और उनका प्यार मेरे लिए कितना जेन्युइन है. आई नो दैट, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है. बतूल ने मैसेज किया है कि फरहान ये जो तुम आजकल बड़े ऊटपटांग मशवरे दे रहे हो ये किसकी संगत में हो? माई गॉड, इतनी सकील उर्दू, या अल्लाह. मुझे ही कुछ ना हो जाए इतनी सकील उर्दू के साथ. अच्छा जी, ये कौन है? मैं कॉल नहीं लूँगी 6:30 पे जो है वो मैंने कॉल्स लेनी है. सो ट्राई नॉट टू कॉलिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग. कोशिश किया करें कि तब ना ही कॉल किया करें. फिर आप लोग कहते हैं हम इतनी कॉल्स करते हैं वहाँ पे कॉल ही नहीं ली जाती, तो ये मत किया करें, ठीक है? इसका पिया घर आया, किसका पिया घर आया है? उधर इतने टेंशनें पड़ी हुई हैं और तारिक तुम देख लो तुम क्या बातें कर रहे हैं. आ जाएं गोलगप्पे खा लीजिए मेरे साथ ताशा. हाय लड़की, बहुत उमदा प्रोग्राम है. थैंक यू सो वेरी मच. वसीम बोल रहा है, थैंक यू. मौसम रजा हो गया था. ताशा, अगर तो तुम पहली दफ़ा ये शो सुन रही हो ना, तो फिर तुमने बात ऐसी की है जो रेगुलर लिसनर करते हैं. सो कौन हो तुम? चाय आ गई, अब दो तीन चार गाने बैक टू बैक चलेंगे. अच्छा, पहले ऐसे कब हुआ है कि चाय के साथ गाने जो है ना वो चलते हैं? फरहान, तुम ऊटपटांग बातें करना शुरू हो गए हो, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, तो तुमने मुझे लगता है कि मार खानी है और या फिर मार ही खानी है. ऑप्शन बस यही है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. अच्छा जी, हैव यू गो विथ. अच्छा जी, जरियोन कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल, आप मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दें. प्रोग्राम में कुछ भी होगा, शायरी की जब भी बात होगी, जरियोन ही बदनाम होगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं है. क्या पता आज मेरा अपना ही मूड हो जाए, मैं ही शायरी करती हूँ तो फिर क्या होगा? फिर जरे उन कहेगा हाँ जब हम तरले करते हैं तब पोइट्री होती नहीं, तो बात वही है ना, जब हमारा दिल करेगा तो हम करेंगे.

वेलकम बैक। ओके जी, सो जिन लोगों को ये लग रहा था फरहान जैसे कि मुझे मशवरा दे रहा था, कह रहा था कि हाँ जी बैक टू बैक गाने लगाएंगे एंड ऑल दैट, सी मैं इस तरह के मशवरे नहीं सुनती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये तो बड़ी अजीब सी बात है बतूल, जब मैंने शुगर छोड़ी थी ये तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हाँ जी ये मैंने छोड़ दिया है, तो तुम्हें पता ही है और भी बहुत सारे लोगों को पता है कि इस वजह से जो है वेट लूज़ हो जाता है। कॉफ़ी पिएं और अच्छी खासी कॉफ़ी पिएं। जुरियन कह रहा है कि ये जो आप बार बार कहती हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से आपने शो छोड़ दिया है, ये सिर्फ बहाने हैं। अच्छा चलो ठीक है, बहाने हैं तो फिर अब क्या क्या ही होगा, क्या ही करोगे तुम। रानिया ने मैसेज किया है कि शिबा आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है, दुश्मनों की नजर लग गई है, अपना सदका उतारो। आई वाह, ये हुई ना बात। देखा जरियन, तुम्हारे अंदर साड़ा बोल रहा है, देखा रानिया का कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न बोल रहा है। ओके बतूल कह रही है वैसे हुआ क्या था, आजकल सच में तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आई एम वरीड। बीपी मेरा हाई इतना ज्यादा हो गया कि मेरी आंखें भी स्वेल थी और मेरा दिमाग तो पता नहीं क्या था, मतलब आई वॉज, दो दिन तो मुझे लगा कि वो दो दिन कैलेंडर में है नहीं है, इस तरह की तबीयत ख़राब हुई थी, बीपी इतना हाई हो गया था। तो हाँ ये बात है कि डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले, कुछ अरसा पहले मुझे बोला कि आप ना बीपी की दवाई खाना शुरू कर दें, मैंने कहा मैंने तो अभी नहीं खानी है, फिर किसी समझदार डॉक्टर ने मुझे कहा कभी भी दवाई नहीं खानी, कोशिश करें कंट्रोल करें बर्दाश्त करें, क्योंकि ये लग गई तो लग गई। एंड यू ऑल नो कि फिर मेरी मदर के साथ भी ये इशू था कि बीपी का एंड डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, तो मुझे वैसे ही डर लगता है कि ये मेडिसिन अगर रेगुलर लग जाती हैं तो फिर अल्लाह रहम करे, अल्लाह किसी के साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसी को रेगुलर कोई मेडिसिन लगे, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या कोई भी और रेगुलर मेडिसिन लग जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो, अल्लाह दुश्मनों को भी बचा के रखे ऐसी तमाम तरह की प्रॉब्लम से, मर्ज़ों से जो कि जानलेवा होती हैं। न्यूज़ ब्रेक के लिए हम लोगों ने जाना है, उससे पहले टॉपिक जो है वो आपको बता दें, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी चेंज आता है, कोई भी रद्दोबदल होता है, कुछ भी करते हैं, जैसे लस्सी की जगह पानी पीना शुरू करते हैं और पानी की जगह लस्सी, तो पता चल जाता है बड़ा विजिबल चेंज है। हमारे मोबाइल का जो है वो वॉलपेपर और वो सारी चीज़ें चेंज हो, पता चल जाता है, किसी दूसरे ने हमारे मोबाइल के साथ छेड़खानी की है, गलत पासवर्ड लगाया, वो भी पता चल जाता है। जब कोई बंदा हमारी ज़िंदगी में होता है और हम उसकी ज़िंदगी के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं कि अगले को रोल के रख देते हैं, तो क्या हमें पता चलता है या नहीं पता चलता, ये कौन सी अनकॉन्शियस है जो हम कह देते हैं कि नहीं जी मुझे तो पता नहीं चला यार, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मज़र जो भी है उनको बोलो शो ज़रूर सुने, ठीक है। आज का शो नेक्स्ट आर जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वो जो भी बंदी है ना लाइनअप करो और उसको बोलो शो सुने, और फिर उसको हम यही कहेंगे चीती दिस इज़ लाइफ।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें
1: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आरजे शिवा मलिक आपके साथ. ओके ऑलराइट. अच्छा जी, तो जिन लोगों को ये लग रहा था ना कि आज का शो जो है ऐसा तो वैसा एंड ऑल दैट, क्योंकि इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आज, तो हमारा तो ये रेट है 63%. प्लीज़ अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कराएं कि हम लोग जो हैं अपनी बेटियों का फ्यूचर जो है, जो उनको देते हैं ना, वो तालीम की सूरत में देते हैं. बस तो जो आप कर सकते हैं मैक्सिमम प्लीज़ वो तो ज़रूर कीजिए. जो नहीं हो रहा फिर उसमें अल्लाह की रज़ा ही है. इजाज़, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द इमोजीज. ओके, मज़र कह रहा है कि कायनात नाम है और उसके रिश्तेदारों की वजह से वो परेशान हो रही. कायनात, ये जो तुम रिश्तेदारों की वजह से परेशान हो रही हो ना, इस बात के ऊपर तो मैं तुम्हें खुद, मज़र इसको प्लीज़ रेडियो ले, मैं खुद इसको यहाँ पे इसकी पिटाई करूँगी, इसको फेंटी लगाऊंगी और फिर उसके बाद साथ बैठ के चाय पियाएंगे और इसको अच्छा से समझाऊंगी रिश्तेदारों की वजह से. मैं एक बार फिर बोलूँगी, रिश्तेदारों की वजह से कायनात तुम अपना ये हाल करने की कोशिश कर रही हो. यार फिटे मुँह करो उनका. और रिश्तेदारों के बीच में से रिश्ते बिल्कुल निकाल ही दो, ठीक है? अगर वो रिश्तेदार होते ना तो वो कभी भी तुम्हारे बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते. जो तुम्हारी ज़हनी अज़ियत तुम्हें देता ना, वो चाहे तुम्हारा सगा भी क्यों नहीं है ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता. क्योंकि पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अल्लाह ने हम सबको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने हम सबको हक दिया है कि हम खुश रहें. और अगर वो खुशी जो जिसका इख्तियार हमें अल्लाह ने दिया है, वो कोई दूसरा बंदा छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? किसी इंसान के बस में हो ना, तो बस हम एक दूसरे को रुलाते ही रहें. ये तो अल्लाह ने हमें खुश रखा हुआ है, ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग खुश रहते हैं. तो अगर ये चीज़ उसने ना हमें दी हो, तो किसी इंसान की क्या औकात है. हुमा शेख कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. हुमा, आप कैसी हो? ठीक हो. कह रही है, सैल्यूट टू ऑल लिसनर्स एंड नाइस शो, थैंक्स अ लॉट डियर. और तेरी खैर आना मुबशर जलेबियाँ. अब मैंने चाय पी ली, जलेबी थोड़ी सी लेट हो गई है, ये तो बात नहीं है, ऐसे नहीं होता. अच्छा जी, महरीन कह रही है कि मैंने भी वेट लूज करना है, प्लीज एडवाइस कीजिए. यार मैं यहाँ पे चीख चीख के मर गई पिछले 2-3 सालों से कि मैंने चीनी छोड़ दी, ठीक है. फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैं बिल्कुल ही नहीं पीती थी, तो वो भी कहीं साल में कभी कोई 1-2 बार पी ली तो पी ली. मैं बड़ी स्ट्रिक्टली, अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ सब चीज़ें. चीनी छोड़ दी, ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी. ऑलमोस्ट चावल भी छोड़ दिए, हालांकि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है. पराठे भी छोड़ दिए मैंने, सूखी रोटी भी आ गई थी, सैलड एंड ढेर सारा स्ट्रेस. Ha ha ha!

आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है तो एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो मुझे तो साथ साथ स्ट्रेस मिल रहा था, तो इस वजह से मुझे ज्यादा जल्दी मेरा वेट लॉस हो गया। लेकिन अगर आप खुश हैं तो चीनी छोड़ दें, सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दें, समोसे पकौड़े जलेबियाँ पराठे हर तरह की चीज़ छोड़ दें, प्रोटीन वाली डाइट लें, अंडे खाएं, दूध पिएं, सब कुछ ऐसा ही लें, और फिर उसके बाद ऐसी नौबत ना आ जाए कि मल्टीविटामिन्स लेने पड़ जाए। और अगर कोई स्ट्रेस नहीं है ना जिंदगी में तो उसको स्किप किया जा सकता है, परेशान नहीं होना आपने।

तारे क्या तुम वो गाना कह रहे हो किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी, तुम उस गाने की तो जिक्र नहीं कर रहे हो। अच्छा ताशा कह रही है कि आपका नाम भी मुनफरिद है, थैंक यू सो वेरी मच ताशा, बट योर नेम इज़ वेरी गुड। अच्छा जी ओके, कंप्यूटर इतना ढीठ हुआ हुआ है ना, मतलब कभी कभी तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है ना कि बस दिल करता है चुक के मारो। अच्छा जी उमा कह रही है मेरे हस्बैंड आपको सुन रहे हैं और मैं उनसे नाराज हूँ, कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे और उनके लिए प्ले कर दें। वाह तुम्हारे हस्बैंड जो हैं वो सुन रहे हैं, तुम नाराज हो, तो गाना तो उनको डेडिकेट करना चाहिए। कम ऑन जाओ यार, कुड़ियां भी कसमें। आपके टॉपिक पे ये कहूँगी कि सब खेल वो खुद ही खेलते हैं, सब कुछ पता होने के बावजूद खुद गलत होते हैं और सामने वाले को गलत कहते हैं। एग्जैक्टली, जो बंदा गलत होता है ना वो रज के अगले बंदे को ऐसा फील करा रहा होता है कि यार गलती सारी तेरी है, कि अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ शायद मेरी हो। वही ना वो क्या कहते हैं हमारे, आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, बट कहते ने थाने भी ऐसे गल तो मशहूर ने कि उत्थे जिहड़ा बंदा जिन्हें नहीं भी कुछ किया वो भी कहना मैं ही सारा कुछ किया, उत्थे हाथी भी जाके कहना मैं चूहा।

सो कायनात माय डियर, आई होप कि तुम्हें मेरी बात बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर नहीं समझ आई होगी ना तो मज़र सच्ची मुझे नेक्स्ट वीकेंड ट्यूसडे ना इसको लेके आना, ठीक है? फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी और ये मैं प्यार से बोल रही हूँ. आई होप दैट यू गोना अंडरस्टैंड दैट कायनात. सो जो लोग किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं, किसी का सुकून बर्बाद कर रहे होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनकी ज़हनी अज़ियत का सबब बन रहे होते हैं, किसी के दिल टूटने का सबब बन रहे होते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बन रहे होते हैं, और एंड पे वो कह देते हैं यार मैनू नहीं पता, पता नहीं की हो रहा है, क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ऐसे होता है? लाइव कॉल लेंगे हम 6:30 पे, कमर्शियल है 5:25 पे, उसके बाद हम लोगों ने लाइव कॉल्स लेनी है. सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. आरजे शिवा मलिक आपके साथ. और ये वाला गाना, अच्छा चलो ठीक है, ये वाला गाना प्ले कर देते हैं. हुमा ये गाना चले आपके लिए प्ले कर देते हैं, ठीक है? ये लाइन है, लाइन अप हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चले ये आपको डेडिकेट कर देते हैं, मेरी भी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी, ठीक है?

0: So I'm going to line up a commercial. अच्छा जी, so we're gonna see that कि fact check क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है हमारी surrounding में और top trending पे क्या चीजें चल रही हैं. Is there anything special that I want to talk about? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं. Lifestyle में क्या है, मौसम बदल रहा है, so सारे लोगों को ये पता है कि मौसम change हो रहा है. पल में तोला पल में माशा वाला सीन हुआ हुआ है, so please अपनी सेहत का ख्याल रखिए. हनी हनी, ओके जी, स्किन केयर है रूटीन. ऑब्वियसली स्किन तो बहुत ही डल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो स्किन केयर रूटीन जो है वो आपकी चेंज हो जाती है. सो व्हाट एल्स अबाउट टुडे, साइंस कुछ कह रही है, एनीथिंग साइंस इज सेइंग. व्हाट्सएप का एआई एजेंट चैट ने शेयर करने से मुतालिक फीचर पर काम जारी है. ओके, व्हाट्सएप के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है. इन्ना जा व्हाट्सएप पे कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं उसमें, ना वल्ला हराम. यानी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, रियली आई एम नॉट. अच्छा जी, ये कमर्शियल है, फिर उसके बाद हम पी ले करेंगे. कमर्शियल है फिर उसके बाद लाइव कॉल स्टार्ट करेंगे. हैव यू गॉट टू गो विद दिस.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने

हाय जी, सो हैवी गोना गो। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम किसी के ज़हनी अज़ियत का सबब बन रहे हैं, लाइक मैं ही किसी की ज़हनी अज़ियत का सबब बन रही हूँ, और अगला बंदा जो है वो उसकी उसको जो है वो बस सच में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी मुस्कुराहट, उसका खाना पीना, चैन सुकून सब बर्बाद कर दिया मैंने, और मैं एंड पे कह दूँ कि हाँ जी मुझे तो पता ही नहीं यार, वो जो हो रहा है उसके साथ खुद ही हो रहा है। सो आपको लगता है कि जस्टिफाइंग है, आपको लगता है कि सच में मुझे नहीं पता, मेरी कॉन्शियंस को ये बात पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लाइव कॉल्स लेंगे 04221100101 इज अ नंबर। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग, किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर दी कि संवार दी, आई डोंट नो। साथ साथ गाना है और साथ साथ कॉल्स लेंगे हम, बिकॉज टाइम थोड़ा कम हो जाता है। यू आर वेलकम। हाँ, जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि जैसे ही मैंने ना कॉल अनाउंस करती हूँ और फिर उसके बाद साथ ही ना ओके हियर वी गो। एग्जैक्टली ताशा, आप समझ आई है? ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा कि कोई इतने अरसे बाद शकील उर्दू वाला आया शो में।

0: किसी मेहरबानी आगे मेरी जिंदगी बना दी, बिगाड़ दी, संवार दी, व्हाटएवर, लेट्स सी कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: वापदा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मीर से मोहम्मद हनीफ शाह
0: जी। क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आप सुनाया। आज हमसे ट्रांसमिशन क्यों छीन ली?
0: क्यों नहीं अच्छी चल रही है? सही नहीं चल रही, क्या हो गया?
1: 12 बजे के बाद, 12 से 1 तक तो बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद सिर्फ शोर आ रही है लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
0: तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पहले बताना चाहिए था ना, जब शो में मैसेज करते।
1: शो के बगैर आप लोग कॉल ही नहीं उठाते, क्या करें, हमें शो में तो मौका मिलता है।
0: हाँ, लेकिन आपके पास फेसबुक की सहूलत मौजूद नहीं है, आप उधर मैसेज कर देंगे ट्रांसमिशन नहीं आ रही है तो किसी न किसी को पता चल जाएगा।
1: नेट से

0: दूर है ना।
1: बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि आप नेट से भी दूर है।
0: ये खुशी की बात है, अफसोस की बात तो नहीं है।
1: अफसोस की बात।
0: इस दौर में भी हम इंटरनेट से दूर है तो ये खुशी की बात है ना।
1: बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने आपको इस अजाब से बचाया हो।
0: इस अजाब से बचाया तो इंसान को खाना खाने के लिए भी मैसेज करना पड़ता फिर।
1: अल्लाह वल्लाह सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ। हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन का क्या किया जा सकता है, और अगर खराब है तो अभी उनको बोलते हैं कि जी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है और आपको जो है
0: बिल्कुल खराब है। पहले तो सही थी लेकिन अभी 1 बजे के बाद ट्रांसमिशन बिल्कुल हमसे छीनी गई है। ये
1: ओह माय गॉड, बहुत अफसोस हुआ है कि ट्रांसमिशन आपसे छीन गई है।
0: किसी ने किसी से मैंने पूछा तो आपका शो मुझे उसने मैसेज किया कि भाई शो चल रहा है।
1: अच्छा ओके।
0: फिर मैंने नंबर ट्राई किया, नंबर बिजी था, मैंने कहा पक्की बात है शो तो चल रहा है, यहाँ अभी मौका है।
1: बहुत अच्छा किया आपने कि आपने कॉल कर लिया। तो हम लोग इंजीनियर्स को बोलते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: टॉपिक है या

0: Alrighty, so गाना अच्छा है, मज़े का है. You gonna go, you gonna walk. चलेगा ये गाना, मज़े का लग रहा है. ठीक है, अच्छा जी. सो इसके बाद प्ले करूँगी मैं ये वाला गाना जो अभी रिक्वेस्ट की थी. Here we go with the caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन?
1: अदरीस अहमद बात कर रहा हूँ.
0: कौन?
1: अदरीस अहमद
0: जी. जी क्या हाल चाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका.
0: बहुत शुक्रिया.
1: अच्छा
0: जी
1: लगता है.
0: थैंक यू.
1: बहुत शुक्रिया करती हैं आप.
0: थैंक यू जी. टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे?
1: ये कहूँ टॉपिक में ये कहूँगा कि हम जब किसी के साथ ऐसा करते हैं ना तो अपना असल रूप उसको दिखा रहे थे कि हमारी ये असलियत है, ये औकात है,
0: ये औकात है,
1: ये कर सकते हैं. तो सब सुनने वालों को मेरा सलाम.
0: थैंक यू जी.
1: और बहुत सबके लिए बहुत सारी दुआएं.
0: थैंक यू. आमीन सुमा आमीन. देखा, ऐसे कॉलर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जो जो आके टू द पॉइंट बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं. ऐसे कॉलर मुझे बड़े पसंद हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन और कहां से?
2: माय नेम इज फराज.
0: जी फराज, क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र.
0: जी क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
2: Missing your show after 10 months.
0: After 10 months, okay.
2: It's been a long time.
0: Okay, great, very good.
2: I think, मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए जो समझते हैं कि हम ठीक हैं और दूसरा गलत है.
0: या दूसरा बिल्कुल सही कहा आपने.
2: वो लोग जब खुद बाइस बने हो किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, मुझे लगता है उन लोगों को कुछ ज्यादा ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए.
0: सही.
2: तो जब इंसान ये समझ लेना कि मैं ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, तो समझ आ जाना चाहिए दूसरे को कि वो शख्स अब बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा है.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा आपने.
2: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू.

0: ओके जी, सो डेफिनेटली जब हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें डेफिनेटली पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता तो मैं ऐसे मौके पे आपको पता है एक ही बात कहती हूँ कि हम जो हैं फिर चलती फिरती लाशें कोई अच्छा सा दिन दे के ना, जिनके ज़मीर मर गए हैं फिर वो कोई अच्छा सा दिन दे के अपने आप को दफना लिया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का। आप बताइए कौन और कहाँ से?
1: जी मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ
0: जी। क्या हाल चाल है आपके?
1: हाँ ठीक ठाक, आप ठीक ठाक है जी?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ करम अल्लाह का।
1: अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रोग्राम,
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: आप क्या आप छुट्टियाँ बहुत कर रही है ना?
0: कोई नहीं छुट्टी की, पिछले हफ्ते छुट्टी की, तबीयत खराब हो गई, उन्होंने सारा पाकिस्तान मेरी छुट्टी नोट करने लग गया।
1: चलो कोई बात नहीं, हो जाता भाई। चलो अल्लाह ताला ख्याल करे जी। चाबक के बारे में बात करे ना, आप जो भी इंसान है वो कहता है मैं ठीक हूँ,
0: हाँ,
1: अगला गलत है।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ अपना आप सोच ले तो वो उसको समझ लगेगी कि कुछ मैं भी गलत हूँ। वो कहते जी हमें वो छोड़ गए, वो कर गए, तो क्यों छोड़ गए? को आप में भी गलती होगी ना छोड़ गए।
0: हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: हाँ जी, तो जी देखना अपना आप भी देखना पड़ता है जी, जो किसी पे इल्जाम लगाए या किसी को बात करे तो ये खुद सोचे मैं क्या हूँ।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और माशाल्लाह बहुत बहुत आपको दुआएं और सलाम, बहुत अच्छा प्रोग्राम,
0: बहुत बहुत
1: अल्लाह ताला की ख्याल रखे।
0: आमीन।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।

साइम कह रहे हैं सलाम अलैकुम आपी सलाम टू ऑल लिसनर्स व्हाट सिस्टर रिश्तेदार इज आल्सो मिसिंग नादरा सिस्टर इज मिसिंग कम ऑन शीबा जी सबको छोड़ देना चाहिए जो आपकी खुशी को बर्बाद करने का सबब बने बेस्ट शो थैंक यू सो वेरी मच क्या शो आजकल पेट्रोल के हिसाब से चल रहा है कोई पता भी नहीं चलता टाइमिंग का जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये ट्यूसडे वाले दिन चलता था कुट पहनी बहुत आपको उर्दू जुबान की काविश अच्छी लगी इसके लिए मैं मशकूर हूँ माय गॉड मैं कैसे आज क्या करूँ मैं ताशा मतलब यू आर टेकिंग मी अवे समवेयर

0: अच्छा बिनिश तो बड़ा प्यार करती थी आपसे, हैं ये बात सबको पता है कि बिनिश बहुत प्यार करती थी और इस वजह से वो गायब है। आप आने तो दें बिनिश को, पता नहीं मैं उसका कैसे कैसे इस्तकबाल करूंगी। साइम कह रहे हैं मुझे भी रिश्तेदारों की तारीफ करना थी, टाइम ही मुक गया है, उनकी करिए। और अगर तुमने रिश्तेदारों की तारीफ करनी थी तो इस बात पे तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत सारी मार पड़ने वाली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से?
1: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, लाहौर से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक
0: जी। हेलो जी जी, शो सुन रहे हैं आप?
1: हाँ जी सुन रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे लोग जो होते हैं वो मकार होते हैं, मकार और जालिम होते हैं जो दूसरों पे जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या काबू आ जाए तो इन्हें कान पकड़ा देने चाहिए।
0: कान पकड़वाने के दौर तो गए अब।
1: और जब वो कान छोड़े फिर पकड़ा दें।
0: पर कान पकड़वाना एक बहुत बड़ा मसला भी है ना।
1: नहीं नहीं, या फिर इनसे तल्लक खत्म कर,
0: ताल्लुक खत्म कर लें। चले जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास कम है।
1: हेलो
0: फेस, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ताशा कह रही है कि आपका अंदाज़ बयां दिल को लुभाने वाला है, जुग जुग जिए। जी आप भी सलामत रहें, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। ताशा इट्स ग्रेट टू हैव यू इन माय शो। कोई क्या भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो अपनी ज़िंदगी में, जिया करो, बस किसी दूसरे को देखो। सदा सलामत रहें आप भी।

0: सुनने में पवाड़े एंड ऑल दैट थिंग्स, और ये सब कुछ था, मजे का था, अच्छा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल चाल है?
1: जी अल्लाह का करम, दुआएं। सईराम बात कर रही हूँ।
0: जी लास्ट है, तुमने देर नहीं कर दी आने में।
1: बस आप भी कॉल लगा रहे, लगी नहीं कॉल।
0: बस कॉल भी बड़ी खराब हो गई, लग ही नहीं रही।
1: जी कॉल जब लगती थी तब आप उठाते नहीं हो, जब
0: तुम्हारी तस्वीर आ रही होती है इसलिए नहीं मैं उठाती, पता भी नहीं चलता कॉल किसकी आ रही है, अल्लाह की बंदी।
1: अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे।
0: थैंक यू।
1: और आप भी आप प्लीज वो जो गाना है ना वो प्लीज शुरू में लगा दिया करो या फिर एंड पे लगा।
0: कौन सा? कौन सा?
1: वो भी जो आपको पसंद है।
0: कौन सा? मुझे तो 2, 3, 4, 5 पसंद है ना, कौन सा वाला लगाऊं?
1: बस वो इस रैकी वाला, रख फुलाते पैर। आज भी मैंने बहुत इंतजार किया, शुरू से मैंने प्रोग्राम सुनना शुरू किया, स्टार्ट किया तो कोई
0: तुमने
1: गाना
0: एक मैसेज कर देना था ना, मैसेज कर देती कि आप ये वाला गाना लगा दो, लगा दे तो पता है शो कितनी स्पीड से खत्म हो रहा होता है, यू नो दैट राइट? तो फिर नहीं कुछ तो कभी कभी गाने होते, 2-4 रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है, यही बड़ी बात है।
1: आप यही तो बात है ना, यही तो मसला है ना, मैसेज नहीं कर सकते हम, ये मेरे पास दूसरा मोबाइल है।
0: ओहो, अच्छा चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी, ठीक है।
1: हाँ तो आप ऑफ ईयर कॉल भी नहीं लेते हो, मैंने ऑफ ईयर भी आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा चलो उस वक्त बात।
0: स्वीटी मैं ऑफ ईयर कॉल इसलिए नहीं लेती क्योंकि आपके मैसेजेस सबके पढ़ने होते हैं, ठीक है, गाने प्ले करने होते, इतना कुछ करने के लिए होता है ना, तो वही बात जो ऑफ ईयर करनी होती है ऑन ईयर भी वही बातें होती है, तो फिर मैं इसलिए आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने में वो टाइम लगाती हूँ, ठीक है।
1: हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप आइंदा से आप जी आप याद रखना, तो मतलब वो गाना बहुत अच्छा है,
0: ठीक है।
1: तो बाकी आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह काबिले तारीफ।
0: थैंक यू,
1: अल्लाह
0: हाफिज। Alright जी, so that's it for now, आज के लिए इतना ही, और प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक ओके ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्ले करके जाऊंगी, ठीक है। अब गाना सानू ज़्यादा ही कुछ पसंद आ गया इसलिए हम इस गाने के पीछे ही पड़ गए हैं, है ना। अच्छा जी, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो भी इंसान, जो भी चीज़, जो भी रिश्ता, जो भी ताल्लुक, सिचुएशन, एवरीथिंग आपके जहनी अजियत को तबाह बर्बाद करने का सबब बन रहे हैं, छोड़ दो उसको, वो दैट पर्सन इज़ नॉट डिज़र्विंग टू बी इन योर लाइफ, दैट थिंक इज़ नॉट डिज़र्व टू बी इन योर लाइफ, कोई चीज़ जो ऐसी आपकी ज़हनी अज़ियत का सबब बन रही है वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, वो लोग, वो रिश्ते सब निकाल दें। एक चीज़ याद रखें, अल्लाह ने आपको खुश रहने का इख्तियार दिया है, हक दिया है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो जो लोग ये करना शुरू कर रहे हैं, जब तक आप उनको उनकी गलती नहीं बताएंगे तब तक वो लोग आपको ही पॉइंट आउट करते रहेंगे, आप ही के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते रहेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ऐसे मौक़ों पर जब रिश्तेदार बातें कर रहे हो ना, तो दो कान अल्लाह ने इसलिए दिए हैं, एक से सुने दूसरे से निकाल दें। खुदा आप पर मेहरबान हो, सदा सलामत रहें। ताशा आप भी सलामत रहें एंड स्टे ब्लेस्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन माय शो अगेन बिकॉज, और शकील उर्दू के साथ ही आना, ठीक है, जब भी आना। थैंक यू शिवा जी, शो कमाल कर दिया आपने, थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, फरहान कह रहे हैं कि वंस अगेन आफ्टर नमाज, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तारिक कह रहे हैं क्या शो ख़त्म भी हो गया आज, तो आपको चाहिए जो शो आपने मिस किए हैं उन शो को भी घंटा पूरा करें, नाइस, वेरी नाइस। एनी वेज, ऑल ऑफ यू 4471 वाले, फेसबुक वाले जिन्होंने आज पहली दफ़ा शो में कॉल किया, मैसेज किया, उन सबका भी थैंक यू। शो को शानदार बनाया, 4 चांद लगाए, थैंक्स अ लॉट गाइज। अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूजडे शाम को 5 बजे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखें, अपने प्यारों को भी, चाहने वालों को भी याद रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड हार्ट्स ऑफ लव्स।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

रात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what

0: ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان، اور اس امید اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامعین، ہمارے تمام سننے والے اور نہ سننے والے بھی جہاں جہاں بھی ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ رہیں اور خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ آج کا ہمارا جو شو ہے، مہمان ہمارے میں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے معزز مہمان ہوتے ہیں اور جو سوسائٹی کے اندر اپنا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، جو پاکستان کی گروتھ میں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے، پاکستان کی ایک دنیا کے اندر خوبصورت چہرے کے طور پہ ہم اس مہمان کو لے کے آتے ہیں، اور جو اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے مختلف کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، ہی از سچ اے بیوٹیفل پرسنالٹی، سچ اے انسپریشنل پرسنالٹی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از سچ اے فرٹائل کنٹری۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ٹیلنٹ سے نوازا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اور پاکستان میں ایسا سا ٹیلنٹ ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے ٹیلنٹ کو، اور یہ ٹیلنٹ اپنا آپ دکھائے گا کہ وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ سو ہماری آج کی جو شخصیت ہیں وہ بھی، ہی از سچ اے پازیٹیو امیج آف پاکستان، ایک پاکستان کا ٹرو پازیٹیو امیج ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، کرنے جا رہے ہیں۔ سو میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے جو آج کے مہمان ہیں، ہی از اے ویری ینگ بائی پروفیشنل، ہی از اے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس مین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زبردست بات ہے کہ ہی از اے ویری ڈفرینٹ اسپورٹس مین ان اے سینس کہ ہم پوری دنیا میں اس وقت، آپ سب جانتے ہیں کہ گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ ایک ایسا ہے کہ آپ کوئی ایک یونیک جب کام کرتے ہیں، یونیک آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور ایک ایسا کام جو دنیا میں نہیں ہوا ہوتا اس کو ریکارڈ کرایا جاتا ہے، اور وہ گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں اس کو درج کرایا جاتا ہے۔ سو جناب، آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اینڈ ہی از اے ریئل ہیرو آف پاکستان، اے پازیٹیو فیس آف پاکستان۔ ڈاکٹر محمد طیب صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کیتھلنٹک ایتھلیٹ ہیں سر، ویری وارم ویلکم طیب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
1: وعلیکم السلام، الحمد للہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ ویلکم ٹو ریڈیو پاکستان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یو آر دا ٹرو فیس آف پاکستان، اور ماشاء اللہ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو، آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، ہم چونکہ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، سو آپ پاکستان کا ایک امیج۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے بتائیں طیب کہ آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سے آپ ایتھلیٹ بنے، پھر آپ اسپورٹس کے اندر آئے، اور اپنا پروفیشن بھی آئی ایم شیور وہ کر رہے ہیں، سو ہاؤ ڈو یو کنورٹ دیٹ ڈاکٹر ٹو اسپورٹس مین؟
1: بیسیکلی اسٹارٹنگ سے ہی جب میں چھوٹا تھا تو فٹنس کا مجھے کافی خیال ہوتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، تو اسٹڈیز سائڈ بائی سائڈ میں اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوتا تھا، اور پیرنٹس بھی کافی سپورٹ کرتے تھے مجھے کہ آپ کو جو ہے وتھ دا پیسٹ آف ٹائم اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے، تو آبویسلی آپ آگے جا کے اس چیز کو فیس کر سکتے ہیں۔ تو ڈائٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور میرے پیرنٹس کا اس میں کافی ایک امپورٹنٹ رول ہے، جنہوں نے اسٹارٹنگ ڈے سے ہی مجھے ایک اچھی گرومنگ کے ساتھ نالج وغیرہ مجھے گین کروانے میں میرے لیے ایک بینیفیشیل پوائنٹس مجھے دیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح لے کے جانا ہے،
0: یعنی کیری ایسے کرنا ہے۔
1: ہاں جی،
0: آپ کو اچھا مجھے بتائیں طیب، بیسیکلی آپ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ کی اسٹڈیز بڑی ٹف ہوتی ہیں، اس میں اپنے ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ دیکھنا یہ کرنا، سو آپ ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ، اپنا ٹائم کیسے مینیج کرتے تھے؟
1: سر اس میں پہلی چیز یہ کہ میں ایسے کوئی باڈی بلڈنگ وغیرہ یا پاور لفٹنگ کرتا نہیں، میں جسٹ کیلیستھینکس کی ایکٹیویٹیز کرتا ہوں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے۔
0: ٹھیک،
1: तो इसमें ज़्यादा टाइम मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती टाइम की ना।
0: अच्छा, हमें सबसे पहले देखने वालों और सुनने वालों को ये बताइए, कैलिस्थेनिक्स जो फिटनेस है ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं?
1: सर, कैलिस्थेनिक एक ऐसी मूवमेंट के नाम है जिसमें हम डिफरेंट मसल्स को सेम टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कंपाउंड मूवमेंट्स का आप इसको नेम दे सकते हैं। इसी पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में हम एक स्पेसिफिक मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, चेस्ट है, बैक है, उनका एक स्पेसिफिक डेज होता है।
0: ठीक है,
1: तो लेकिन कैलिस्थेनिक्स में ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें हम कंपाउंड मूवमेंट्स जो है वो एट अ टाइम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, टेंडन्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, लिगामेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, बॉन्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, स्पेशली अपने जॉइंट्स को।
0: ठीक है,
1: हाँ जी।
0: अच्छा, ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं
1: और ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
0: इसमें एक्सरसाइज कौन सी होती हैं, मतलब पुशअप्स होती हैं, लिफ्टिंग होती
1: है? अच्छा, इसमें ऐसा आपको कोई जिम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर में भी कर सकते हैं। बेसिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, चिन अप्स वगैरह हैं इसमें, डिप्स वगैरह हैं।
0: ठीक,
1: तो इसी में जब आप अपने मसल फाइबर को ज़्यादा मैच्योर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको मास्टर कर लेते हैं।
0: ठीक है,
1: एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर जहाँ पुशअप्स लगा सकता है 20-30, वहाँ कैलिस्थेनिक्स एथलीट जो है वो 50+ इजीली कर सकता है,
0: पुशअप्स कर सकता है,
1: इजीली कर सकता है।
0: अच्छा,
1: और यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स का वेट बहुत कम होता है।
0: अच्छा,
1: और उनके मसल बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो अल्टीमेटली उनके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है।
0: वो उनकी एक्सरसाइज इस तरह की होती है?
1: एक्सरसाइज इस तरह होती है कि सर वो ज़्यादातर फोकस अपने टेंडन्स पे कर रहे होते हैं, अपने जॉइंट्स पे कर रहे होते हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन जो बॉडी बिल्डर है या पावर लिफ्टर, जस्ट फोकस करता है मसल्स के ऊपर। हाइपरट्रॉफी हो जाए, मसल्स हो जाए, वो समझते हैं कि शायद ये फिटनेस का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं। आप वर्ल्ड में आप एथलीट्स को देख लें, क्रिस्टियानो को देख लें, रोनाल्डो जो हमारे पास बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, या अगर आप विराट कोहली को देख लें, तो 40+ के होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फिटनेस आज भी इतनी ज़्यादा क्यों है? कि वो भी तो बड़े बड़े मसल्स बना सकते हैं, लेकिन वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। लीन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स को ही वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पर।
0: अच्छा, ये जितने भी हमें सुपर फिट लोग नज़र आते हैं, जैसे आपने रोनाल्डो की एग्जांपल दी, मैसी हो गया, या डिफरेंट फुटबॉलर्स या बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, सो दे आर ऑल कैलिस्थेनिक्स जो है ना फिटनेस को वो प्रेफर करते हैं।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही।
0: एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डर एंड द कैलिस्थेनिक्स जो एक फिटनेस बंदा होता है?
1: सर, इसमें सबसे पहली चीज आती है बॉडी मास डिफरेंस। मसल मास बहुत ज्यादा होता है बॉडी बिल्डर्स का, तो जब बॉडी के अंदर मसल मास ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है।
0: अच्छा,
1: तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और जो कैलिस्थेनिक्स है उसकी मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डर थोड़ी सी इजी होती है।
0: अच्छा,
1: उनको जस्ट अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना होता है, और डाइट उनकी जो है अच्छी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बल्क अमाउंट में रिक्वायरमेंट उनको रिक्वायर नहीं होती, RDs वगैरह।
0: ठीक है, और मुझे बताओ कैलिस्थेनिक्स जो होती है फिटनेस, इसमें कितना टाइम रिक्वायर होता है, किस टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, घर में भी हो सकता है कि इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर जिम, एक माहौल चाहिए?
1: अच्छा, कैलिस्थेनिक्स जो है वो हर पर्सन नहीं कर सकता।
0: ठीक है,
1: इसमें कुछ आपके जेनेटिकल ट्रेट्स भी मैटर कर रहे होते हैं कि जेनेटिकली आप कितने स्ट्रांग हैं।
0: ठीक है,
1: जैसे कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, जैसे मसल अप है, मसल अप सिर्फ पूरी वर्ल्ड में 4% या 3% लोग करते हैं। अच्छा, वो सारे के सारे कैलिस्थेनिक्स कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं।
0: ठीक है,
1: तो कैलिस्थेनिक आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी बन सकता है। कुछ जेनेटिकली ट्रेड अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जेनेटिकली आप स्ट्रांग है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और आप डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो मसल टेंडन्स उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें टाइम लगता है।
0: और
1: बहुत
0: कितना टाइम डेली इसमें देना चाहिए एक बंदे को, अगर आप मतलब सिर्फ फिटनेस के लिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे किसी मुकाबले के लिए, जस्ट फॉर ए फिटनेस के लिए कितनी देर आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को उसके अंदर एक मूवमेंट में लेके आए?
1: सर, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो पर्सन है उसकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, ताकि उस एक्सर्शन के अकॉर्डिंगली हम देखें कि इतने परसेंट जो है या इतने मिनट जो है एक्सरसाइजेस को रिक्वायर हैं।
0: ठीक है,
1: अगर एक पर्सन है उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ऑब्वियसली उसको एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी।
0: अच्छा,
1: एक पर्सन है जो फील्ड में ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसकी फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सन की जॉब नेचर क्या है।
0: ठीक है,
1: ऑफिस जॉब है, फील्ड वर्क है, क्या है?
0: ठीक है,
1: तो हमें थोड़ा सा उसको बैलेंस करना होता है।
0: अच्छा, आप लोग पूरा से डाइट प्लान, उससे पूरा गाइडलाइन देते हैं कि आपने एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक कैसे करनी है, उसकी डाइट प्लान कैसे करना है और कितनी देर एक्सरसाइज करना है, दैट यू विल गाइड यू, मतलब
1: जी जी
0: जो भी होते हैं
1: फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर के अकॉर्डिंगली हम देख रहे होते हैं, क्योंकि हर पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है.
0: ठीक है,
1: जैसे आपका बहुत ज़्यादा सिटिंग ऑफिस में होता है तो यहाँ पे आपकी फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो आपकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी कम होगी ऑटोमेटिकली.
0: अच्छा ठीक.
1: लेकिन जो पर्सन फील्ड में काम कर रहा है, जो पर्सन आगे पीछे काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, आरडीएस की, कार्ब्स की, प्रोटीन की, फैट्स की, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें हमें फुलफिल करनी होती है उसमें.
0: अच्छा मैं तो ये मुझे बताइए कि डाइट कितना मैटर करती है ओवरऑल हमारे लाइफस्टाइल के अंदर. हमें ये बताया जाता है कि डाइट इज़ योर लाइफ, जो आप खाते हैं वही आपकी ज़िंदगी है.
1: ऐसे ही.
0: सो इसकी कैलकुलेशन किस तरह करें, कितनी डाइट लेनी चाहिए एक आम नॉर्मल बंदे को, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता उसको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, अगर वो फिटनेस की तरफ भी जाता है तो उसको कैसे अपने डाइट प्लान को मैनेज करना है.
1: सर इसमें बेसिकली जो हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं उसमें बेसिकली एक पर्सन की मेजरमेंट्स होती हैं, हाइट, वेट, एज, फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपकी रूटीन क्या है, तो उस सारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली हम एक फार्मूला लगाते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का, बेसल मेटाबॉलिक रेट का. उसके बाद हम सारी चीज़ें कंक्लूड करके बताते हैं कि इतनी कैलोरीज आपको रिक्वायर हैं आपके फिजिकल एक्सर्शन के अकॉर्डिंगली. जैसे एक पर्सन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी.
0: ठीक है.
1: एक पर्सन नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी आरडीए जो है प्रोटीन की वो नॉर्मल होंगी. तो ये हर पर्सन की डिफरेंट है, उनकी हाइट, वेट, उनकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली होता है सारा का सारा.
0: बीएमआई चेक होगा.
1: हाँ जी.
0: फिर उसके बाद आप लोग
1: हर चीज़ देखेंगे.
0: अच्छा हम का जो हमारा जो मेन आज का मोटो है माशाल्लाह वी जस्ट
1: है प्रोटीन की वो नॉर्मल होंगी. तो ये हर पर्सन की डिफरेंट है, उनकी हाइट, वेट, उनकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली होता है सारा का सारा.
0: बीएमआई चेक होगा.
1: हाँ जी.
0: फिर उसके बाद आप लोग
1: हर चीज़ देखेंगे.
0: अच्छा

0: आज हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम एक और इंटरव्यू करेंगे जल्द जब आप उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। आप बताइए कि बेसिकली व्हाट इज योर एक्सरसाइज वे, आप क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज हैं जिसका आप रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
1: अच्छा, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है 4 to 5 गेम्स के अंदर,
0: ठीक है,
1: तो उसमें मैंने एक स्पेसिफिक अपना टेन्योर रखा है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग करके एक अटेम्प्ट करनी है, देन इतनी ट्रेनिंग करके मैंने दूसरी अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले जो मैं अटेम्प्ट करूँगा वो है अगेंस्ट USA, उनके पास ये टाइटल है द मोस्ट प्लैंक जैक्स इन 1 मिनट, और उनके पास रिकॉर्ड है 63 रेपुटेशंस का।
0: ठीक है,
1: प्लैंक जैक्स एक ऐसी गेम है जिसमें हम प्लैंक से पोजीशन में जाके और अपनी लेग्स को 45 डिग्री पे आउटवर्ड, नहीं लेग्स को बाहर की तरफ हम स्ट्रेच करते हैं 45 डिग्री के और वापस लेके आते हैं, तो ये दोनों डायरेक्शंस का एक रेपिटेशन हम वहाँ पे काउंट करते हैं।
0: ठीक है,
1: अच्छा, इसमें हम अपने कोर को, अपनी हिप को, अपने शोल्डर को, किस अपनी नीज को बेंड नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते।
0: ओके,
1: इनकी माइनस कैटेगरी इन्होंने वहाँ पे दी हुई है कि अगर आप अपने लेग्स को 45 डिग्री पे नहीं लेके जाएंगे तो -3 है आपका, तो ऑटोमेटिक 60 सेकेंड्स में हमने 63 क्रॉस करना है। और यही इतना डिफिकल्ट टास्क है, अगर वहाँ पे कोई माइनस की कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत टफ हो जाएगा ना वो सारे का सारा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत टफ चीज़ है मेरे लिए। तो मेन चीज़ बॉडी कोऑर्डिनेशन है, स्पीड नहीं है, पावर नहीं है, ये चीजें हैं, तो मैं इस पे काम कर रहा
0: हूँ। लेकिन आपको टाइम ड्यूरेशन आपने बताया कि जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है वो
1: 63 का, इट मीन्स कि अगर मुझे वो ब्रेक करना है then I have to go on 0.78 nanoseconds.
0: अच्छा, और एक सेकंड में आपको, एक सेकंड में कितने करने?
1: मुझे एक सेकंड में 1.7 करने पड़ेंगे।
0: Oh my goodness, 1.7
1: और वो भी फुल क्लैरिटी के साथ।
0: उसके अंदर कोई वो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म की वो बॉडी की पोजीशंस नहीं आउट होनी चाहिए।
1: अच्छा, सर उसमें ना उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हमें बताए हुए कि आप, अच्छा, डिफरेंट एंगल्स में कैमरास भी लगे होंगे,
0: अच्छा,
1: स्लो मोशन के भी होंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड कैमरास भी होंगे, तो वहाँ पे गलती की गुंजाइश आपके सामने नहीं हो सकती।
0: यानी उसमें अगर एक पुशअप भी आपका या जो आपको कर रहे
1: हैं, हाँ जी,
0: वो गलत हो गया तो वो
1: उसमें एक भी जैक अगर मैंने गलत किया तो ऑटोमेटिकली माइनस कैटेगरी में मैं चला जाऊंगा और फिर आपके सामने फिर मुझे नैनो सेकंड्स में करना पड़ेगा, वो ह्यूमन कर ही नहीं सकता, बहुत टफ हो जाएगा सर।
0: है ना, 1 मिनट में आप कह रहे हैं 63 ऑलरेडी रिकॉर्ड है और 1 मिनट में 60
1: और USA के एथलीट हैं डेल्फ, उनके पास से रिकॉर्ड है, वो भी कैलिस्थेनिक एथलीट है।
0: अच्छा,
1: वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कैलिस्थेनिक एथलीट।
0: आपने जब गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपने आप को अपने फील किया यार आई कैन डू इट, आपने प्रैक्टिस भी की होगी और प्रैक्टिस भी करते हैं, अब तक जो प्रैक्टिस की उसमें आपने इसको कितनी देर में अचीव किया?
1: अच्छा, अभी की आज की जो मेरी करंट रेडिंग है वो ऑलमोस्ट 55 जा रही है,
0: माशाल्लाह,
1: लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरी हिप्स जो हैं थोड़ी सी सैग कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो थोड़ा सा मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। मेरे पास अभी हैं ऑलमोस्ट 40 डेज हैं।
0: ओके,
1: तो मैं इंशाल्लाह, मैंने कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपने कोर पे, अपने हिप्स पे, अपने बॉडी पॉस्चर पे मैं काम कर रहा हूँ।
0: ओके,
1: इसके लिए मुझे थोड़ा सा और लीन होना पड़ेगा। मैं 70 kg से 65 पे आ गया और मैंने अपना मसल लॉस नहीं किया, मैं जस्ट अपने आप को लीन कर रहा हूँ। कार्ब्स मैंने बिल्कुल अपने कट किए हुए, प्रोटीन मेरा इंटेक सफिशेंट है और अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स करता हूँ, मैं
0: 3 आवर्स
1: ट्रेनिंग करता हूँ।
0: सो आपका भी
1: 55 तक मैं आ गूँ जिसमें से मैं समझता हूँ कि मेरे लास्ट 4-5 रैप्स ठीक नहीं होते, तो वो डिडक्ट करके मुझे लगता है कि 50 एक्यूरेट होते हैं, तो मुझे अभी थोड़ा सा और स्ट्रगल करनी पड़ेगी,
0: मेहनत करनी पड़ेगी।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, ये जाहिर बात है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने के लिए भी रिकमेंडेशन उनका एक पैरामीटर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। सो आप उन रिक्वायरमेंट पे कैसे पूरा उतरे, आपने कैसे उनको बताया कि यार आई कैन डू इट, और कोई आपने अपनी एक्सरसाइजेज या किसी ने आपको रिकमेंड किया या कोई ज्यूरी इस तरह की बनी है जो आपको रिकमेंड करती है आपकी तरफ?
1: बिल्कुल, आपका बड़ा एक अहम क्वेश्चन है यहाँ पे। सर, मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में अपने आप को मैंने इन्वॉल्व कर दिया था।
0: ठीक है,
1: मैं डिफरेंट आर्म रेस्लिंग टूर्नामेंट्स में जाता हूँ, वहाँ पे खेलता हूँ, ओपन कैटेगरी में बीट कर देता हूँ 100+ kg बॉडी बिल्डर्स को, पावर लिफ्टर्स को, और कुछ मेरे ऐसे स्टंट्स हैं, कैलिस्थेनिक स्टंट्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
0: अच्छा, गुड।
1: जिसमें 1 हैंड पुशअप्स हैं। अच्छा, जिसमें मैं 20 तक भी कर सकता हूँ 1 हैंड से।
0: वो कितनी देर में?
1: सर उसमें टाइम नहीं, वो जस्ट हमने एक नॉर्मल किया था।
0: एक हाथ से 20 पुशअप।
1: हाँ,
0: असर 30 कर लेते।

0: अच्छा
1: तो उसमें कुछ वीडियोस वगैरह एज एविडेंसेस मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ शेयर की थी.
0: अच्छा.
1: और उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप एक छोटा सा अपना ट्रायल दे दें जिस एक्टिविटी में आप जाना चाह रहे हैं.
0: ठीक है.
1: तो उस टाइम मैंने अपनी रॉ स्ट्रेंथ के साथ विदाउट एनी प्रैक्टिस मैंने 38 या 39 मैंने अटेम्प्ट वहाँ पे की थी.
0: पुशअप्स?
1: नहीं सर, पुशअप की बात नहीं कर रहा, मैं प्लैंक जैक्स.
0: अच्छा,
1: की बात कर रहा
0: हूँ.
1: पुशअप्स में नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप्स में 100 कर सकता हूँ.
0: अच्छा, दोनों
1: वार्म अप के साथ दोनों हाथों से मैं 100 कर सकता हूँ.
0: अच्छा, आप 100 कर सकते, मैं 1 कर सकता. अच्छा, जबरदस्त.
1: हाँ जी.
0: अच्छा, वो देखें, इसमें हम डेफिनेटली आपकी एफर्ट तो है उसको एडमायर करेंगे. गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो सपोर्ट मिले वो बताएं कितनी है.
1: सर, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अप्रूव्ड हो चुकी है और मेरे पास अब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने सारी गाइडलाइंस भी मुझे दे दी हैं.
0: अच्छा.
1: जस्ट मैंने चीज़ें अपलोड करनी है वहाँ पर,
0: एविडेंसेस
1: वगैरह. तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कर पाता.
0: बिल्कुल ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट और आपकी एफर्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कुछ कुछ मखसूस कवानीन होते हैं, उनकी शरायत होती हैं जिसकी तैयारी के लिए आपको उसमें रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को.
1: सर, इसमें बेसिकली वो एक चेकलिस्ट देते हैं आपको.
0: ठीक है.
1: कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो सारा टेन्योर हमें टाइम लैप्स पे चाहिए होता है और आपकी रिकमेंडेशंस हमें चाहिए होती है, विटनेसेस वगैरह देनी होती हैं. कोई भी एथलीट वगैरह नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, उस कंट्री का वो दे सकता है. तो उसमें उन्होंने मुझे चेकलिस्ट में सबसे पहले मीडिया आर्टिकल्स वगैरह का उन्होंने जिक्र किया उसमें कि आपका कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या आपका कंट्री आपको जानता भी है कि नहीं जानता. तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट दी है, बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ आपका.
0: रेडियो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये पाकिस्तान का एक नेशनल चैनल है.
1: जी, ऐसे
0: और नेशनल चैनल हमेशा अपने नेशनल हीरोज़ को जो है ना वो एडमायर करता है, उनको सपोर्ट करता है. सो रेडियो पाकिस्तान की और हमारी पूरी रेडियो पाकिस्तान की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ. आप इसी तरह ही मुल्क का नाम रोशन करते रहें. और आई एम श्योर इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट्स नॉट अ ईजी टास्क. और एज ए डॉक्टर आपको बाज़ दवा ये नहीं लगता कि यार मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मैं एस्थेटिक करूँ अपने?
1: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है.
0: और ये इतना मुश्किल काम है एक्सरसाइज करना और जिम करना, अपने आप को टाइम देना.
1: अच्छा, ये जो आपने बात की, काफ़ी दफ़ा मैं सोचता भी हूँ, लेकिन मेरे सराउंडिंग के जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे लिए एक मोटिवेशनल आइकन है. जब वो इस तरह की बात करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है.
0: आप हमारे लिए भी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए. देखें, इंशाल्लाह गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको रजिस्टर हो जाना, आपको एक्सेप्ट कर लेना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात होती है. एंड डेफिनेटली आप उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं और फिर आगे से भी इंशाल्लाह आप करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है. अब 25 करोड़ आवाम में आप देख लें कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो इस टास्क तक पहुँचे हैं.
1: ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा.
0: सो यू आर यंग और इस यंग उम्र में आपने ये अचीवमेंट हासिल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी आपको कामयाबी देगा. अच्छा, मुझे बताएं कि कोई कोच भी आपका है जो आपको गाइडलाइन देता है, समझाता है, बताता है, कि आप खुद अपने कोच?
1: नहीं, मेरा कोई कोच नहीं है.
0: अच्छा.
1: मैं खुद से ही सारे एंगल्स वगैरह, मुझे पता है कि मैंने कौन सी एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है और कौन सा मसल कौन सी स्ट्रेंथ मुझे देगा. मुझे पता है कि प्लैंक जैक्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरे कोर की लगेगी, इसीलिए मैंने अपने को अपने एब्डोमिन एरिया को जो है वो लीन करना शुरू कर दिया है. मॉर्निंग टाइम में मैं अपने कुछ एक्सरसाइजेस करता हूँ, शाम में मैं जिम जाके अपनी ट्रेनिंग करता हूँ क्रॉसफिट एरिया के अंदर. ऐसा सच कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा मैं, जैसे मैंने आपको बताया
0: जी,
1: कि मैं जस्ट अपने स्टेमिना, स्पीड, इंड्योरेंस, इन सारी चीज़ों पे, यानी कि स्ट्रेंथ को भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में सारी चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ.
0: अच्छा.
1: इसमें मैं 10-15 सेट्स निकालता हूँ प्लैंक्स के, 2-2 मिनट्स के, ताकि शोल्डर मोबिलिटी पे भी मेरा फोकस हो. उसके बाद फिर मैं अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी पे काम करता हूँ, जिसके साथ मैं मेडिसिन बॉल्स के साथ उनको थ्रो करता हूँ, उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ. फिर तो कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, मेरे फ्रेंड हैं दानियल जमील, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो मुझे हेल्प आउट करते हैं इसमें. तो मैं अकेला ही सारी चीज़ें इसमें देख रहा हूँ.
0: ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा। गिनीस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक बड़ा एक रजिस्टर अगर आप होते हैं, इसके अलावा भी कहीं और इरादा है आपका फर्दर के और भी एथलीट्स के अंदर जाएं?
1: जी जी, मैंने सर सबसे पहले मैंने यूएससी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, उनको बीट करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मैंने इंडिया का एक रिकॉर्ड है वो ब्रेक करना है।
0: अच्छा, वो भी यही है
1: सर? वो है मोस्ट डिक्लाइन नकल पुशअप्स इन 1 मिनट।
0: ओके,
1: और उनका है 115 का रेपिटेशन रिकॉर्ड।
0: उसकी पोजीशन क्या होती है
1: सर? उसमें 50 सेंटीमीटर तक हाइट पे आपकी लेग्स होती हैं और नीचे जो है ना नकल्स आपने ये पंच बना के पुशअप निकालने होते हैं और आपके जो आर्म्स हैं उसका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसमें स्पीड है, एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, 60 सेकंड्स में 115 क्रॉस करना है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, ये थोड़ा 60 सेकंड्स में 115 क्रॉस करना है,
0: 60 सेकंड में 160 आपने क्रॉस
1: करना है। हाँ जी।
0: अच्छा, इसमें जो सबसे मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ आपने आपकी पोजीशनिंग बड़ी मैटर करती है।
1: पोजीशनिंग सर बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
0: अगर आपने थोड़ा सा भी आप पोजीशन से आउट हो गए
1: फिर ख़त्म सर,
0: फिर आप खत्म
1: फिर आप माइनस में चले रहेंगे और वही पूरा नहीं होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर जाके वो रिजेक्ट हो जाता है।
0: अच्छा, आपने बताया इसके अलावा और कौन से हैं आपके
1: सर? मोस्ट रिक्लाइन नकल पुशअप्स हैं मेरे पास, और है मोस्ट प्लैंक जैक्स हैं, उसके बाद एक और है डिक्लाइन नकल पुशअप्स लेकिन वो वेट के साथ है, 19 kg के साथ है, वो जर्मनी का रिकॉर्ड है।
0: वो क्या है?
1: वो है वही सेम इंडिया वाला है, मोस्ट रिक्लाइन नकल पुशअप्स हैं लेकिन मेरी बैक पे एक बैग होगा उसमें 19 kg में वेट होगा।
0: अच्छा,
1: हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए ये रिकॉर्ड बनाऊँ ताकि पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन हो।
0: इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा
1: इंशाल्लाह।
0: अच्छा, ये बताओ कि ये जो इस डेफिनेटली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगेन वही बात कि पोजीशंस बड़ी मैटर करती हैं, इवन चाहे अगर आप जिम कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आप लोग करते हैं, सो इसके लिए तो कोच का होना, गाइडलाइंस, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर देन एक नॉर्मल बंदे से, तो जो नए लोग इसमें आना चाहें उनको आप क्या रेकमेंड करते हो कि कोचिंग लें, गाइडलाइन लें या यूट्यूब खोलें और चेक कर लें उधर से आप गाइडलाइन ले सकते हैं?
1: नहीं सर, देखें, एक पर्सन अगर जिम ज्वाइन कर रहा है फिटनेस के लिए और बिल्कुल वो ब्लैंक है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स का, बिल्कुल उसको नहीं आइडिया, तो अगर वो यूट्यूब से वीडियोज निकाल भी लेगा लेकिन वहाँ पे लाइव एंगल्स वगैरह अपने एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने काफ़ी लड़कों को ऐसा देखा है, वो जिम में आते हैं, वीडियोस से अपनी गेम लगा रहे होते हैं और अल्टीमेटली उनका पोस्टर ख़राब हो जाता है।
0: अच्छा,
1: उनका पोस्टर ख़राब हो जाता है, उनको मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, उनको ये नहीं पता कि मैंने किस डिग्री पे अपने मसल को रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मेरे एंगल कौन सा होना चाहिए, कितने सेट्स निकालने, कितना रेपिटेशन मैंने देना है, कितना रेस्ट का ड्यूरेशन देना है। तो मेरे ख्याल में इनिशियल फेज में आपको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होती है।
0: ट्रेनर को आप डेफिनेटली, ये उस्ताद तो हर फील्ड में ज़रूरत है,
1: ऐसे ही
0: आप किसी भी फील्ड में आपको उस्ताद की ज़रूरत है, आप खुद से उस्ताद ना बने, अगर आप खुद से उस्ताद बनेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं और चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाए। अच्छा, तो ये मैं चाहूँगा कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, नॉर्मली आप क्या गाइडलाइन देते हैं कि लोगों को अपने आप को कैसे फिट रखें जिनके पास बड़ा बिजी शेड्यूल है? कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो वो कर सकते हैं घर में बैठ के डेली बेसिस पे वो कर लें तो एटलीस्ट ये है कि वो अपनी फिटनेस थोड़ी बहुत मेंटेन रख सकते हैं?
1: बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पाकिस्तान में देखा जाए तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं और हमें बस इतना नहीं आइडिया कि हमने कितनी कैलोरीज की इनटेक करनी है डेली बेसिस पे।
0: वेरी गुड।
1: तो अगर उनको कैलोरीज इनटेक का आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व कर दें वो फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए उनको जिम ही जाना पड़ेगा, आप एक छोटा सा एक्सरसाइज मैट ले लें।
0: ओके।
1: मैंने अपने पास पिछले कोई 12-13 सालों से रखा हुआ है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, जब मैं 14 साल का था तभी मैंने वो परचेज कर लिया था, तो मैं उस पर पुशअप लगाता होता था, उस टाइम मेरा एंगल ख़राब होता था तो मेरे फादर मुझे गाइड करते थे कि आपने इस एंगल में पुशअप निकालने हैं, ये एंगल गलत है, ये एंगल आपका दुरुस्त है। अच्छा सर, जो आपने मेरे से सवाल किया कि लोगों को कौन सी मेजर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, तो एक्सरसाइजेज के लिए जो मेजर हमारे पास चीज़ है, एक तो जॉगिंग है, मॉर्निंग जॉगिंग है, लेकिन अगर किसी पर्सन को डिस्क का कोई इशू है, किसी की डिस्क अपनी प्रोलैप्स है या बहुत ज़्यादा ओबीस है, वो यानी कि जॉगिंग नहीं कर सकता, तो वो नॉर्मल वॉक कर सकता है मॉर्निंग टाइम.
0: ठीक है.
1: अच्छा, हमने करनी वॉक मॉर्निंग के टाइम है. अच्छा, इसको मैं अगर साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ लिंक करने की कोशिश करूँ तो मैं जस्ट आपको यही छोटी सी चीज़ समझाऊंगा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है, कॉर्टिसोल जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन. जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, हमारी एग्जर्शन होती है, लोगों के साथ इंट्रैक्शन होते हैं, हम बात करते हैं, अपने बॉडी को यूटिलाइज करते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन एलिवेट होना शुरू हो जाता है.
0: ठीक है.
1: उस फेज के अंदर आपकी वॉक जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती आपके लिए.
0: अच्छा,
1: तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
0: और अगर किसी को मॉर्निंग में टाइम ना हो, ये उठना सकता हो, तो फिर वो इवनिंग में कर सकता है.
1: इवनिंग में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, नाइट में भी कर सकते हैं.
0: करें तो सही ना,
1: कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना.
0: अच्छा, वॉक होगी, फिर उसके अलावा और क्या करें?
1: अच्छा, अगर वो वॉक कर लेते हैं और अपने यानी कि अपने लेवल को इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा नीज की सपोर्ट के साथ पुशअप्स लगा लें.
0: ठीक है.
1: मैं जस्ट ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट पुशअप्स की तरफ चले जाएं, नीज को सपोर्ट दे के एक्सरसाइज मैट के साथ आप सपोर्ट लेके नीचे अपने हैंड्स के साथ पुशअप्स लगा सकते हैं. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आपके आर्म्स के लिए. ठीक है. आप वॉक करेंगे आपके लेग्स के लिए बेनिफिशियल है, और आप पुशअप करेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो अपर टॉर्सो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा.
0: ठीक है. मतलब आप कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत आप
1: स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट.
0: अच्छा, एक कॉलर हम ले लेते हैं, हमें काफ़ी देर से कॉल्स भी आ रही है, तो देखते हैं.
1: जी जी सर.
0: अस्सलाम वालेकुम.
2: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: सिद्रा कुरैशी, मंदरा से.
0: जी सिद्रा कुरैशी, आप शो सुन रही हैं कि अभी मंदरा में हैं?
2: जी भाई सुन रही हूँ.
0: हाँ जी, कोई एक्सरसाइज सीखना चाहेंगी डॉक्टर तैयब से? आप कोई एक्सरसाइज सीखना चाहेंगी आप?
2: सॉरी भाई आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी सी प्लीज़ बोलें.
0: आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब आ रही है. हेलो.
2: जी भैया आ रही है.
0: अच्छा,
2: रही है.
0: आप कुछ सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर तैयब से?
2: मैं हेल्थ के इशू से बात करना चाहती हूँ उनसे.
0: जी जी बताएं, क्या हेल्थ का इशू पूछना चाह रही हैं आप?
2: भैया पति के मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है ना, तो उसकी मेन रीज़न वजह भी यही है कि वो ना मैं मिट्टी खाती रही हूँ.
0: मिट्टी खाती रही हैं आप? अच्छा, अभी भी खाती हैं कि छोड़ दी खाना?
2: छोड़ दिया, लेकिन घर वाले यकीन नहीं करते.
0: अच्छा अच्छा, वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ठीक ना मिट्टी खाने वाला, तो अब आप पत्थर खाना शुरू कर दें, शायद ठीक हो जाए उससे.
2: डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया.
0: नहीं, अब आप मिट्टी खाना छोड़ना चाह रही हैं कि आप वेट गेन करवाना चाह रही हैं?
2: नहीं भैया, मैं आपको रीजन बता रही हूँ. पहले मेरा वेट ठीक था, मेरी सेहत ठीक थी, लेकिन मैं मिट्टी खाने के बाद मेरा वेट 32 पे चला गया.
0: 32?
2: जी.
0: अच्छा, एज क्या आपकी?
2: 21.
0: वेट तो आपका, अच्छा चलें ठीक है. अभी भी 32 है वेट?
2: जी.
0: अभी भी आपका वेट 32 है?
2: हाँ, पहले 25 था, 32 है.
0: माशाल्लाह, चलो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहा है ना.
2: हाँ, लेकिन मुझे डॉक्टर से कहें कि मुझे अभी कॉल पे ही बता देना कि
0: मैं. चलें ठीक है, अब मैं बिल्कुल आपको बताते हैं. थैंक यू सिद्रा, थैंक यू. वैसे ना आजकल हम तो ख्वाहिश करते हैं कि हमारा वेट कम हो, वेट लॉस हो, लेकिन इतना लॉस होना तो इट्स नॉट अ गुड साइन, है ना? ये
1: डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा
0: सा डिफरेंस. तो ये क्या करें अपना?
1: सर, इसमें हमें थोड़ा सा उनका डाटा चाहिए होगा, एज, हाइट, वेट वगैरह, ताकि एक बॉडी फ्रेम को मैं इमेजिन करके बता सकूं कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है. कुछ जेनेटिकली चीज़ें भी होती हैं, कुछ मेडिकेशंस की इनटेक इस तरह हो जाती है कि उनके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर.
0: ओके.
1: तो पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
0: ज़ाहिर है, उसका BMI जब तक नहीं पता चलेगा तो आप उसको गाइडलाइन नहीं दे सकते. लेकिन ये है कि आप अभी मिट्टी खाना छोड़ दें और पत्थर खाना शुरू कर दें. सिद्रा हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है जी. आप वैसे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ. आप खाएँ पिए टाइम से और अपनी. अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो स्लीपिंग हैबिट है ये कितना मैटर करती है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर?
1: स्लीपिंग आवर्स तो मैं समझता हूँ कि सबसे मेजर चीज़ है आपकी. बॉडी आपकी रिचार्ज नहीं होगी तो अल्टीमेटली आप फ्रेश नहीं होंगे. आपका स्ट्रेस हार्मोन ही ज़ीरो लेवल पे नहीं जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या. जो रिकमेंडेड स्लीपिंग आवर्स हैं वो 7 to 9 है.
0: 7 to 9
1: ये मैंने एडल्ट की बात की है.
0: ठीक ठीक है,
1: अगर हम बच्चों की तरफ जाएं तो स्लीपिंग आवर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं उनके,
0: जाहिर बात है ये हाँ टॉपिक होते हैं। अच्छा वैसे मुझे देख के बताएं, मैं पिछले 24 घंटे से नहीं सोया।
1: अच्छा लेकिन आप तो मुझे फ्रेश लग रहे हैं
0: सर, ये आपका कमाल है,
1: बिलीव मी आप मुझे फ्रेश लग रहे
0: हैं। मैं पिछले 24 घंटे से नहीं सोया बिल्कुल भी।
1: अच्छा
0: बस वो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस चीज़ें इमरजेंसी से कुछ ट्रैवल करना पड़ गया। तो एक्चुअली ना मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब से आप यहाँ पे है ना तो कम इस तरह होता है कि मैं इतना एक्टिव हो जाऊँ, किसी इतने चार्ज बंदे को देखो, इतने एक्टिव बंदे को देखो, और एक ऐसा बंदा जो मेरे मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज बिल्टअप कर रहा है, मेरे मुल्क की तरक्की में, मेरे मुल्क की एक पॉजिटिविटी के अंदर अपना रोल अदा कर रहा है। और माशाल्लाह जो सेहत है ना सर, ये बहुत बड़ी नेमत है।
1: बिल्कुल ऐसे,
0: और इसे कहते हैं ना सेहत है तो ज़िंदगी है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें सारा जो किरदार है ना ये हम लोगों की लाइफ स्टाइल का है। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर ओवरऑल जब आप लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं हमारे पाकिस्तानियों का, उसमें आपको क्या चीज़ नज़र आती है कि यार पाकिस्तानियों के लाइफ स्टाइल की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, पाकिस्तान के लाइफ स्टाइल की वजह से जो बीमारियाँ उनमें इजाफा हो रहा है, सो कौन सी ऐसी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में जो हमें इमीडिएटली ख़त्म करनी चाहिए?
1: सर पाकिस्तान में बेसिकली जो डेली रूटीन है सबकी काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है।
0: ठीक है,
1: और हर पर्सन का यही माइंडसेट है कि यार हम हैक्टिक रूटीन में जा रहे हैं और हम अपने आप की फिज़िकल एक्टिविटी को या अपनी न्यूट्रिशन इनटेक को मैनेज नहीं कर सकते।
0: ठीक है,
1: तीन चीज़ें सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है आपकी डाइट, सेकेंड चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप, थर्ड चीज़ है आपकी फिज़िकल एक्टिविटी थर्ड पे। और लोग समझते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी टॉप पे है, ऐसा नहीं है। आपकी नींद अगर पूरी नहीं है, आप एक्सरसाइज जितनी मर्जी कर लें, मसल को बॉडी को रिकवरी तभी मिलती है जब आप सोते हैं, डीप स्लीप साइकिल में जाते हैं, तभी बॉडी रिलैक्स होती है, तभी बॉडी रिचार्ज होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट पे, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, अपनी स्लीप पे और अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें।
0: अच्छा हमारे यहाँ चूँकि ट्रेंड ये बन गया कि हमने रात लेट नाइट तक जागना है, और हमारे जो वर्किंग आवर कह रहे हैं ये वैसे एक हैबिट बन गई है कि 2-3 बजे, 2 तो कम अज़ कम हो जाता है। तो वैसे आइडियली What time is the best time to sleep time?
1: देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड सर्कैडियन साइकिल है पाकिस्तान को, उसके अकॉर्डिंगली हमें 10:30 पे सो जाना चाहिए और सुबह 5:30 पे हमें उठ जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: बहुत ये जो हमारी फिजियोलॉजिकल सर्कैडियन साइकिल की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली इस्लाम भी यही चीज़ें हमें बताता है, साइंस भी यही बता रहा है, और ये फैक्चुअल चीज़ है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि हम सारी सारी रात बैठ के मोबाइल फोन्स वगैरह स्क्रीन टाइम को इनहांस करें, बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
0: अच्छा स्क्रीन टाइम की हम बात जरूर करना चाहेंगे, स्क्रीन टाइम की वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, और डेफिनेटली हर बंदे का, जितने भी लोग मेरे समय देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत बढ़ता जा रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं?
1: सर स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली आपको एक एक्साइटमेंट देता है, एक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर आपके अंदर रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी आप बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है। तो हम उसमें थोड़ा सा अपने आप को ना, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, अगर हम ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे उस पर तो हमारी नॉर्मल लाइफ जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है।
0: अच्छा मुझे डाइट प्लान थोड़ा सा दीजिए खाने के हवाले से, नॉर्मल बंदे को कैलकुलेशन तो उस करेंगे कितने कार्ब्स होते हैं, क्या क्या कुछ लेना है। नॉर्मली 3 टाइम इन अ मील, कितने टाइम मील्स लेना चाहिए? हमारे यहाँ हैबिट तो ये 3 टाइम की है, सो व्हाट इज़ अ रिकमेंडेड मील और किस तरह का मील होना चाहिए, और डेली रूटीन के अंदर चेंज होना चाहिए, कैसा आप डाइट प्लान हो?
1: सर इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खैर नहीं करते, वो आपने भी बॉडी मास इंडेक्स का पहले जिक्र किया, तो हर पर्सन की डिफरेंट होती है। तो बेसिकली बॉडी का जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो कार्ब्स से ही आ रहा होता है, जैसे रोटी है, चावल है, लेकिन हमारे यहाँ कार्ब्स की इंटेक बहुत ज़्यादा होती है। हम सिंपल कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा करते हैं, वो यह कदम जाके शुगर लेवल को राइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कम्प्लेक्स कार्ब्स की सिलेक्शन करनी चाहिए, जैसे ओरिजिनल गंदम की रोटी है, लेकिन लाहौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा हमारा जो आटा है वो ओरिजिनल नहीं होता, उसमें जो है ना दूसरी चीज़ें भी
0: मिक्स
1: होती हैं। तो अगर आप कम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएंगे तो वो आपको एक अच्छा बैकअप एनर्जी का दे सकता है, जैसे ब्राउन ब्रेड है, जैसे ओट मील है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
0: आप भी अपनी डाइट को पूरा इसी तरह ही मैनेज करते हैं, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए तो खैर, सो आप किस तरह मैनेज करते हैं अपनी डाइट?
1: सर मैं अगर रोटी चावल खाने लग जाऊँगा तो मैं अपने कोर की स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं कर पाता।
0: अच्छा,
1: तो मेरे एक तो जेनेटिक्स भी ऐसे हैं, मुझे रोटी और चावल से परहेज करना होता है। अच्छा। उसके लिए मैं भुने हुए चने खाता हूँ, अपनी कार्ब्स की इंटेक वहाँ से पूरी कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो भुने हुए चने रोस्टेड चनास, उसके अंदर इतना ज़्यादा फाइबर है, इतना ज़्यादा प्रोटीन है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं कि वो आपको, अगर आप 10 टेबल स्पून की इंटेक कर रहे हैं तो वो आपको 3 रोटियों की जितने इक्विवेलेंट पावर दे रहा होता है।
0: भुने हुए चने,
1: भुने हुए चने इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके मसल्स के, आपके मसल फाइबर के लिए। आपने देखा होगा कि जितने भी घोड़े होते हैं उनके मालिक उनको चने दे रहे होते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है।
0: अच्छा,
1: बहुत ज़्यादा।
0: ये चने जो आम मार्केट में मिलते हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, वैसे उसके बाद फिर भूख लग जाती है हमारे यहाँ तो इससे कि लाइट चीज खा लेना, उसके बाद यार भूख लग गई,
1: ऐसे ही बिल्कुल
0: यार कुछ और खाना से की है वो एक्चुअली हमारा मेदा एडजस्ट हो गया होता है, हमें आदत पड़ गई होती है हैवी ड्यूटी किस्म के खाने खाने की,
1: ऐसे ही
0: हम जब तक वो ना खाएं तब तक हमें कंफर्टेबल भी नहीं होते और रिलैक्स भी नहीं होते। एक्चुअली अगेन वही बात है, ये जैसे अपने आप को आदत आप डाल
1: ऐसे। और सर प्रोटीन का मैं कहना चाहूँगा, हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं करते बॉडी की। जितना हमारा बॉडी वेट है हमने फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज मैंने आपको बताया कि मैं 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे अगर वर्कआउट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 1.1 फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर को कंक्लूड करूँगा।
0: अच्छा,
1: अगर मैं 1.1 को मल्टीप्लाई करूँगा अपने वेट पे जो कि 65 है इस टाइम, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 67 ग्राम प्रोटीन बन जाता है। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बंदे के लिए बात की है, लेकिन मैं आपको पता है कि इस टाइम अपनी स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहा हूँ मसल्स पे, तो जाहरी बात है मैं चाहता हूँ कि मेरे मसल्स की रिकवरी भी फास्ट हो और मुझे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दें। तो मैंने 2 फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर को इस टाइम अपने मसल वेट के साथ कंपेयर करके 130-140 तक मैं प्रोटीन की इंटेक कर रहा हूँ।
0: अच्छा, डेली बेसिस?
1: डेली बेसिस पे। इसके लिए सर मैं चिकन ब्रेस्ट जो है उसको बॉईल करके वो उसकी इंटेक कर रहा हूँ।
0: ओके।
1: अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग एग्स की बड़ी इंटेक करते हैं।
0: जी
1: हाँ। लोग कहते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, अच्छा एग्स में,
0: एग्स में भी वो
1: एग जो वाइट एरिया है उसमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन उसको मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर के ऊपर जो बर्डन पड़ता है वो थोड़ा सा डेंजरस है।
0: अच्छा,
1: उस पर थोड़ा सा बर्डन पड़ जाता है।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल में अपने ऑर्गन्स को एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, पुश नहीं देना चाहिए इनको, इनको एक स्टैंडर्ड फ्लो में काम करना चाहिए।
0: तो ये आप रेकमेंड नहीं करते वाइट जो?
1: नहीं करता हूँ, लेकिन बल्क अमाउंट में जैसे 20 होते हैं, 15 होते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं क्या हम 15x की इंटेक करते हैं, 20x की इंटेक करते हैं, वो डेंजरस है आपके लिए।
0: और जो इंजेक्टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके साथ जो सप्लीमेंट लिए जाते हैं, डू यू रिकमेंड दैट?
1: सर बेसिकली एक पर्सन नॉर्मल रूटीन के अंदर अपना स्पेसिफिक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पूरा नहीं कर पाता, तो जो बंदा समझता है कि मेरी कोई डाइट की इंटेक इतनी है नहीं या मैं बिजी हूँ, तो वो अपने सप्लीमेंट मल्टीविटामिन्स वगैरह की इंटेक कर रहा होता है कि यार किसी चीज़ की डेफिशिएंसी वगैरह ना हो जाए। तो ये डिपेंड करता है अब उनके कि वो कौन से मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, उनका क्या मोटिव है, क्या फिजिकल एक्टिविटी, क्या गोल्स हैं उनके। तो एक माइन्यूट अमाउंट में आप ले सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो वो डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल है और नेचुरल इज़ नेचुरल। तो ये एक डिफरेंस मैं कहता
0: हूँ। अच्छा, आप बेसिकली बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, आपने MBBS किया, फिर उसके बाद अब एस्थेटिक में आ गए, सो व्हाई यू कम इन एस्थेटिक, इसकी क्या रीज़न है?
1: सर 2026 है और 2026 के अंदर दो ही फील्ड्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, एक है स्टैटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी, सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: ठीक है।
1: आज ये ऐसा दौर है कि हर इंसान खूबसूरत होना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो उनके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की पर्सनैलिटी का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है उनकी सेल्फ इस्टीम पर, उनकी कॉन्फिडेंस पर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है।
0: अच्छा, ये था ग्रोइंग मार्केट
1: बहुत ज्यादा,
0: और इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आप
1: कस्टमर बहुत ज्यादा है इसका, कस्टमर मार्केट बहुत है इसकी
0: और इसमें लोगों की ख्वाहिश भी होती है ना, वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं। और वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कॉस्मेटिक्स की मार्केट है, सबसे ज्यादा बिजनेस सिस्टम कॉस्मेटिक की मार्केट में हो रहा है। एस्थेटिक की मार्केट जो मैंने अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, इतने एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं इवन लाहौर शहर के अंदर, मतलब आप हर गली मोहल्ले चौराहे पे आपको कोई ना कोई एक एस्थेटिक क्लिनिक नज़र आता है, बट इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होती है कि बस कोई भी खोल सकता
1: है? नहीं सर, इसके लिए बेसिकली आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से NOC लेना होता है,
0: ठीक है?
1: तो PMDC काउंसिल जो है वही आपको इसके थ्रू NOC दिलवाता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में हर पर्सन एस्थेटिक सेंटर ओपन करके बैठा हुआ है, इवन जो सलोन्स वाले हैं उन्होंने भी ये चीज़ें प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई हैं। एक इलीगल प्रैक्टिस है।
0: अच्छा,
1: तो इसको मेरे ख्याल में इन चीज़ों को
0: चेक लाइसेंस ले लेते हैं वो किसी को किसी
1: सर वो रजिस्टर्ड लाइसेंस जो है वो लमसम बेसिस में या मंथली बेसिस पे वो उनको पे कर लेते हैं।
0: अच्छा,
1: आपके सामने सिचुएशन ऐसी है, हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते
0: हैं, फिर लगा लेते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, दैट इज अच्छा। ये एस्थेटिक्स से थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि लोगों का एक इंजेक्शन का आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, ब्यूटी इंजेक्शन।
1: हाँ जी,
0: क्या ब्यूटी इंजेक्शन इम्पैक्टफुल होता है, उससे बंदा खूबसूरत हो जाता है?
1: सर बेसिकली वो वाइटिंग इंजेक्शन होते हैं, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि सन एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टेम्परेचर यहाँ पे फॉल करता है, कोई 40 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है नॉर्मल, तो यहाँ पे टैनिंग बहुत ज़्यादा है,
0: ठीक है?
1: तो वो जो इंजेक्शन होता है ग्लूटाथियोन का, वो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन होता है उसको रिड्यूस कर रहा होता है,
0: ठीक है?
1: अल्टीमेटली हमारा रंग गोरा होने लग जाता है।
0: अच्छा, हाँ, पूरी बॉडी का?
1: पूरी बॉडी का सिस्टेमिकली वो कर रहा होता है।
0: ओके,
1: इसके लिए हमें LFT पहले करवाना होता है, पहले हम लिवर के एंजाइम्स को देखते हैं कि वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ग्लूटाथियोन का जो मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स है क्या वो वर्क कर रहे हैं एफिशिएंटली या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने कंप्लीट टेस्ट करवाएं, देन हम आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एस्थेटिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती।
0: अच्छा,
1: तो ये बहुत नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर।
0: अच्छा, किसी ने अगर एस्थेटिक क्लिनिक को चूज़ करना है अपनी स्किन केयर के लिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेज़र के लिए करना है इवन दो, सो उसको क्या पैरामीटर्स हैं, क्या देखना होगा, कैसे उसको चूज़ करने का, यार ये अप टू द मार्क है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, डॉक्टर्स भी हैं, ये सारी चीज़ें?
1: सर सबसे पहली चीज़ ये कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है।
0: हम इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं, एक मुझे न्यूज़ ब्रेक के जानी पड़ना है, उसके बाद हम

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में ये मेरा है take। I don't care what you think, what you

닥사 가야 얼추 포 가야 마 닥사 가야 얼추 포 가야 마 닥사 가야 얼추 포 가야 마 닥사 가야

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात पर मबनी माशी तरक्की की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अशिया ज़रूरिया की मुनासिब नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मुसलसल निगरानी और मौसर राबताकारी की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हौसी मलेशिया की जानिब से शहरी और इक्तिसादी अहदाफ पर हमलों की मुज़म्मत की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट कल से बर्मिंघम में शुरू होगा।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: This is FM 101.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
6: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
1: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: today. We'll be back after this short commercial break.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मुझे जो खुशी

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

नज़म से गज़ल बन गई, तू रोज़ ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रहीं, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़वी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे ख़त्म कर अभी, वो गलतियाँ गिनती गई, नफ़रतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें

FM 101, The Sound of New Millennium. सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101, The Sound of New Millennium. सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101, The Sound of New Millennium. सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

हम जुदाई में भी शफाफ रहे, साफ शीशे की तरह, उजले जमीरों की तरह। कालिकें गिरती हैं वीरान मसाजिद से गुनाहगारों की, दाग उड़ते हैं फिजाओं में नगर वालों के, लोग मिलते हैं गुनाहों के लिए। हम जुदाई में भी शफाफ रहे, वो जुदाई जो उड़ाती है मजाक, वो जुदाई जो डराती है, शिकस्ता भी किए जाती है, खींच ले जाती है आलूदा बहानों की तरफ। हमने हीले भी किए हैं तो फकत चांद के बहलाने को, रात कुछ देर के सो जाने को। दर्द की ऐसी फजीलत नहीं मानी जो हमें तोड़ के ही रख देती। हम जुदाई में भी शफाफ रहे, साफ पानी की तरह, उजले लिबासों की तरह। हमने हर रंग के दागों से किया है परहेज, वरना तुम कौन सा नजदीक थे जो तुमको गिला करने का मौका मिलता। सारी बातें तो अलग इतना मगर याद है, ये कोई इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हम जुदाई में भी शफाफ रहे।

FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

क्या खूबसूरत क्रिएशन है परवरदिगार की। कितना कुछ चल रहा होता है हमारे अंदर, हमारे जहन में। ये जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये मिलकर कितना कुछ ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं वो बातें जो जबान से अदा करनी, वो बातें जिन्हें जबान से अदा होना जरूरी नहीं है, उन्हें साइड पे भी कर रहे होते हैं। ये सब कुछ माइक्रो सेकंड्स के हिस्से में चल रहा होता है। एक पल में आप बारिश के बारे में सोचते हैं तो दूसरे पल में बारिश से वाबस्ता आपकी गुज़िश्ता यादें, या फिर आपके तमाम एहसासात जो उससे वाबस्ता होते हैं वो सामने आ जाते हैं। मुमकिन सूरत हाल में 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही होती हैं, और उनमें से कोई एक चीज़ प्रोमिनेंट होती है, हम उसको ले लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ सफ़र शुरू करते हैं, ख्यालों का सफ़र। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ, ये प्रोग्राम नहीं है, ये ख्यालात के हसीन सिलसिलों का सफ़र है जो हकीकत की तरफ किया जाता है। और हकीकत आप जानते हैं बाहर नहीं है, अपने अंदर की तरफ सफ़र करवाती है, अपनी ज़ात के नेहा खानों में, बहुत गहराई में, जहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है अनटच है, इससे पहले उसे छुआ नहीं गया, इससे पहले उसे सोचा नहीं गया, लेकिन अंदर कहीं रह गया। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इस ज़माने की देन है, मालूमात, नॉलेज, देखकर, सुनकर, छूकर, किसी भी तरह से वो हम तक पहुँची, उसके सिवा एक और भी है जो कभी सोचा नहीं गया। ख्याल के कैनवस पे उसकी कोई तस्वीर कभी बन नहीं पाई, बहुत कोशिश की। जैसे इस समय मैं इस कमरे में बिल्कुल तन्हा हूं, मेरे आसपास के बहुत से कमरे हैं उनमें भी बिल्कुल तन्हा हूं, कोई नहीं है यहां पे सिवाय रेहान के सिवा, जो कि MCR में मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। सो रेहान, थैंक यू वेरी मच। रेहान MCR में प्रोडक्शन इंजीनियर हैं और मेरी आवाज को आपकी समातों तक बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी टेंशन के पहुंचाते हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद और बाकी तमाम जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं पूरे पाकिस्तान में FM 101 के, उनके जितने भी प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। लेकिन मैं रेहान को जानता हूँ, जो यहाँ पे लाहौर में हमेशा मुझे मावनत दिया करते हैं। इस प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खौला अरशद साहिबा। खदीजा मुराद साहिबा अच्छा ठीक है, ठीक है। खदीजा मुराद साहिबा और उनके साथ साथ नगमाना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। किंजा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। जुबैर बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सुहेल बसरा साहब हुआ करते हैं स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर। इन सब के बाद इजाजत से हमारी आवाज आपकी समातों तक पहुंचती है। बहरहाल बात ख्यालात की हो रही थी, बात ख्यालों के सिलसिलों की हो रही थी और बारिश की भी हो रही थी। बात हब्स की भी करना चाहूंगा। बाज़ुकात बारिश होने के बावजूद कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पे हब्स का एक खास दौरानिया होता है, एक मौसम होता है। ये हब्स बाज़ुकात सिर्फ मौसम में ही नहीं, इंसान की अपनी जात के अंदर भी पैदा हो जाता है। बहुत घुटन से सांस लेनी पड़ती है, बहुत खींच कर, मुश्किल से।
ऐसी सूरत हाल में बाहर चाहे बारिश होती रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं कि ये जो सफर होता है ये अंदर की तरफ होता है, और यकीन से कह सकता हूं कि आपने यहां पे आके गलती नहीं की। लेकिन अगर आप गाने सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गाने सुनना चाहते हैं, तो फिर आप किसी भी रेडियो स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। मुल्क में बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं। लेकिन अपने दिल की आवाज को सुनना चाहते हैं, 2 घंटे अपनी टेंशन को भूल जाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, हाँ उससे, सच कह रहा हूं, अपने अंदर की बातों को सुनना चाहते हैं, तो आपको रहना चाहिए, यहां पे स्टे करना चाहिए। कैसे किसी की याद हमें जिंदा रखती है, कैसे किसी की याद हमें जिंदा रखती है, एक ख्याल सहारा कैसे हो सकता है? तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? दिल के कैनवस के ऊपर, मन के कैनवस के ऊपर, कल्ब के कैनवस के ऊपर एक सवाल है जो आपसे करने वाला हूं। अब सिर्फ वो सवाल नहीं रहा, एक फिल्म बन गया। जैसे ही कोई सवाल अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं बीता हुआ है। जो बीता नहीं है उसे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता। मेरी रिवायत के बारे में आप जानते हैं। वो जो पहली मर्तबा सुन रहे हैं, अंदाजा लगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जाने देना, क्या करना है अंदाजा लगा के। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जहां पे आपने एक कागज के टुकड़े को देखकर ये समझना है कि वो इंसान हमारी कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही साबित हो सकता है या नहीं, उसके कैरेक्टर के बारे में उसके साथ रहने के बाद पता चलेगा, उसके असल के बारे में उसके साथ रहने के बाद पता चलेगा। तो साथ रहिए ना। किसने कहा है इतनी जल्दी में अंदाजा लगाइए? क्या जरूरत है इतनी जल्दी कुछ सोचने की? बस उतरने दीजिए, जाने दीजिए इस आवाज को। वो जहां पे भी सफर करे, जिस्म के अंदर, या चाहे जिस्म के अंदर से होते हुए या फिर समातों से होते हुए वो डायरेक्ट कल्ब की उस गिरा तक पहुंचे जहां रूह का वो दूसरा हिस्सा बंधा हुआ है, वो जो नजर नहीं आती, जिसके ऊपर बहुत कम बात की गई है, वो जो नजर नहीं आती, वो जिसके जो कंट्रोल में होता है सब कुछ उसे मिल जाता है। आतिफ सईद इस्लामाबाद के बड़े खूबसूरत लबो लहजे के शायर कहते हैं कि अभी मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, सलामत रहें, आबाद रहें। कहते हैं कि तेरी मजबूरियों से वाकिफ हूं, मुर्तजा किजलबाश की आवाज हो मेरी पोइट्री हो, और दिल चाहता है सुनने का। ये लोगों के दिल की बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझ तक ये ख्याल पहुंचाया। अब खुद अपने मुंह से कह दिया है तो मियां मिठू नहीं हूं मैं। तेरी मजबूरियों से वाकिफ हूं, तूने पहले भी कई बार मुझे ऐसे देखा था जैसे मुझे देखा ही ना हो, ऐसे सोचा था जैसे मुझे सोचा ही ना हो, ऐसे छोड़ा था मुझे राह में अक्सर तूने जैसे मुझसे कोई रिश्ता कोई नाता ही ना हो, जैसे तूने मुझे मैंने तुझे चाहा ही ना हो। मसलहत ओढ़ के चाहत को छुपाए रखा, अपने हर राज को सीने से लगाए रखा, और मैं जो तेरी मजबूरियों से वाकिफ था तुझको देवी से ख्यालों में सजाए रखा, हर निशानी को तेरी मैंने मुकद्दस जाना, तेरे हर अक्स को आंखों में बसाए रखा, मुझको मालूम नहीं हिजर के कातिल लम्हे तूने किस आग में जल जल के गुजारे होंगे, कभी लफ्जों में थकन तूने समेटी होगी, कभी कागज पे फकत अक्श अश्क उतारे होंगे।
ये भी मुमकिन है गुजरा हुआ लम्हा लम्हा जिसको मैं आज भी सीने से लगा रखता हूँ। तेरे नज़दीक फकत याद की परछाई हो, दूर की जैसे तेरी उससे शनासाई हो। जिस तरह धूप दिसंबर की दरीचे से लगी, बेरादा कहीं आंगन में उतर आई हो। जैसे महफिल में किसी शख्स की तन्हाई हो, तेरी मजबूरियों से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं तुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकता। तेरी चाहत को कोई नाम नहीं दे सकता, एक पैगाम है तेरे लिए ये खामोशी खामोशी, और तो कोई भी पैगाम नहीं दे सकता। तेरे लफ्जों तेरे अश्कों तेरी आंखों की कसम, जब तब साथ किसी गाम नहीं दे सकता। ये कहानी तो मेरे साथ चलेगी आतिफ, इस कहानी को मैं अंजाम नहीं दे सकता। गजल बाश को सुनता है। आरजे फातिमा खान मेरे साथ हैं दिल्ली से, कह रही हैं कि उस्ताद जी सुनने का मजा आ रहा है। ऐसा मत कहा करें, ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं बहुत उधेड़ उम्र का इंसान, बहुत बूढ़ा बुढ़ा खांसी करने वाला ऐसे करके। ऐसा नहीं है, नौजवान हूं, एक आम सी शक्ल का, लेकिन आंखें इन आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बात दरअसल मेरी नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी बात कर रहा हूं।

मार्फत के बाद इंसान में क्या बदलता है, ये आज का सवाल है। जैसे ही इंसान किसी हद तक अपनी जात को समझने लगता है, अपनी जात को पहचानने लगता है, ऐसी सूरत हाल में कभी कभी इंसान को बहुत बहुत कुछ जानने के बाद अजीब सा एहसास होने लगता है, वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही रिश्ते हैं, वही मसाइल हैं, जिंदगी भी बिल्कुल वही है, लेकिन समथिंग हैज चेंज्ड। हैरत की बात जानते हैं क्या है? हैरत की बात यह है कि शायद दुनिया नहीं बदली, सिर्फ देखने वाली आपकी आंख बदल जाती है। यस। पिछले प्रोग्राम में हमने मार्फत को समझने की कोशिश की थी तसव्वुफ के साथ साथ, अपनी जात के नेहा खानों में, अपनी जात की गहराई में उतरने की कोशिश की थी, अपने आप को समझते समझते। तुम्हारा भी जिक्र कई मर्तबा किया था मैंने। बात अगर मेरी जात की हो रही है तो तुम्हारा जिक्र कैसे ना हो। तुम जो मेरी जात के हर हिस्से में मुझसे ज्यादा रहते हो, या फिर रहते थे हमेशा से, पता बहुत देर बाद चला मुझे। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन एहसास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में किरण, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। आवाज सुनती हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, नहीं कोई मसला नहीं, कोई बात ट्रिगर हो जाती होगी, कोई मसला नहीं, तो उन्हें बहने देना चाहिए। अब ऐसा होता है मेरे साथ भी कई मरतबा, आंखों में आंसू आते हैं तो वो बाहर की जानिब रुखसारों को गीला करते हुए जमीन पर गिरकर मर नहीं जाते, अंदर की जानिब सफर करते हैं। आंखों में आते हैं कुछ देर, बाहर का नजारा करते हैं, मौसम कैसा है, अच्छा है, ठीक है, लगता है बारिश की जरूरत नहीं है, वापस चले आते हैं। ऐसा हो जाता। कुछ तरीकेकार जिनके जरिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, बता सकते हैं कि मार्फत के बाद इंसान में क्या बदलता है, क्या तब्दील होता है। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर। इसके साथ साथ यस, मेरा भी एक फेसबुक पे मैंने एक छोटा सा आईडी पहले थी मेरी, वो मैंने बहुत देर के बाद ऑफिशियल की और फिर मैंने आपको बतानी शुरू की। कभी कभी कभी कभी बताता हूँ। वैसे आप गूगल पे जाके आरजे रहमान अनवर सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ पे मैं हूँ मिल जाऊँगा, मेरे बारे में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आरजे रहमान अनवर फेसबुक सर्च बार में जाकर लिखेंगे तो आईडी मिल जाएगी। ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन ठीक है, जितने भी हैं मसला नहीं है, लोगों से मसला नहीं है। डॉक्टर राबिया मुझे कह रही हैं कि रहमान, यहाँ यूके में तुम्हें सुनना एक अजाब है। वैसे ठीक भी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो शेर एक बार फिर से पढ़ दो, तुमने आगाज़ में पढ़ दिया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मुझे वो रिकॉर्ड करना होता है टिकटॉक के लिए। अच्छा ठीक है, ओके। कैसे किसी की याद हमें जिंदा रखती है। तुमने रिकॉर्ड कर लिया, स्टार्ट किया या नहीं किया राबिया? दोबारा पढ़ता हूँ। कैसे किसी की याद हमें जिंदा रखती है, एक ख्याल सहारा कैसे हो सकता है। तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। ये शेर डॉक्टर राबिया के लिए। By the way, डॉक्टर जीशान, थैंक यू वेरी मच आपके साथ। डॉक्टर अलीना सुन रही हैं, भाभी भी सुन रही हैं, आपकी मामा भी सुन रही हैं। माजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा है गले के लिए शहद का इस्तेमाल, छोड़ा तो नहीं तुमने, तुम्हारा गला आज फिर ख़राब लग रहा। नहीं, छोड़ा नहीं, लेकिन बहुत कुछ और है जो छोड़ दिया है।
ठीक है। देखा कैसे मैं बदल देता हूँ अचानक से, अगर कोई रोने लगे तो बात ही बदल देता हूँ मैं। वैसे आगे आने वाली जो बातें थी वो जरा ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, एक ट्रैक प्ले करते हैं। 1:01 आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, आना है तो बात लेकर आइएगा, वरना सुन लीजिएगा कि दूसरा आके क्या कह रहा है। और बात ऐसी होनी चाहिए जो घर में बैठी हुई माँ बहन बेटी बहुत आसानी से, जैसे आप अपने घर में बात कर सकते हैं अपनी बहन बेटी बीवी सबसे, हाँ बिल्कुल वैसे ही बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फैमिली मेंबर सुन रहे होते हैं, तो आपकी ज़ात की अक्कासी आपकी ज़बान करती है। ये दुकान पता चलता है कि कैसी है जब खुलती है ज़बान के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए। तो लेकर आइएगा कोई ऐसी बात, और प्लीज़ आवाज़ की तारीफ़ मत कीजिएगा, अल्लाह ताला की अता है, मेरा कोई कमाल नहीं। सिर्फ टॉपिक के हवाले से बात करना चाहें कि मार्फत के बाद, अपने आप को जानने के बाद इंसान में क्या तब्दील होता है, क्या बदलता है, आप क्या सोचते हैं, हम इस पे डिटेल्ड बात करेंगे, बहुत लंबी डिस्कशन है। लेकिन 1 घंटा बीत गया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। दिल चाह रहा है जुहेब हसन को सुनने का, और इस वक्त PTV पे वो ये 1987 का ये प्रोग्राम है, अनवर मसूद ने इसको होस्ट किया था, और नाजिया हसन भी साथ में है, बहन है जुहेब हसन की। लेकिन ये ट्रैक, ये वाहिद ट्रैक है जो मुझे इसका पसंद है, जुहेब का, यू वुड लव दिस ब्यूटीफुल रैकेट। ठीक है भाई।

0: جی ہاں، سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر معرفت واقعی انسان کے اندر اتر جائے تو پھر اس انسان میں کیا بدلتا ہے؟ کیا وہ زیادہ خاموش ہو جاتا ہے، یا پھر عاجزی اس میں زیادہ آ جاتی ہے، زیادہ عاجز ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دوسروں کو معاف کرنے لگتا ہے بہت آسانی سے، بہت جلدی، یا پھر اس کے منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی انا مر جاتی ہے؟ کیا پھر اس کے بعد اسے ہر چیز میں اچھائی نظر آنے لگتی ہے؟ یا پھر معرفت کا ایک اور عجیب سا پہلو اس کے اندر جنم لے لیتا ہے، دیٹ انلائٹمنٹ ڈزنٹ ریموو یور ڈارکنیس، اٹ سمپلی گیوز یو دا کریج ٹو لک ایٹ اٹ. شاید معرفت انسان کے اندر سے اندھیرے ختم نہیں کرتی، بٹ ایسا ضرور ہو سکتا ہے پہلی بار اسے اپنے اندھیرے دیکھنے کی ہمت ملتی ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے اندھیروں کو دیکھ سکتا ہو بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی ڈر کے کہ اپنے اندر جاؤں گا تو کہیں واپس لوٹ کے آ پاؤں گا یا نہیں، واپس آنا ممکن ہو بھی پائے گا یا نہیں. بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے احساسات اپنے شیئر کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سفر دراصل اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی خوبصورت سی کہانی بنا کر رکھتے ہیں، میں اچھا انسان ہوں، بڑا مخلص ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، میں بڑا سینسٹیو بھی ہوں، لیکن میں بہت کیئرنگ بھی ہوں، بہت لائل ہوں. لیکن کیا واقعی میں ہم ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا ہم کہہ رہے ہیں، یا ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ کسی نے آپ کے اندر کا وہ پہلو دکھایا جسے آپ ماننا ہی نہیں چاہتے؟ اچھا اچھا، بس میرے ساتھ یہ والی بات مت کرو. نہیں رحمان، تمہارے ٹاپکس کے اندر یہ والی چیز ہونی چاہیے، کیوں یہ مسنگ ہے؟ نہیں رحمان، تمہارے ہیئر سٹائل کے اندر یہ والی چیز ہونی چاہیے، ڈریسنگ سینس تم اپنا امپروو کیوں نہیں کرتے تھوڑا سا؟ نہیں یار، میں جیسا ہوں بہتر ہوں، ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کسی سے کہ وہ. لیکن رحمان، یہ ضروری ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے بھی بعض اوقات. مجھے پتا ہے تم کیسا سوچتے ہو، تمہارے اندر کے خیالات کیسے ہیں، لیکن ہاں ایسا ہوتا ہے نا، ہم نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے. میں اپنے اوپر لے کے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے اوپر لے کر کوئی بات سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. میں پہلی لائیو کال سے اندازہ لگاؤں گا کہ کیا مجھے آپ کی کالز لینی ہیں یا نہیں لینی ہیں. یاد رکھیے گا، پہلی کال سے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ کیا مجھے آپ سے کالز پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یا پھر ہم اپنے ٹاپک کو خود ہی لے کر آگے بڑھیں. وہی ٹریک کی فرمائش، وہی باتیں شاتیں دوسری ادھر ادھر کی، وہ مزہ نہیں آئے گا. اصل مزہ تب آئے گا جب آپ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، تو پھر مزہ آئے گا. سوال کیا ہے؟ معرفت کے بعد انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اگر معرفت واقعی انسان کے اندر اتر جائے تو پھر انسان میں کیا بدلتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم جی. جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟
1: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک.
0: کیا نام ہے آپ کا؟
1: سدرا کوشی مندر سے.
0: جی سدرا، کیا کہنا چاہیں گی؟ اپنی ذات کو جاننے کے بعد، یا پھر بہت ساری دوسری چیزوں کو جاننے کے بعد، یا پھر معرفت کے بعد انسان میں کیا تبدیل ہوتا ہے؟ کیا پہنچ پائی ہیں آپ یہاں تک؟
1: ہاں وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے
0: انسان. دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے معرفت کو سمجھنے کے بعد؟ नकारा चीजों से। आपने लफ्ज बहुत जल्दी चेंज कर लिया वरना हमारी लड़ाई होने वाली थी। ठीक है, और कुछ?
1: नहीं भैया, लड़ाई क्यों होगी आपसे?
0: नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। और कुछ, और क्या बताना चाहेंगे?
1: आज वीरू नहीं आए।
0: कौन नहीं आए?
1: वीरू, ज्ञान जी मैं।
0: हाँ नहीं, आज नहीं, इस महीने में वो लीव पे हैं, इस महीने में वो नहीं आ पाएंगे।
1: भैया एक क्वेश्चन है आपसे।
0: हाँ जी।
1: मेरे इन दिन
0: आवाज आपकी दूर चली जाती है, समझ नहीं आती, दोबारा बताइएगा।
1: मैंने कहा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है।
0: कॉन्फिडेंस नहीं है?
1: हाँ, और मैं किसी से बात नहीं कर पाती सही से।
0: जाहिर नहीं कर पाती सही से,
1: बात नहीं कर पाती
0: ना? बात नहीं कर पाती।
1: तो क्या एक दो टिप्स दे दे?
0: ये अंदाज बड़ा खूबसूरत है, इसमें कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी है। इंसान को जब भी अपनी बात करनी है तो ये सोच के करनी है कि मैं जो बात करने वाला हूँ क्या मैं उस पर खुद यकीन रखता हूँ कि हाँ ये बात सही है। जैसे ही इस बात का यकीन हो जाएगा ना, तो फिर बिल्कुल इस तरह से बात होगी जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस वक्त, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। मुझे पता है कि ये बात यकीनी तौर पर सही है, हर मायार पे ये पूरी उतर रही है, इखलाकी मायार हो वो कुछ भी हो। इंसान जब इन चीज़ों के बारे में सोचता है तो फिर इंसान डरता नहीं है, खौफ उसमें पैदा नहीं होता। ये अमूमन ऐसा तब होता है जब उसे बचपन से रोका गया हो, नहीं नहीं तुमने क्या बात करनी है, बात अहमियत की हामिल भी हो फिर भी उसे बेमोल कर दिया गया हो, ऐसी सूरत हाल में खामोश रहने लगता है इंसान, बोलना बंद कर देता है। या फिर बाज़ औक़ात उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, कोई ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से वो दूसरों के सामने नहीं आ पाता, अपने जज्बात अपने इजहार में नहीं ला पाता। तो अपने ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है, यानी मैं सच्चे अल्फाज में कहूँ तो अपने आप से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। नार्सिसिस्ट नहीं बनना, यानी बस मैं ही हूँ अब, ऐसा नहीं, लेकिन मैं भी हूं ये सोचना है। समझ आया आपको सिद्रा? ठीक है, अब रोना नहीं है, खुश होना है। ठीक है, सलामत रहो। ओके।
1: नहीं भैया, बस मैं अपने भाई के साथ बिल्कुल मैं जिस तरह भी आपके साथ नॉर्मल बात करी वैसे ही करती थी, लेकिन बस मेरा भाई दुनिया से गया तो फिर मैं बिल्कुल मोश हो गई, मुझसे बात करना नहीं आती, मुझे लोगों के सामने डर लगता है, लोगों में बैठ ही नहीं सकती।
0: कोई बात नहीं, एक ट्रामा, मैंने वही कहा कोई ना कोई ट्रामा होता है बाज़ औक़ात इंसान में, लेकिन ये भी सोचा जा सकता है कि अगर भाई होते तो मैं किस कॉन्फिडेंस से बात करती, हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं सारी की सारी, जो भी हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, अगर मोहब्बत है, अगर प्यार है और अगर अपनाइत है, पहुँचाई जाती हैं, पता चलती रहती हैं। तो उस लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जी
1: मतलब मैं सब आगे से बात कर लेती हूँ, इसलिए कोई मेरे भाइयों की जगह नहीं, तो मैं नॉर्मली मैं बात कर लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरती। लेकिन ये होता है कि मैं घर के घर वालों के भी साथ में आराम से बात कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मतलब मैं अपनी पोपो सेकेंड कज़न या फर्स्ट कज़न के साथ बैठती हूँ, तो बस फिर मैं बिल्कुल अपने छोड़ देती हूँ।
0: हाँ, तो उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उन लोगों ने आपको इतना रोम नहीं दिया, या फिर इतना अपनाइत नहीं दी, या इस तरह का एहसास नहीं दिया कि हम सारी बात हमारे सामने कर सकते हैं। तो वो नॉर्मल है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो बात करने वाली होती है वो कर लेते हैं हम, जो नहीं करना चाहते बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि वो हम डर रहे हैं, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे होते। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा बात, जो भी आप करना चाहें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर, ये अपने अंदर का ही तो सफ़र है सदरा, अपने आप को जानने का सफ़र है, मार्फत का सफ़र है, इसको तय करना ज़रूरी है ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात को समझने के लिए। अभी तो ये पप्पू हैं, दुनिया के बाहर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, अपने ख़ानदान से बाहर वहाँ पे भी इंसान को जाना पड़ता। ठीक है
1: जी भैया, लेकिन मैं आपको कहता हूँ भाई कि मेरे ससुराल वाले वो आपके मन से बिल्कुल भी नहीं बात करते, वो कहते हैं ये मगरूर सी है और ये ऐसी वैसी है, बस इसलिए मुझे थोड़ा सोचा कि उनसे तो यार बात कर लूं।
0: अगर कोई सोचता है, कैसा भी सोचता है, आप वैसे नहीं हैं, आपके नज़दीक आप कुछ और हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे होते, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होती।
1: नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं नहीं कहती बताती, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर लेती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि मैं मगरूर टाइप गुरूर करती हूँ, इसलिए नहीं किसी को बुलाती ज़्यादा ना। तो मैं कहती हूँ ये ना हो कि इस बात की वजह से मतलब ग्लिन साइड शुरू हो जाए, तो बस इसलिए कोशिश।
0: हाँ तो कोई बात नहीं, जब वो आपसे सवाल करेंगे कि जी, खुद सवाल करेंगे सामने कि क्या तुम मगरूर हो, तो कह देना कि नहीं ऐसा नहीं।
1: लेकिन ये मसला वो कहते नहीं है ना, वो बस सोच रहे हैं।
0: तो कोई बात नहीं, आप इतना क्यों सोच रही हैं? ये भी आप सोचेंगी कि वो क्या सोचते हैं, तो फिर वो क्या सोचेंगे, छोड़ें, सोचने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सिद्रा लंबी कॉल हो गई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम सलाम
2: सर, मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ। और
0: जी इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे?
2: सर सबसे पहले तो आपको और जो मेरे सुनने वाले बहन भाई या सबको सलाम मिल गए।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच।
2: दूसरे नंबर पे आपने बात की है मार्फत की
0: जी,
2: बंदे को कब पता लगता है? पहले तो तकरीबन समझ
0: मार्फत के बाद इंसान में क्या बदलता है, ये सवाल है मेरा आज।
2: बदलता वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि 25 से 30 साल तक की उम्र तक तो वो सिर्फ मार्फत के बारे में सोचता है, तब्दीली कोई नहीं होती है। तब्दीली में जब भी आती है, जब उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाए, जब वो अपनी जिंदगी को देखता है कि यार ये बातें बड़े कह रहे हैं, बड़ी मार्फत की गाल की, वो फिर अपने अंदर तब्दीली लाता है। वो जो इंसान होता है जो वो अपने आप को तराशता है कि भाई मैंने कौन सी बात को किस तरह करना चाहिए, किस बंदे को किस तरह गाइड करना चाहिए, कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, वो फिर अपने अंदर वो चीजें पैदा करता है कि भाई मैं अपने अंदर ऐसी चीजें पैदा करूँ कि जिसकी वजह से जो है ना शायद मेरी बख्शिश हो जाए। असल झोला तो यही है कि भाई हमने तो जाना है एक दिन, जो ये समझ जाते हैं ना वो फिर अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। वो फिर हर चीज जो है ना वो ऐसी बातें करते हैं कि उनको कहीं झूठ ना बोलना पड़े। जो वो उसके अंदर जो जो उम्र उसकी ज्यादा होती जाती है ना, तब तो उसके अंदर कहते हैं ना शुक्र सब्र और रजा, फिर नहीं होती नमाज कजा, वो चीजें फिर उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और अल्लाह पाक सबको अपने हिज़्ज़ो मान में रखे। और
0: आमीन सुम्मा।
2: आप माशाल्लाह, आपका शो बहुत प्यारा।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, सलामत रहें, आप बात रहे।
2: अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।

सही है। वन वन की बहुत खूबसूरत आवाज़ है और रेडियो पाकिस्तान के दूसरे चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स करती हैं आरजे महविश खान। जहे नसीब आप तशरीफ लाएं, थैंक यू वेरी मच महविश, हमेशा सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, जीती रहें। कह रही हैं कि उफ क्या खूब अंदाज़े बयां है आपका, रात की इस खामोश पहर में, रात के इस खामोश पहर में आपकी आवाज़ और अल्फाज ने जैसे रूह को छू लिया हो। एक अजीब सी खुशी, एक गहरा सा सुकून और दिल में उतरती हुई खूबसूरत सी कैफियत दे गए। सच कहूँ कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती। ठीक है, और आपने कहा है ओपनिंग ऑफ शो अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ 471 के पैगामात भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर आप लिखेंगे 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज देंगे 4471 पर। पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप हमें मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है।

0: एक और कॉल रिसीव करते हैं, उसके बाद एक ट्रैक शामिल करेंगे, फिर उसके बाद अपनी बातें करेंगे। आपसे सवाल ये पूछा है कि मार्फत के बाद इंसान में क्या तब्दीली आती है, मार्फत अगर इंसान के अंदर उतर जाए तो उसके अंदर क्या बदलता है, क्या बदल जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी लियाकत साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कहिएगा।
1: मार्फत के बाद इंसान की जो है ना वो सोच बदलती है और बदलनी चाहिए भी।
0: अच्छा ठीक है,
1: क्योंकि ये असल में बातें होती है बड़ी गिराए थी, ठीक है, और ये मार्फत तो बड़ी दूर तक इंसान को ले जाती है, ठीक है, और बड़ी बड़ी दूर तक ले भी जाती है, बड़े बड़े मतलब के वो इंसान इंसानों से भी दूर हो जाते हैं और इतनी गहराई में जाती है।
0: ठीक है,
1: कहते हैं ना हाथ आने हाथ आए तो बुत, ना आए तो खुदा हो, ठीक है, इस तरह ही होता है। और देखें अच्छे गैदरिंग में बैठे तो मार्फत अच्छी होती है, बातें बातें तो गौर करना चाहिए और बातों से बातें निकलती हैं।
0: ठीक है,
1: बड़ा अच्छा लगा आपसे बात।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच लियाकत, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉल रिसीव करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम सर
0: जी। वालेकुम सलाम जी।
2: अरे बोधी जट सर, विवेक कंडर सर,
0: जट साहब की हाल है, तबीयत ठीक है, हवा चल रही है आज?
2: शुक्र अल्लाह सर। सर टॉपिक की गल करिए सर, मार्फत तो बाद इंसान को मुखलिस होना जरूरी है सर।
0: ठीक है
2: सर, देखो ना अगर इंसान मार्फत नहीं समझ गया तो सर मुखलिस होना भी जरूरी है, तो अपने दिल में बिल्कुल साफ रखना चाहिए सर।
0: ठीक है,
2: हाँ जी सर, तो माशाल्लाह खूबसूरत सर थोड़ी ओपनिंग सर एंट्री जी सी ना, जी नजम तुम्हें सर पढ़ी है ना, क्या बात है, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे सर।
0: बहुत शुक्रिया बोधी जट साहब, सलामत रहो, आबाद रहो
2: सर, अल्लाह हाफिज़ सर।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।

0: एक और छोटी सी कॉल रिसीव करते हैं, उसके बाद एक ट्रैक शामिल करेंगे, उसके बाद अपनी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं जी? कैसे मिजाज है आपके? आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान जी। फरमाइएगा, क्या कहना चाह रही
1: भाई? मार्फत के बाद तब्दीली ये है ये कि तन्हाई में रहना पसंद कर रहे हैं हम खुद को।
0: तन्हाई में रहना पसंद कर रहे हैं?
1: खुद को तन्हाई में रहना पसंद करते हैं।
0: ठीक है
1: जी। और कभी किसी को तनकीद नहीं की, करने को दिल नहीं करता,
0: तनकीद करने का दिल नहीं चाहता।
1: मतलब कि कोई कुछ भी कर रहा हो तो कहना भी ये बुरा है, ये
0: ठीक है,
1: क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुनाफिकों की बस्ती में दे रहे हैं। मुनाफिकों की बस्ती में दे रहे हैं, तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहे।
1: सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी बातें हैं, सारी तुम्हारी बात है।
2: तुझे मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर,
0: तुम्हारे लिए
2: मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं बाबर,
0: ढूंढे तुझे मेरा मन सावर।

0: 1:38 हुए चाहते हैं और ये पाकिस्तान का मायारी वक्त है। देखिएगा आपके जहान में वक्त कैसा है। अच्छा तो है ना। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि मार्फत के बाद इंसान में क्या तब्दील होता है। मार्फत की हकीकत को समझने के बाद इंसान में क्या तब्दील होता है, क्या हो जाता है वो। टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। एक और कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: अरे वालेकुम अस्सलाम मनीला साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो जो जो जहाँ सुन रहा अल्लाह सबको अपनी में रखे। आमीन
0: आमीन आमीन सुम्मा आमीन।
1: और ज़ियाद के लिए बहुत बहुत खसूसी दुआ और मैं करती हूँ रोजाना, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदरुस्ती वाली जिंदगी दे और हम फिर से अपने भाई को सुने ऐसे ही मुस्कुराते वजह से हुआ था।
0: आमीन आमीन।
1: अल्लाह उसको सलामत रखे। बहुत सी दुआएं आपके लिए भी और उनके लिए। और
0: इंसान में मार्फत के बाद क्या तब्दील होता है अनिला?
1: मेरा ख्याल है सबका सब इंसान के अंदर सब तब्दील हो जाता है।

0: सॉरी तब्दील हो जाता है, क्योंकि इंसान की सोचें बिल्कुल चेंज हो जाती
1: है।
0: मार्फत है क्या एक्चुअली, खुद को पहचानना,
1: खुद को पहचान लेना।
0: हाँ, जब सूफीज़म में कहते हैं ना कि जब इंसान खुद को पहचान लेता है ना, तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है, यानी अल्लाह को पा लेता है,
1: हकीकत को समझ लेता है,
0: हकीकत को जान जाता है। तो वो कहते हैं ना कि हजरत अली को किसी ने कुछ खाने के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की लज्जतों को छोड़ चुका हूँ। तो इसमें ये होता है कि रहमान, जब हम खुद को पहचान जाते हैं, रब के नजदीक होना शुरू हो जाते हैं और होते जाते हैं, तो हमें बाकी चीजों की किसी किस्म की कोई लज्जत, कोई लालच, कोई मोह नहीं रहती।
1: सही कहा आपने,
0: हमें जो पहचान जाता है खुद को, वो अल्लाह के करीब होता चला जाता है, और वो रास्ते ढूंढता है जिससे वो अल्लाह के करीब ज्यादा से ज्यादातर हो सके। तो जब वो उन रास्तों पे चल रहा होता है, तो उसे दुनिया की दुनियावी चीजों का कोई लालच नहीं रहता।
1: सही कहा,
0: वो उन चीजों से हट जाता है। तो बेसिकली हम लोग जब अल्लाह से लॉ लगा लेते हैं, उसकी तरफ हो जाते हैं, मतलब इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, रब के इश्क में, तो फिर खुद को जानने के बाद जब हम उसमें जाते हैं, तो हकीकत को पा लेते हैं।
1: Yes.
0: और फिर समझते हैं इश्क हकीकी। तो फिर हम उसमें जब खो जाते हैं, तो फिर हमें दुनियावी लज्जतें, लालच, कोई चमक दमक, किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक तरफ लग जाते हैं, बस
1: शोर से दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, तन्हाई अच्छी लगती है, खामोशी अच्छी लगती है, और रब के जिक्र में जिक्र करते रहना, और उसके साथ उनकी गुफ्तगू, उनके बारे में और उनसे बातें करना, एक खूबसूरत लम्हा होता है। जब हम रब के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपने नजदीक उसे महसूस करते हैं, अपनी शारक के नजदीक, अपनी धड़कनों में जो धक धक है, वो उसमें रब रब महसूस करते हैं। तो फिर हम, मेरा ख्याल है यही मार्फत में आ जाता है, और हम जान जाते हैं कि एक्चुअली सही रास्ता क्या।
1: आप सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया अनिला, सलामत रहें।
0: थैंक यू, सबके लिए बहुत सी दुआएं रहमान, आपके लिए भी और ज़िया के लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। मार्फत।

1:39 हुआ चाहते हैं और कुछ आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ अपनी बातें भी करते हैं और फिर सारी तुम्हारी बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू लिसन यू, थैंक्स अ लॉट। मार्फत, क्या ज़बरदस्त टॉपिक रखा है आपने आज। मेरे ख्याल से मार्फत पा लेने के बाद इंसान हकीकत को पहचान लेता है, अल्लाह को पा लेता है और सबसे बढ़कर वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लेता है। बहुत सारी और मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं इंसान में। बहुत खूबसूरत बात उमर। सीरत फातिमा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो टॉपिक। खुद को समझने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दें मेरे अपनों को, चले मैं कोशिश करता हूँ। खुशी का सॉन्ग, अच्छा ठीक है, बाकी गम के। इस्लाम गुजर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आज ज्वाइन नहीं कर सका, थर्सडे को ज्वाइन करूँगा। अच्छा ठीक है। अमल हमारे साथ हैं, कह रही हैं कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, खैरियत से। ताहिरा मसूद साहिबा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। जुगनू जूनियर अस्सलाम वालेकुम सर कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो कह रही हैं अमल। नबील शेख हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साइम तबस्सुम हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर, क्या हाल है भाई रहमान साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और अंदाज़ माशाल्लाह बहुत ही मुनफरद और कमाल है, अल्लाह पाक राज़ी हो आपसे, हमेशा खुश रहो। आपका प्रोग्राम पेरिस फ्रांस में सुन रहा हूँ, आपको और आपकी पूरी टीम को मोहब्बतों भरा सलाम और दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच साइम। पेरिस में आईफल टावर वहाँ पर ही है ना, मैंने इरादा वैसे किया है जाने का वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पैगाम आपके आते रहेंगे और मैं पढ़ता रहूँगा, ठीक है ना। कुछ और भी हैं, यस ठीक है, यस

वो कहती है सुनो जाना बहुत खामोश रहते हो, न कुछ दिल की सुनाते हो न कुछ आंखों से कहते हो, जो तुम हर पल मेरी जायूं उदासी ओढ़ रखते हो। बताओ ना वो क्या गम है जिसे चुपचाप सहते हो। मैं कहता हूं मुझे मुझे कुछ दिन से यह एहसास होता है कि मेरी जिंदगी में तो सभी कुछ ही अधूरा है। मोहब्बत मिल नहीं सकती, जुदाई हो नहीं सकती। बताओ क्या कभी तुमने भी इन बातों पे सोचा है। वो कहती है मोहब्बत से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारी सोच से एक पल की भी मोहलत नहीं मिलती। अधूरापन तो शायद जिंदगी के साथ चलता है, किसी को भी यहाँ तकमील की दौलत नहीं मिलती। मैं कहता हूँ बहुत बेरब सी है गुफ्तगू देखो, बहुत बेचैन रखती है तुम्हारी आरजू देखो, तुम्हारी आरजू ने जिंदगी क्या है बताया है। तुम्हारी ही मोहब्बत है मेरे अब चार सू देखो। वो कहती है तुम्हें कैसे मोहब्बत शाद रखती है, भला कैसे तुम्हें हर दर्द से आजाद रखती है, तुम्हें कैसे ये लफ्जों के खजाने सौंप देती है, तुम्हारे ख्वाब आंखों में सदा आबाद रखती है। मैं कहता हूं मोहब्बत से मोहब्बत करके देखी है, बहुत दुश्वार है पर ये इबादत करके देखी है, नफा देकर खसारे का कभी सौदा किया तुमने। बताओ ना कभी ऐसी तिजारत करके देखी है। मैं कहती है मोहब्बत कब किसी की बात सुनती है, कोई रुत हो ये अच्छे मौसमों की ख्वाब बुनती है, कोई रुत हो ये अच्छे मौसमों की ख्वाब बुनती है। इसे मालूम है यादें बहुत तकलीफ देती हैं, मगर फिर भी वफा की राह से ये खार चुनती है। मैं कहता हूँ कमी लगती नहीं है अब कमी मुझको, मोहब्बत ने ही बख्शा है शऊर आगही मुझको, मेरे मामूल में अब तो फकत तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी जिंदगी लगती है अपनी जिंदगी मुझको। वो कहती है मुझे आदत ना डालो इस कदर अपनी, कि फिर रहती नहीं मुझको मेरी जहाँ कुछ खबर अपनी, फकत तुमसे पता मिलता है मेरी जात का मुझको, तुम्हें कैसे कहूँ रख लो बनाकर उम्र भर अपनी। मैं कहता हूँ कि यूं जीना तुम्हें किसने सिखाया है, सबक जो है मोहब्बत का तुम्हें किसने पढ़ाया है, भला वो कौन है जिसने नवाजा है तुम्हें गम से, तुम्हारे साज दिल पे दर्द का नगमा जगाया है। वो कहती है कि आतिफ जी मुझे ये दर्द सहने दो, मैं अब जैसी भी हूं जिस हाल में हूं मुझको रहने दो, मैं खुश हूं हाल ये मेरा तुम्हारे हाल जैसा है, मुझे हर बात कहनी है मुझे हर बात कहने दो। मैं कहता हूं कि तुम ऐसे मेरी जान रह नहीं सकती, अजाब नारसाई को बहुत दिन सह नहीं सकती, कई जज्बात ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं ढलते, बहुत कुछ कह भी लो लेकिन बहुत कुछ कह नहीं सकती। वो कहती हैं मुझे अपने ख्वाब अपने अधखिले दे दो, वो कहती है मुझे कुछ ख्वाब अपने अधखिले दे दो, मेरी कुछ नींदें तुम ले लो, मुझे कुछ रत जगह दे दो, मेरी कुछ मुस्कुराहट तुम सजा लो अपने होंठों पे, और अपनी आंखों के कुछ अश्क जाना तुम मुझे दे दो। मैं कहता हूँ भला ऐसे कहाँ तकमील होती है, नहीं बढ़ते वहाँ आंसू जहाँ तकमील होती है, दिलों में ख्वाब खिलते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, जहाँ खुशियाँ उतरती हैं वहाँ तकमील होती है। वो कहती है कि फिर जाना तुम्हें कैसे संभालूँ मैं, उदासी के समुंदर से तुम्हें कैसे निकालूँ मैं, तुम्हारी खामोशी मुझको बहुत तकलीफ़ देती है, ये दिल करता है अब इस खामोशी को मार डालूँ मैं, फिर उसके बाद हम दोनों बहुत खामोश रहते हैं, न कुछ दिल की सुनाते हैं न कुछ आंखों से कहते हैं, यही सच है कि हम एक दूसरे बिन रह नहीं सकते, बहुत कुछ कह भी लें लेकिन बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं।

राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। 1:59, एक मिनट बाकी मेरा आपसे इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा। कोई बात बुरी लगी हो तो तफले मकतब समझकर ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूं, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? हम सब ड्यूटी पर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका चैनल FM 101 नंबर 1 है। सैयद अदील इकबाल शाह इस्लामाबाद पुलिस से, अरे इस्लामाबाद पुलिस मुझे सुन रही, बहुत शुक्रिया सैयद अदील इकबाल भाई, सलामत रहें, आबाद रहें। किस जगह पे हैं आप इस वक्त, ये भी तो बताएं ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सरदार सालिस हमारे साथ हैं। मार्फत है तो मुश्किल, ये हो जाए तो फिर कोई चीज़ महंगी नहीं। जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना, और पूरी ज़िंदगी दुरुस्त गुजरती है। अच्छा प्रोग्राम है रहमान साहब, बहुत बहुत दुआ सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।

101 FM.

يكفرون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده